0: 31 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386
1: सेवा से संकल्प जगे संकल्प से हर जन जुड़े
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश
1: स्वच्छता स्वास्थ्य सुरक्षा शिक्षा समृद्धि और सुशासन प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास
2: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी
3: तेरी याद सताए तो हम खाटू जाएं तेरे सिवा शान बता हम कहां जाएं

0: और है ना एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिर ही जाने
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो
1: गया। अच्छा खाओ खाओ
0: ना, कल क्या खाएंगे?
2: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे।
1: खाओ।
3: और फिर जशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए फुटसो ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकोंग पीओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: जय जय शिव शंकर
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे आगे रहें एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
5: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
6: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
5: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
7: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
5: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबू से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केन्द्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
8: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी आरंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
10: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
9: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
11: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ती है।
9: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही रामनगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी

0: राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रूपये तक का मिलेगा बीमा, हिन्दुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Gujarat beginning today to preside over National Film Awards presentation ceremony at Ekta Nagar in Kevadia tomorrow. External Affairs Minister S. Jaishankar to lead Indian delegation at the 81st session of UN General Assembly in New York. US President Donald Trump in deciding

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा।

0: ना रेडियो प्यारा सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: हाँ मेरी कसम,
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाय चाय चाय,
5: बिंदास मॉर्निंग
2: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो जी, नमस्कार, वेलकम बैक है एक बार फिर से। आप सभी का स्वागत है। एक नई सुबह आई है सोमवार की और एक नया दिन आया है कुछ जिंदगी में नया करने का। श्रोताओं, आप सब बहुत बहुत आप सभी का वेलकम है और उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपने दिन की शुरुआत एकदम मस्त तरीके से कर चुके होंगे। फिलहाल स्टेशन की घड़ी में वक्त हुआ है 8:20 और आज है 21 सितंबर की तारीख। दोस्तों, कहते हैं कि मुश्किलों के बारे में सोचने की बजाय अगर उससे निपटने के तरीके खोजे जाएं तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो सकती है। बट मोस्टली क्या होता है ना, कई मर्तबा हम सिर्फ मुश्किलों को ही जो है ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, यही सोच सोच के कैसे होगा, क्यों होगा, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, बहुत सारी मतलब अजम्पशंस हम लगाने लगते हैं और इसी चक्कर में कई बार हम उसका जो एक सोल्यूशन है, सही सोल्यूशन, वो हम ढूंढ नहीं पाते हैं। तो मैं सिर्फ आज की सुबह यही कहना चाहता हूँ कि मुश्किलें सबके जीवन में है, अप एंड डाउन सबके लाइफ में आते हैं, है ना। हमें अप एंड डाउन पे ना जाकर के उसके सोल्यूशन पे जाना है। अगर हम सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो यकीन मानिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा और जब सोल्यूशन मिल जाएगा तो इस प्रॉब्लम की समस्या ही दूर हो जाएगी, है ना। तो बस आज की सुबह आप भी ऐसी किक स्टार्ट कीजिए अच्छी थॉट्स के साथ, अच्छी बातों के साथ। अगर आपके पास कोई अच्छी थॉट है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं 9837896896 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्यारी प्यारी बातें शेयर कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, अभी शुरुआत हो चुकी है आज के सफ़र की बेहतरीन, 10 बजे तक आपके साथ हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़ सकते हैं 9837896896। का नंबर, इस नंबर के जरिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह और ढेर सारी बातें जो है आप हमारे साथ कर सकते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। चलिए फिलहाल अभी थोड़ी देर में लौट कर आएंगे एक बेहतरीन से गाने से, कर रहे हैं आज के सफर की शुरुआत। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आनंद को, ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। 8:34 हो गए हैं। सुबह की चाय के साथ होती है हम भारतीयों की शुरुआत। 99% लोगों की शुरुआत चाय के साथ होती है, सुबह की चाय के साथ, है ना। किसी के लिए अदरक वाली चाय पसंद है तो किसी को भैया इलायची की खुशबू वाली चाय चाहिए। मतलब हम भारत में लाखों लोगों की सुबह चाय के चुस्के के साथ ही शुरू होती है। और चाय की जो वाइब है ना, जब मिल जाती तो मजा आता है। मतलब मैं आपको बताऊं, चाय सिर्फ चाय नहीं है, दोस्तों से गपशप हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताना, अक्सर चाय पर चर्चा ही हो जाती है शुरू, है ना। तो चाय पर चर्चा जो है बहुत ही डिफरेंट चीज है यार। ऑफिस से ब्रेक, उसके बाद पसंदीदा फेवरेट चाय। यार चलो ऑफिस से ब्रेक मिला है तो गड़क चाय हो जाए, सुबह से कुछ समझ में नहीं आ रहा कब चाय हो जाए। मतलब भारत में चाय का जो जलवा है ना वो अलग है यार, दिस इज एक्सट्रीम लेवल पे है। और आज चाय की बातें इसलिए कर रहा आपका भाई क्योंकि हर साल 21 सितंबर को राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस पे हम ढेर सारी बात करेंगे अभी आपसे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपके मैसेज पढ़ लेते हैं फटाफट से। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है। आनंद भाई, कुसुम बात कर रही हूँ रामलीला ग्राउंड से। नमस्ते जी, आपको भी नमस्ते। सुबह सुबह आपकी गीत संगीत सुन के बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, काफी अच्छे अच्छे गाने प्ले करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। हमारी पूरी पूरी कोशिश होती है जी सुबह सुबह आपको अच्छे गाने सुनाए जाए और आपकी सुबह को थोड़ा सा और अच्छा बनाया जाए। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है। तुषार जी, मैं बढ़िया हूँ। तुषार जी लिखते हैं, कल करे सो आज, आज करे सो अब, क्या बात है। बहुत बहुत ही प्यारा कोड है, सच बताऊं तो सिर्फ सुनने में नहीं करने में भी अच्छा लगता है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। एक मैसेज आ गया मेरे पास, कुणाल कांजावाला लिखते हैं, हाय आनंद जी कैसे हो, पीली कोठी से मैसेज कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूं। और ये लिखते हैं कि सर सुबह सुबह एफएम मुरादाबाद सुन के काफी नॉस्टैल्जिया वाइब आती है क्योंकि आप काफी अच्छे एंड बेहतरीन गाने प्ले करते हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। एक मैसेज आया है रोहन जी का, ये लिखते हैं, सर मंडे की सुबह में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच आनंद जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो देखिए, ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9837896896 पर व्हाट्सएप करके एंड हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह। ढेर सारे गाने आपके लिए आ रहे हैं इस स्टेशन पे एंड आज बहुत ही प्यारी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का भी बर्थडे है, कुछ गाने उनके बजा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, मेरी बहुत फेवरेट है ये एंड आई एम श्योर आप भी इनको डेफिनेटली जानते होंगे। मैं कौन सी सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ गाने इनके बजा रहा हूँ, जरा बताओ। ओए होए, बॉलीवुड में शुरू में तो ओवर एक्टिंग की दुकान थी लेकिन बाद में क्या एक्टिंग करके पहचान बनाई।

चलो जी, आपको थोड़ा सा काम करना है सुबह सुबह, मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ। ये जो गाने अभी सुन रहे हैं आप, ये कौन सी एक्ट्रेस के ऊपर पिक्चराइजेशन है आज की सुबह, आप मुझे बता सकते हैं जिनका बर्थडे होता है? हाय हाय, कितने साल की हो गई है ये, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। एक और सुनाता हूँ, चलो यार एक और सुन लेते हैं ना, बहुत अच्छा है। हाँ जी, तो आज कौन सी सेलिब्रिटी का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आप हमें बता सकते हैं व्हाट्सएप करके 9837896896 पे। उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, जरा उसको जल्दी से पहुंचाइए मेरे नंबर पे 9837896896। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। आज 21 सितंबर हो गई, पता नहीं चल रहा है बॉस। गणपति बप्पा मोरे, आज बहुत सारी जगहों पर गणपति विसर्जन है, मुरादाबाद में क्या हो रहा बताता हूँ। और आज का दिन क्यों खास है, 21 सितंबर का दिन क्यों खास है, इस पे बात करेंगे थोड़ी सी देर में। फिलहाल के लिए गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, ब्रांड न्यू मंडे मॉर्निंग है। आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट, सुनते रहिए आनंद को, आई विल बी राइट बैक।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
3: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? अब दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

93.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए जी। एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। 8:52 हो गए स्टेशन क्लॉक में। ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं आज की सुबह।

चलिए बात करते हैं आज देश दुनिया में क्या स्पेशल चल रहा है, आज की तारीख क्यों खास है देश दुनिया के लिए, इस पर एक नजर डालेंगे। श्रोताओं आपको बताते चलें, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। और आपको बता दें, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था सन 1857 में आज ही के दिन। और आपको बताते चलें, आज का दिन और विषयों के लिए भी काफी जो है खास है, और इतिहास के पन्नों में हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल ही होता है। एग्जैक्टली। और अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं और भी तमाम विशेषताएं आज के दिन से जुड़ी, जो आज के दिन हम जो है मनाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे।

आपको बताते चले सन 1883 में आज ही के दिन अमेरिका और ब्राजील के बीच टेलीफोन सेवा जो है वो शुरू की गई थी। श्रोताओं आज ही के दिन जो है ये शुरुआत हुई थी सन 1883 को। हां जी, और आपको बताते चलें माय विकिल रीडर मैगजीन की शुरुआत हुई 1928 में आज ही के दिन श्रोताओं। और इसके अलावा आज ही के दिन एक और बहुत ही अच्छी खास चीज़ हुई, एंड ये मैं आपको बता दूं, माल्टा ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की थी 1964 में आज ही के दिन श्रोताओं। हर दिन की तारीख कुछ ना कुछ नया लेकर आती है, कुछ ना कुछ विशेष हमें सिखाती है, और हम भी बस यही प्रयास करते हैं कि हर दिन के इतिहास से हम कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतरीन सीख सकें और अपने जीवन को थोड़ा सा और आसान बना सकें। हाँ जी, फिलहाल आपको बता दें आज अज़रा का भी जन्म हुआ सन 1895 में, जो हिंदी की सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री हैं। श्रोताओं आज के दिन जन्म हुआ था। इसके अलावा आपको बताते चलें आज के दिन नूरजहां प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका जिन्होंने भारतीय और पाकिस्तानी सिनेमा में जो है कार्य किया है, 1926 में इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन श्रोताओं। इसके अलावा आज ही के दिन दीपिका जी का भी जन्म हुआ 1991 में, जो भारतीय जो है एक खिलाड़ी हैं और ये काफ़ी पॉपुलर हैं, इनका नाम भी काफ़ी पॉपुलर है। किस चीज़ की खिलाड़ी हैं, ज़रा सी देर में इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। इसके अलावा रमानुज प्रसाद जी ने आकाशवाणी में प्रसिद्ध समाचार जो वो वक्ता थे, उनका भी जन्म हुआ था आज के दिन सन 2021 में आज ही के दिन जो है। श्रोताओं आपको बताते चलें इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। आज ही का दिन था वो जब वो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा किया गया, लेकिन हमेशा हर एक कलाकार की आवाज़ जहन में गूंजती है श्रोताओं, वो ना होकर भी हमेशा हमारे जहन में हमारे दिलों में हमेशा जिंदा होते हैं। आपको बताते चले जीवन में हर किसी को शांति चाहिए होती है, और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व आभार दिवस भी मनाया जाता है श्रोताओं आज ही के दिन, और आज राष्ट्रीय चाय दिवस भी हम मनाते हैं। तो आपसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज की सुबह, आप कितने बड़े चाय लवर हैं ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, कितने प्रकार की चाय आपने देखी अभी तक, आप ज़रा मैसेज करिएगा 9837896896। कौन कौन सी चाय के नाम आपको पता है ज़रा आप मुझे ये भी बता सकते हैं मैसेज करके 9837896896 पर।

आज बहुत ही कमाल की बॉलीवुड एक्टर का बर्थडे होता है, काफी नॉस्टैल्जिया है, काफी बढ़िया है, काफी समय से स्क्रीन पर देखते आए हैं वे, हम इनको मतलब देखते देखते बड़े हो गए हैं बॉस।

0: दिन
1: आए हाय जब ही मैच
0: शाम आती है
1: आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आज कौन सी अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ 46 ईयर की हो गई है आज
0: तेरे हवाले कर दिया।
1: अगर आपको समझ में आए तो आप मुझे मैसेज करिएगा 9837896896 पर व्हाट्सएप करके आप भी बता सकते हैं आप मेरे को मैसेज करके और मैं अभी थोड़ी देर में लौट कर आऊंगा तो अब आपसे एक खास विषय पे बात करने वाला हूँ। सो डोंट गो एनीवेयर ऐसे ही ट्यून इन रहिए आरजे आनंद के साथ। अगले घंटे बताता हूँ किसका बर्थडे हम बनाते हैं और आज सारे गाने इन्हीं के ऊपर पिक्चराइजेशन आप सुन रहे हैं हमारे साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसे ही ट्यून इन रहिए आरजे आनंद को सुनते रहिए एंड कुछ कहना चाहते हैं तो इमीडिएटली मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पर। फिलहाल ढेर सारे व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचे हैं लौट कर आएंगे तो आपके मैसेज को शामिल डेफिनेटली करेंगे। आप मुझे जरा बताओ यार फटाफट से मैसेज करके कितने प्रकार की चाय होती है जरा ये बताओ, मतलब आपने कौन कौन सी वाली चाय पी है, अदरक इलायची और भी तमाम तरह की चाय आजकल मार्केट में ट्रेंड कर रही है, मैं आप उसके बारे में बात करूंगा अभी लौट कर आऊंगा। तो आज राष्ट्रीय टी दिवस मनाया जाता है, कैसे हम बात नहीं करेंगे यार, जहां भारतीयों की शुरुआत ही चाय से होती है। फिलहाल ये गाना लौट कर आ रहा हूं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: कहा मेरी कसम?
1: मिस कर दिया तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर.
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081.
7: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर रिचा गर्ग. यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386.

0: You are listening to.
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

वेलकम बैक है वंस अगेन। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ढेर सारी बातें आपके साथ हो रही हैं। आज 21 सितंबर की तारीख है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि भैया रेंट पर, अभी मैंने बहुत सारी चीजें सुनी थी, कपड़े वगैरह ये वो सब मिल जाते हैं, लेकिन अब रेंट पे पार्टनर मिलेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। कैन यू इमेजिन यार। एग्जैक्टली आपको पता है जैसे नवरात्रि आती है तो हर किसी के जहन में गरबा डांडिया ये सब यू नो आना शुरू हो जाता है, और अच्छी बात है यार, आना भी चाहिए। हैप्पीनेस चारों तरफ जो है शुरू हो जाती है ना। अब ऐसे में जो है गुजरात अहमदाबाद में एक जेंजी के अंदर नया ट्रेंड जो है काफ़ी चर्चा में है इस वक्त, काफ़ी ये वायरल है। और ये ट्रेंड है कि भैया आप रेंट पर जो है पार्टनर ढूंढ सकते हैं। अगर आप डांडिया गरबा खेलने के लिए चाह रहे हैं कि आपके साथ कोई पर्सन जाए, तो आप जो है रेंट पर जो है किसी को लेकर जा सकते हैं। और भैया इनके चार्जेस हैं, इनके पैकेजेस हैं, अगर आप 1000 रुपये पे करेंगे तो आपको जो है दो घंटे के लिए आप जो है पार्टनर को लेके जा सकते हैं गरबा डांडिया में। वो आपके साथ स्टेप्स करेंगे, डांस मूव करेंगे, आपको रील्स बनाकर देंगे, आपकी फोटो खींचने में हेल्प करेंगे। बट अगर आप 2000 रुपये का पैकेज लेते हैं, मतलब ये प्लैटिनम है, अगर आप ये सॉरी प्रीमियम भी है प्लैटिनम भी है, तो अगर आप ये उससे 1000 से ऊपर का पैकेज लेते हो तो ये आपको आपकी आउटफिट्स ज्वेलरी एंड आपको घर छोड़ने तक में काफ़ी मदद करेंगे। तो अगर आप सिंगल हैं तो इस बार जेंजी में एक नया ट्रेंड जो है काफ़ी शुरू हो गया है, रेंटल गरबा पार्टनर, ये चल रहा है भाई साहब। मतलब अनबिलीवेबल कि यार ऐसा भी हो सकता है। और बताए गए पैकेज के हिसाब से अलग अलग समय में गरबा डांस और ये आउटफिट्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, और सेल्फी में काफ़ी सारी सुविधाएं जो इसमें शामिल है इस पैकेज में, एंड ये जो है घर जैसे छोड़ने वाली सुविधाएं भी इसमें आपको दी जा रही है। सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड में है, ये काफ़ी वायरल चल रहा है। इमेजिन यार कि देखो इस डांडिया गरबा आप जो है अगर सिंगल है तो आप पार्टनर लेके जाओ, वो भी रेंट पे। ओ माय गॉड, क्या क्या चल रहा है यार, मतलब आई कांट बिलीव दिस। एनीवेज आज हम एक बहुत ही प्यारी अभिनेत्री का बर्थडे मना रहे हैं, 46 ईयर की हो गई हैं आज, एंड उनके बारे में ढेर सारी बातें कर रहा हूं मैं आपके साथ। वही मैं आपसे पूछ रहा था कि वो कौन सी सेलिब्रिटी है जिनका हम बर्थडे मनाते हैं आज की तारीख में। अगर आपको पता है वो कौन सी एक्ट्रेस है तो डेफिनेटली उनका नाम आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड ऑफकोर्स उनके मैंने कुछ गाने यहाँ पर प्ले किए थे बैक टू बैक, अगर आपने नहीं सुने तो फिर आपने क्या सुना है यार। मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ उनके कुछ गाने, जरा ध्यान

अगर आपको समझ में आए कौन सी एक्ट्रेस हैं, कौन सी अभिनेत्री हैं जो आज 46 साल की होगी लेकिन आज भी नहीं लगती है यार, अगर आपको समझ आया है मैं कौन सी अभिनेत्री की बात करूं, उन्हीं के ऊपर पिक्चराइजेशन गाने भी आज आप सुन रहे हैं मेरे शो में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे। आज जो है नेशनल टी डे भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। हम आपसे ये भी पूछ रहे हैं साइड में, देखिए बहुत सारे लोग टी लवर हैं, चाय लवर हैं, उनकी दिन की शुरुआत बिना चाय के नहीं होती है और आज राष्ट्रीय चाय दिवस है, तो ऐसे मौके पे मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने कौन कौन सी फ्लेवर वाली चाय पी है, आपको कौन कौन सी चाय के नाम पता है, कितने प्रकार की चाय होती है, अगर आपको पता है कुछ भी इनमें से एक भी चीज आप जानते हैं तो मुझे जरा मैसेज करके बताओ यार 9837896896 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे। फिलहाल आने वाला गाना बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकल गया है, काफी इंटरेस्टिंग है ये ट्रैक और आज जिन पर हम बात कर रहे हैं वो अभिनेत्री इस गाने में नजर आई है। आप भी मुझे बता सकते हैं कौन से हीरोइन की बात कर रहा हूँ आज की सुबह। ये मंडे है, आप सुन रहे हैं आनंद को, दिस इज ब्रांड न्यू मॉर्निंग, लौट कर आते हैं कुछ और खास बातें करेंगे। मुरादाबाद में आए दिन बढ़ते ट्रैफिक की समस्या से हर इंसान को सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ खास चीजें हो रही है ट्रैफिक के बारे में बात करने वाला हूँ, लौट कर आऊंगा, तो आप ऐसी टीम रहे आनंद के साथ।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अजय आनंद इज बैक।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: Welcome back. वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक, और तमाम सारे आपके मैसेज मुझ तक पहुंचे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इतने सारे ढेर सारे मैसेजेस की बारिश हो गई मेरे पास। अमित वर्मा जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं, आनंद जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? बिंदास मॉर्निंग में बिंदास वाले गाने सुन के सुबह और भी बिंदास हो जाती है आपके साथ, क्या बात है यार। लिखते हैं, फिर मुरादाबाद सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। हिमगिरी से जुड़ रहे हैं अमित वर्मा, एंड मेरे पास दर्पण भैया ने राइट आंसर पहुंचाया। मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ बहुत ही कमाल की फैबुलस बॉलीवुड एक्टर का बोध दे। एंड इसके अलावा हमारे पास जुड़ चुके हैं बाबू अंसारी साहब, पहुंच चुके हैं अपने मैसेज के माध्यम से, लिखते हैं, हेलो जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम लिखते हैं। आनंद सर गुड वाली मॉर्निंग, अदरक की चाय तो पीते ही है और हमें तो बहुत पसंद है। एंड साथ में इन्होंने लिखा है, जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है उनका जन्मदिन है और उनका नाम ये है, क्या बात है, इनको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आगे बढ़ते हैं, दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनप्रीत जी ने मुझे राइट आंसर दिया है, इशिका मेरे साथ लाइन पार से जुड़ी है, साथ में पल्लवी का मैसेज पहुंचा है, ये हमारे पास गायत्री नगर से जुड़ चुकी है, मनप्रीत क्या नाम लिखा है, मनप्रीत एंड पूजा कौर, ऑलराइट थैंक यू सो मच अपना मैसेज करने के लिए और सही जवाब देने के लिए। प्रिय मित्र आनंद जी को नमस्कार, बिंदास मॉर्निंग में हाजिर हो गया हूँ, गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से मैसेज कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सो मच। रिहाना मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, आनंद जी गुड वाली मॉर्निंग, कैसे हालचाल है आपको, प्यार भरा सलाम। चौधरी मुमताज आलम और साथ में राकेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा तारिक यादव जुड़ चुके हैं मेरे साथ, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। जुल्फी भाई मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। सहारनपुर से हमारे रेगुलर लिसनर जुड़े हैं जोन रोजी पलविलीस, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है, परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में है, उदासियां चेहरे पर दिखाई दे ये तो जरूरी नहीं है, क्या बात है जनाब, कमाल करते हो यार, इतने शानदार मैसेज पहुंचाते हो आप लोग, सच बता रहा हूँ दिल गार्डन गार्डन हो जाता है आपके मैसेजेस से, मैं आपको क्या ही बताऊं यार। फिलहाल आज की सुबह मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन सी एक्ट्रेस के ऊपर है ये गाने पिक्चराइजेशन जो आपको आज की सुबह मैं सुनवा रहा हूं, उनका नाम आपको बताना है, बार बार नहीं बताऊंगा, बस लास्ट मौका है आपके पास।

बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हो भाई? आप भी मुझे मैसेज कर सकते हो। कौन सी अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ? आज की सुबह इनका बर्थडे है। आपको एक क्लू देने वाला हूँ, बहुत बढ़िया, आप समझ जाओगे फिर। भाई ये सुनने के बाद हर कोई बता देगा आज किसका बर्थडे है। इन्होंने सिखाया, क्या बात है। चलो भाई अभी लौट के आता हूँ, फिर आपसे और बातचीत करूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896। अगर आपको समझ में आ गया है कौन सी अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ आज की सुबह, तो फिर आप देरी मत करो यार, फटाफट मुझे मैसेज कर दो 9837896896 पर। इमीडिएटली व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप समझ गए तो। और आज बहुत ही स्पेशल एक और दिवस मनाया जाता है जिसपे मैं डेफिनेटली बात करने वाला हूँ। बस अब भी लौट कर आता हूँ, उसके बाद बात करूँगा।

एक और सुनो यार। चलो आप ऐसे ही ट्यून रहो हमारे साथ, तो सुनते रहो एफएम मुरादाबाद और रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कुछ कहना चाहते हैं आप तो मैंने नंबर बता दिया है आपको। एक खास कड़क अपडेट आपको देने वाला हूं अपने मुरादाबाद से जुड़ी हुई, जिसको सुन के आपको सच में ना बिलीव नहीं होगा यार, लेकिन करना पड़ेगा आपको बिलीव क्योंकि मैं दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन। तो आप ऐसे ही ट्यून इन रहें और बाकी आपके मैसेज मुझ तक पहुँचने में ऐसे ही शामिल करता रहूंगा इन मैसेज को। आप बस कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। ज्यादा पकाऊंगा नहीं, अभी लौट कर आ रहा हूँ फटाफट से। एक बढ़िया सा गाना प्ले कर रहा हूँ अभी, ब्रांड न्यू ट्रैक है, एक अच्छा गाना है, मतलब थोड़ा सा नया सॉन्ग है। इसको सुन के आप शायद अभी गेस कर लोगे आज मैं कौन सी अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद अभी आऊंगा तो पूरी पिक्चर क्लियर कर दूंगा, मैं खुद ही बता दूंगा कौन सी एक्ट्रेस है। बहुत सारे मैसेज आ गए ऑलरेडी मेरे पास, थैंक यू सो मच एवरीवन।

0: तेरे हवाले, बहुत ही प्यारा गाना भी आपने एंजॉय किया यार। लाल सिंह चड्ढा का एक ट्रैक था, अरिजीत अंशुल पर राव की आवाज। सच बताऊं तो ये कुछ गाने सुन के ना दिल को बड़ा सुकून मिलता है। मतलब कुछ गाने इतने प्यारे होते हैं जिन्हें सुनने के बाद ना सच में मॉर्निंग एकदम फैब्यूलस हो जाती है। गुड मॉर्निंग, ये मंडे की सुबह है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
0: हर किसी को लगता है यार जिंदगी में थोड़ी शांति मिल जाए, थोड़ा पीस मिल जाए, लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए, है ना। हर किसी को पीस चाहिए होता है जिंदगी में, और उसी पीस को सेलिब्रेट किया जाता है आज 21 सितंबर को हर साल एग्जैक्टली। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, वेलकम बैक यू वंस अगेन। एंड ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं, और हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, तो भैया जो शांति है ये भी सेलिब्रेट किया जाता है, आज पीस का दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो तमाम सारे दिन जो है वो आज के सुबह सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। सभी चाय प्रेमियों को सबसे पहले चाय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है श्रोताओं, और मैंने सुबह ही पूछा था आपसे आते ही आपकी फेवरेट चाय कौन सी है, और उस पर ढेर सारे मैसेज आपने किए, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं, पीस हर किसी को चाहिए होता है भाई, कि देखिए जिंदगी में कुछ मिले ना मिले अगर शांति मिल जाए तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है, है ना। और हर चीज में कहीं ना कहीं पीस होना बहुत जरूरी है, बट हम ढूंढते रहते हैं मिलता फिर भी नहीं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन ही नहीं है भाई हर चीज में, तो हमें और चाहिए वाली भावना रखे होते हैं हम। खैर एनीवेज, सभी चाय प्रेमियों को बस इतना ही कहना चाहते हैं, जो वक्त के साथ बदल जाए वो राय होती है, और जो जिंदगी में कुछ नहीं होता तो बस एक कप चाय होती है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया लाइन बोली ना। चलिए फिलहाल अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले एक सेलिब्रिटी की बात कर रहा था कि आज बहुत ही प्यारी सी सिलेब्स का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एंड शी इज वेरी वेरी आइकॉनिक बॉलीवुड एक्टर, जिनके बारे में बात कर रहा था मैं आज की सुबह। 46 साल की हो गई है, बहुत प्यारी सेलिब्रिटी हैं, एंड काफी सारे ऑफकोर्स आपने इनके गाने इनकी मूवी देखी हैं, हम सब इनके मूवी गाने देख देख के बड़े हुए हैं यार। मतलब बहुत ही प्यारी और बहुत ही कमाल की सेलिब्रिटी है ये, तो हमें नहीं पता जी। क्या बात है यार, तो आज करीना कपूर खान का बर्थडे होता है। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट आंसर, करीना कपूर 46 की हो गई हैं आज, और बहुत सारे लोगों ने जो है आज की सुबह मुझे आंसर्स दिए हैं, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। मतलब भर भर के मैसेज आए हैं यार, थैंक यू सो मच। सच में यार बहुत सारे लोगों ने बता दिया है कि भैया आज करीना कपूर खान का बर्थडे होता है, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं। क्या कहती है, यस। अभी इनसे जुड़ा एक और सवाल मेरे पास है, जरा सी देर में लौट के आऊंगा तो पूछूंगा। आपको पता है पंजाब के अंदर जो है एक आईफोन भंडारा चलने वाला था, मतलब 22 सितंबर को, मतलब बहुत ट्रेंड कर रही थी ये चीज कि आपको क्या करना है, बस आपको जो है ना कमेंट बॉक्स में जमाता दी लिखना है, उसके बाद जो है आपको एक आईफोन 17 दिया जाएगा। एंड इसके बाद जो है प्रशासन को पता लगा, तो उन्होंने जो है हालांकि अभी इसको बैन करने की बात करी स्कीम को, लेकिन पंजाब के अंदर जो है एक भैया जी हैं जो मतलब भंडारा करते हैं इस तरीके का, ऐसा उनका कहना, उन्होंने पहले गोल्ड कॉइन भी दिए थे और वो आईफोन जो है बांट रहे हैं, और एक नंबर उन्होंने सर्कुलेट किया था कि इस नंबर पे आपको सिर्फ जमाता दी लिखना है। 17 तारीख से लेकर 22 सितंबर तक जो है कंपटीशन चलने वाला था, जिसमें से 10 लोगों को आईफोन 17 दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा कि हम भंडारा शुरू कर रहे हैं आईफोन का, एक जमाता दी लिखो और आपको आईफोन मिल जाएगा। मतलब ये जो बात सोशल मीडिया पे आई तो काफी तहलका मच गया, काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुई ये बात। अभी फिलहाल पंजाब पुलिस ने इसको जो है मना किया हुआ है कि भैया इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते, इससे दिक्कतें भी हो सकती हैं।
3: मेरे फोटो को
0: कौन है ये?

0: आईफोन बांट रहे हैं, इनके फोटो दो यार हमको। सीने से तो नहीं लेकिन हम छपवा देंगे बस। ओए होए ओए होए,
1: मेरे फोटो को।
0: ये मंडे है यार, चिपका ले सैया। हाय हाय हाय। चलो भाई अभी काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं आज की सुबह तो बिल्कुल होइए, ढेर सारे संदेश पहुंच रहे हैं। अभी एक और बात आपको बताने वाला हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप सुनोगे तो आप भी बहुत चक्के रह जाओगे यार कि ऐसा भी हो सकता है क्या। यस ऑफ कोर्स। और अगर आप बहुत ज्यादा चाय पीते हो तो उससे जुड़ी भी मेरे पास एक खबर है, तो आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ। देखो बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए आपको आज की मॉर्निंग, आप बस ऐसे ही ट्यून इन रहो। और हमेशा जब रेडियो पे आते हैं तो ढेर सारी बातें और बहुत सारी जानकारियां लेकर आते हैं, ये तो एडवांटेज है यार रेडियो की। और कल मुरादाबाद में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, उस पे एक नजर डालेंगे। अभी मैं फटाफट आ रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल एक गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।

0: फेवी गोल का नहीं पता, अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अगर आप कहीं चिपक गए हैं भाई एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के आसपास की अटके हुए हैं, तो ये आप मुझे बता सकते हैं 9837896896 पर।
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: क्या? मेरी कसम
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाय चाय चाय
4: बिंदास मॉर्निंग।
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
5: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
6: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
5: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
6: अरे नहीं,
7: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
6: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
5: अच्छा?
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
1: अरे आनंद इज बैक।
0: वेलकम बैक है वंस अगेन। ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी प्यारे प्यारे मैसेज शेयर करने के लिए। आपको बताया, दिल्ली के अंदर एक लड़का 2 घंटे के लिए लड़की बना रात में, और उसने जो है स्कूटी लेके वो रात को निकला 2 बजे दिल्ली की रोड पे, और वो ये सिर्फ चेक करने के लिए निकला था कि रात में कितनी सेफ हैं लड़कियां, और वो सारी उनकी जो डेटा था वो सब रिकॉर्ड हो गया, वो सब फीचर हो गया है कैमरा में। उसके बाद जो है, हालांकि वो काफी डरा हुआ था, और उसने बताया उस 2 घंटे के दौरान दिल्ली में काफी रिक्शा वाले, ऑटो वाले, बाइक वाले, काफी लोग थे, साइकिल से लेके कार वाले, सब ने उसका पीछा किया और वो काफी घबरा भी गया था। उसने खुद एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड उसके बाद जो है उसको ये रियलाइज हुआ कि यार अगर 2 घंटे के लिए मैं लड़की बन के ये प्रॉब्लम फेस करूं, तो वहां पे लड़कियां जो है किस तरीके से जो आधी रात में लेट नाइट निकलती हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। वहां की इन्फ्लुएंसर ने, और इसका वीडियो 18 घंटे के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया, मतलब इसने ये सिर्फ एक फंडा फॉलो किया कि एक तरीके से हम देखते हैं, एंड काफी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है मुरादाबाद दिल्ली का ही, और दिल्ली के अंदर ही इसने ये ट्रायल लिया, एंड उसके बाद जो है अब सारी चीजें बहुत ज्यादा और मतलब वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई इस चीज को देखते हुए। लेकिन मतलब आप सोच सकते हैं कि उस बंदे ने एक इनिशिएटिव लिया, उसके बाद वो उसका एक वीडियो बहुत लोगों को जो है काफी प्रभावित किया। सोचिए, 18 घंटे में 1 करोड़ बार से ज्यादा वो देखा गया है, यार क्या बात है। मतलब इस तरह की इनिशिएटिव लेना अपने आप में ही बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग चैलेंज यार। चलिए, फिलहाल करीना कपूर खान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हम। इसी बात पर आज का एक सवाल तो होना चाहिए।
1: कड़ा क्वेश्चन।
0: हाँ जी, तो फिलहाल मेरा कड़क क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की सुबह मैं एक डायलॉग प्ले कर रहा हूँ, बेसिकली ये डायलॉग करीना कपूर खान का ही है। कौन से फिल्म का है ये बताना।
5: क्या खाना खाओगे? चाइनीज, थाई, लेबनीज, अफगानी, कंदारी, इंडोनेशियन, कोरियन, वियतनामीज।
8: एक मिनट, तुम्हें सब बनाना आता है?
5: ऑफ कोर्स।
8: क्या बात है, मतलब ये तो पूरे महीने का मेन्यू हो गया। चलो आज एक काम करते हैं, आज हम हिंदुस्तानी खाने से शुरू करते हैं, दाल रोटी।
5: दाल रोटी?
8: हाँ,
5: वो तो नहीं बन सकती।
8: क्यों, घर में सब कुछ तो है।
0: आप मुझे मैसेज करके बताइएगा 9837896896 पे। आज करीना कपूर खान का बर्थडे है, ये कौन सी फिल्म का जो डायलॉग है वो अभी जो प्ले हो रहा है, कौन सी फिल्म का डायलॉग है बेसिकली, आई वांट टू आस्क यू। आप मुझे मैसेज करके बताइए।
5: बोलो आज क्या खाना खाओगे? चाइनीज, थाई, लेबनीज, अफगानी, कंदारी, इंडोनेशियन, कोरियन, वियतनामीज।
8: एक मिनट, तुम्हें सब बनाना आता है?
5: ऑफ कोर्स।
8: क्या बात है, मतलब ये तो पूरे महीने का मेन्यू हो गया। चलो आज एक काम करते हैं, आज हम हिंदुस्तानी खाने से शुरू करते हैं, दाल रोटी।
5: दाल रोटी?
8: हाँ,
5: वो तो नहीं बन सकती।
0: चलिए, अगर आप समझ गए हैं कौन सी फिल्म का डायलॉग है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा 9837896896 पे। करीना कपूर खान का ही फिल्म का डायलॉग है, बॉबी देओल एंड करीना कपूर फीचर किए गए हैं फिल्म के अंदर, बहुत ही अच्छी मूवी है, और ये डायलॉग मैंने अभी प्ले कर दिया है। अगर आप समझ गए हैं कौन सा डायलॉग तो आपने ऑफकोर्स सुन ही लिया है, कौन सी फिल्म का है ये, व्हाट्सएप करो अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ अपना राइट आंसर। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एक बार फिर से विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे करीना कपूर खान, एफएम मुरादाबाद की पूरी एंटायर फैमिली की ओर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: क्या बात है यार, बहुत बढ़िया गाना कम वक्त इश्क से अभी आपने एंजॉय किया। अभी फटाफट से एक ट्रैफिक की जानकारी आपको देता हूँ फटाफट से इमिडिएटली। मुरादाबाद की ट्रैफिक अपडेट ये भैया कि यातायात पुलिस ने 20 सितंबर को जो है नियमों में उल्लंघन करने वाले ऑटो, ई ऑटो और ई रिक्शा के खिलाफ 36 कार्रवाई की और वहीं डंपर और ट्रकों की भी कार्रवाई करते हुए 111 का चालान किया। आपको बता दें भैया, देखिए पुलिस ने जो है वाहन चालकों से अपील की है कि प्लीज ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सुरक्षित सफर करें। और भैया देखिए, मुरादाबाद में जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं प्लीज उनको अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे, जो रूल्स बनाए गए हैं, तो आप भी सुरक्षित अपने घर पहुंचेंगे और सामने वाला व्यक्ति भी अच्छे से घर पहुंचेगा। कई बार मैं देखता हूं जब भी मैं रोड पर निकलता हूं तो कई बार लोग जो है भाई साहब रॉन्ग साइड घुस जाते हैं। भाई ये नहीं मत करा करो यार, मत किया करो इस तरह के से, मतलब मुझे लगता है कि बहुत गलत है, रॉन्ग साइड घुसने की जरूरत नहीं। मतलब कभी कभी ना जल्दीबाजी में आदमी, आई नो जब आप कभी कभी सिग्नल पे होते हो तो बड़ी एकदम से लगता है इंसान को थोड़ा इरिटेटिंग होने लगता है, बट इतना भी ज्यादा भाई साहब इरिटेटिंग होने के चक्कर में गलत चीजें मत करिए, फिर बाद में उसका जो जुर्माना है वो आप ही को भरना पड़ेगा ना। मैं तो सिर्फ आपको एडवाइस कर सकता हूँ, बाकी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करें और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी यार। भले ही आप देर से जाओ मगर सुरक्षित और आराम से अपने घर जाओ, मेरा मानना तो ये है बॉस, है ना। फिलहाल आप ऐसे ही आनंद को सुनते रहो, अगर आपके पास भी कोई ऐसी लेटेस्ट कड़क अपडेट है तो डू शेयर विद मी 9837896896, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। अभी एक और बढ़िया ढिंचैक नंबर, सुखविंदर सिंह सुनिधि चौहान की आवाज। ये मंडे मॉर्निंग है, वक्त हुआ है 9:53, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। आज की सुबह मैंने आपसे पूछा एक बहुत अच्छा सवाल, करीना कपूर खान का बर्थडे है आज 21 सितंबर को, आपको मेरे को बताना है ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है।
1: बोलो आज क्या खाना खाओगे, चाइनीज, थाई, लेबनीज, अफगानी, कंदारी, इंडोनेशियन, कोरियन, वियतनामीज।
2: एक मिनट, तुम्हें सब बनाना आता है?
1: ऑफ कोर्स।
2: क्या बात है, मतलब ये तो पूरे महीने का मेन्यू हो गया। चलो आज एक काम करते हैं, आज हम हिंदुस्तानी खाने से शुरू करते हैं, दाल रोटी।
1: दाल रोटी?
0: आप मुझे इमीडिएटली मैसेज कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया है कौन सी फिल्म का डायलॉग है, तो उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ नंबर 9837896896। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मुरादाबाद, गुड मॉर्निंग।

0: बेहतरीन गाना भी आपने एंजॉय कर लिया। सच बताऊं यार, कुछ गाने इतने प्यारे होते हैं ना, जिनको सुन के अंदर का डांस बाहर आ जाता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और सुबह सुबह ऐसे गाने सुनने को मिल जाए तो सुबह ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ।
1: इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, आज 21 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय चाय दिवस, यानी कि आज का दिन बहुत खास है। नेशनल टी डे मनाया जाता है जिसपे हम ढेर सारी बात करें। और भैया बची हुई चाय अगर पीते हैं आप तो जरूर जान लें कुछ टिप्स, कुछ छोटी छोटी बातें। हाँ जी, 3-4 घंटे के बाद जो है लंबे समय तक रखी हुई चाय जो है नहीं पीनी चाहिए, उसमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ दूध वाली चाय में भी थोड़ा खतरा बताया जाता है कि मतलब दूध और शुगर वाली चाय जो ज़्यादा समय तक रखी होती है, कई बार ये होता है कि गर्म करके पी लेते हैं, भाई वो नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर चाय 20-25 मिनट के बाद भी रखी तो मत ही पियो, तो ज़्यादा बेहतर है भाई, फ्रेश बना लो, ठीक है। बार बार गर्म करना भी चाय को ठीक नहीं है, चाहे आप ग्रीन टी ले रहे हो या हर्बल टी ले रहे हो, कोई सी भी चाय हो, बार बार गर्म करके अगर आप पीते हो तो उसके अंदर के जो फायदे हैं, जो गुण हैं, वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अगर इस चक्कर में हो कि भैया ये तो ग्रीन टी है, ये तो हेल्दी वाली टी है, इसको गर्म करके दोबारा पी सकते हैं, तो भैया उसके अंदर जो पावर है, जो उसके गुण हैं, वो डेफिनेटली खत्म हो चुके होते हैं। तो दोबारा बार बार गर्म करके पीने से आप एक बार ही ट्राई करें, ठीक है। तो भैया चाय जो है कितनी देर में पिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर चाय बन जाए तो मतलब आप कोशिश करें कि 20-25 मिनट के अंदर उस चाय को पी लें, और दोबारा गर्म कर उसका सेवन करने से आप बचें। और बाकी बची हुई चाय प्लीज़ मत पीजिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा चाय पीनी भी नहीं चाहिए यार, बहुत ज़्यादा चाय लवर जो है मैं मानता हूँ कि अपने भारतवर्ष में पड़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चाय, आपको भी पता है, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा होती है तो वो आपको नुकसान ही पहुँचाती है ना। तो इसीलिए जो है ज़्यादा चाय का इस्तेमाल मत कीजिए। भारत में जो है चाय का दुनिया में जलवा है इस टाइम पे, असम दार्जिलिंग में चाय दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखती है, आपको पता है। इसके अलावा आपको बता दें हर चाय का अपना एक अंदाज़ होता है, चाहे अदरक वाली चाय हो, इलायची वाली चाय हो, मसाला चाय हो, लेमन टी हो, ग्रीन टी हो, या फिर कश्मीरी वाली हो, है ना। तो हर चाय का अपना एक स्वाद है, और बस कहते हैं ना एक प्याली चाय हज़ारों यादें दे जाए। हाँ जी, किसी के लिए सुबह की पहली चुस्की और किसी के लिए दोस्त के साथ खास मुलाकात, चाय का रिश्ता सिर्फ स्वाद से नहीं, यादों और रिश्तों से भी जुड़ा होता है। तो फिलहाल चाय पे चर्चा तो ढेर सारी होती है हर सुबह, आपको वंस अगेन नेशनल टी डे की शुभकामनाएं। चाय पे ढेर सारी चर्चा हो गई आज की सुबह, आज नेशनल टी डे मनाया जाता है, इस पर ही हम बात कर रहे थे आज की मॉर्निंग आपसे। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक लेटेस्ट अपडेट आपको देखता हूँ, बिग बॉस 20 के सीजन पर जो है सोनाली बिंद्रे एंड सलमान खान की जो जोड़ी आफ्टर लॉन्ग टाइम देखने को मिली है, जो फैंस को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रही है। एग्जैक्टली प्रेम और प्रीति का जो मिलन एक बार हो गया है बिग बॉस के मंच पर, सलमान सोनाली बिंद्रे एक साथ नजर आए हैं, जो फैंस को बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। इनकी फोटोज काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। बिग बॉस 20 का जो सीजन है वो आपको बताया स्टार्ट हो गया है, जिसमें एक साथ जो है लोग निकल कर आए, और हम साथ साथ में फिल्म की जो यादें वो ताज़ा हो गई हैं। फैंस काफी एक्साइटेड हैं, तरह तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं और इसको शेयर भी कर रहे हैं। चलिए दोस्त, 10:02 हो गए, आरजे आनंद के साथ आप ट्यून इन है एफएम मुरादाबाद पर। कुछ एड ब्रेक आ रहे हैं, उसके बाद मैं जल्दी से वापस आ रहा हूँ एक अच्छे से लकी कॉलर के साथ।
3: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें, इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 से 7 तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट, रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रूपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190 श्री साई हॉस्पिटल रोड मुरादाबाद।
4: आवश्यक सूचना, 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
0: वंस अगेन आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा है आज की सुबह, जिसका जवाब आप मुझे मैसेज करके दे सकते हो 9837896896 पे। लास्ट ऑप्शन है आपके पास, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये कौन से फिल्म का डायलॉग है, बॉबी देओल एंड करीना कपूर खान पर पिक्चराइजेशन।
5: बोलो आज क्या खाना खाओगे, चाइनीज, थाई, लेबनीज, अफगानी, कंदारी, इंडोनेशियन, कोरियन, वियतनामीज।
6: एक मिनट, तुम्हें सब बनाना आता है?
5: ऑफ कोर्स।
6: क्या बात है, मतलब ये तो पूरे महीने का मेन्यू हो गया। चलो आज एक काम करते हैं, आज हम हिंदुस्तानी खाने से शुरू करते हैं, दाल रोटी।
5: दाल रोटी?
6: हाँ।
5: वो तो नहीं बन सकती।
6: क्यों, घर में सब कुछ तो है।
0: आप मैसेज करके बता सकते हैं मुझे आज की मॉर्निंग, अगर आप समझ गए हैं कौन से फिल्म का डायलॉग है, इमीडिएटली मतलब? आपको उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। अगर आप समझ चुके हैं कौन से फिल्म है जनाब ये बता दो फिर मुझे। अभी लौट कर आता हूँ एक लकी कॉलर के साथ। डोंट गो एनीवेयर, ऐसे ही ट्यून इन रहिए आरजे आनंद के साथ।

0: भाई देखो, तारीफ तो जितनी भी करा लो भाई साहब, कमी कम है। और लड़कियों को तो खास करके तारीफ बहुत ज्यादा, बेहद ही ज्यादा पसंद होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाय, वेलकम बैक हियर वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। 10:07 हो गए मंडे की सुबह। फिलहाल इस ब्यूटीफुल मंडे को यहीं पर फुल स्टॉप लगाने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे को यहां से जाना पड़ेगा बॉस। हाँ जी, कैसे हाल चाल है? ढेर सारे लकी लिसनर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, मतलब जिन्होंने मुझे सही जवाब दिया है। और मतलब सबसे पहले जो मेरे पास सही जवाब आया था, उनका नाम बता दूं क्या यार? मतलब मेरे को कभी कभी बिलीव नहीं होता कि लोग इतने ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं भाई, और एकदम से सही जवाब बता देते हैं। और कभी कभी कुछ लोग सिर्फ गलत जवाब देने भी लगे होते हैं।
1: गुड मॉर्निंग आनंद भाई,
0: मॉर्निंग भाई।
1: करीना कपूर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी जी जी।
1: और आज हम मना रहे हैं करीना कपूर जी का जन्मदिन।
0: बिल्कुल,
1: उनको की से
0: बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज द राइट आंसर। आज मैंने पूछा था आपसे कौन सी फिल्म का डायलॉग है, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं। और सही जवाब क्या,
2: क्या खाना खाओगे?
0: सही जवाब है, इस फिल्म का नाम है अजनबी बॉबी देवल एंड करीना कपूर पर पिक्चराइजेशन था। कोमल कंग्रेचुलेशन। इसके अलावा मेरे पास जवाब यहाँ पर पहुंचा था भाई साहब, ये रामपुर से है शमा जी, इन्होंने सही जवाब दिया था। कोमल एंड शमा कंग्रेचुलेशन, ऑल द वे बेस्ट, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। विभोर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह। विभोर भाई थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, आपने भी राइट आंसर दे दिया है। तो ये दो तीन लोग हैं जिन्होंने फाइनली एकदम उंगलियों को तेजी के साथ बढ़ाते हुए स्पीड के साथ सही जवाब दिया है। कंग्रेचुलेशन आपके लिए। चलिए भाई एक बार बोल दो। थैंक यू सो मच गाइज। अभी आनंद की ओर से साइनिंग ऑफ यही कहना चाहता हूँ, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी मॉर्निंग को रिचार्ज बनाते रहिए। एंड बाकी कुछ कहना चाहते हैं तो सोशली आप मुझे ढूंढ सकते हैं, ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, मेरी आईडी आपको मिलेगी रेडियो वाला आनंद 99 के नाम से। ऑफकोर्स फॉलो कर लो यार, बहुत सारी अपडेट वहां भी देता रहता हूँ। दुर्गेश सैनी मेरे साथ जुड़े थे, गुड मॉर्निंग सर, गलत जवाब हो गया बॉस आपका। हाय, कैसे हालचाल है? ये फिल्म का नाम है अजनबी। थैंक यू सो मच नाजिया एंड सना मेरे साथ जुड़े आज की सुबह। बबली गीता लक्ष्मी ये भी मेरे साथ जुड़ चुकी है आज की सुबह। इसके अलावा विभोर भाई थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीबॉडी, आप लोगों ने सच में बड़े मजेदार जवाब दिए। उषा अरोड़ा चंदनगर से जुड़ी है। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज पल्लवी, लाइन पार से सही जवाब पहुंचा रही है। कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्यारे मित्र मेहराजुद्दीन, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली मेहराज अंसारी, बाबू अंसारी लिखते हैं, आनंद जी क्या हालचाल है, नई नई जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें सुन के सच में बड़ा मजा आता है। दर्पण भाई थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू बाबू साहब, थैंक यू तमन्ना, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन, आपने भी एकदम सही जवाब दिया है। थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू सो मच। बाकी जिन लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ उसके लिए माफी चाहता हूँ। हाय गुड मॉर्निंग, आज करीना कपूर का बर्थडे है, लाइन पार से बात कर रहा हूँ जसबीर। हाय जसबीर, थैंक यू सो मच अपना टेक्स्ट मैसेज देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग जी, ये अंसारी जी मुझे मैसेज कर रहे हैं। हाय गुड मॉर्निंग रईस साहब, हाय गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, कैसे हाल चाल है? माय नेम इज प्रीति, हाय प्रीति, गुड मॉर्निंग। तो गाइस चलिए फिलहाल इस खूबसूरत मंडे को, आज की इस खूबसूरत वाइब को यहीं पर फुल स्टॉप लगाते हैं। आज करीना कपूर के बर्थडे से लेकर देश भर में क्या चल रहा है, दिन भर की तमाम बातों पर जो है हमने खूब सारी बातें कर ली हैं। और अब हम लेते हैं आपसे इजाजत, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मस्त रहिए, झकास रहिए और ऐसे ही चेहरे पर स्माइल रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। और आरजे आनंद कहेगा अभी साइनिंग ऑफ, मिलेंगे कल टुमारो मॉर्निंग। और अभी बस ये कहना चाहता हूँ, कोई एक काम पूरे दिन में ऐसा जरूर करें जिससे आपके चेहरे पर एक अच्छी स्माइल आ सके, है ना? और बाकी ऐसे ही अच्छी बातों के लिए प्लीज कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग।

0: 10% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट, रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ और आपका अपना फेवरेट शो लेकर हाजिर है। शो का नाम तो आपको मालूम ही है ना? अच्छा, जो अभी न्यू लिसनर कनेक्ट हुए उनको नहीं मालूम है, चलिए मैं बता देती हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमारे शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। मंडे मॉर्निंग है एंड एवरीवन, वीक का पहला डे और मंडे, कहते हैं ना कि मंडे मन का डे होता है। और नई सुबह है, नया मंडे है और साथ में एक नई शुरुआत भी है। जो बीत गया उसे जाने दीजिए, आज को अपनी पॉजिटिव एनर्जी और खूबसूरत स्माइल के साथ शुरू कीजिए। एवरीवन, याद रखिए, हर नया दिन हमें खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का एक नया चांस देता है। तो आज खुद पर ट्रस्ट रखिए, अपने गोल पर फोकस कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। हैप्पी मंडे एवरीवन। एंड बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आपका पूरा दिन पॉजिटिव वाइब से भरा रहे और आप ऐसी प्यारी से चेहरे पर स्माइल करते रहें। इसी थॉट के साथ करते हैं अपने शो की शुरुआत। आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, आज 21 सितंबर है और 21 सितंबर की तारीख अपने आप में बहुत स्पेशल है। आज बहुत अच्छे अच्छे डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। अपने मुरादाबाद सिटी में क्या चल रहा है वो अपडेट सब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है खुशी के साथ और अपने प्यारे प्यारे संदेश भी पहुँचाने हैं, उसमें आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है और मैं आपके साथ आपकी खुशी लेकर आई हूँ, आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। आप तो मुस्कुरा दो। चलो करते हैं शो की शुरुआत एक अमेजिंग ट्रैक के साथ फ्रॉम द मूवी धुरंधर से, ये गाना।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजी खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजी खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गा।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजी खुशी आपके साथ है और अभी आपने एंजॉय किया ये अमेजिंग ट्रैक। और दोस्तों, आज 21 सितंबर और आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे, यानी विश्व कृतज्ञता दिवस। कृतज्ञता यानी उन लोगों और उन छोटी छोटी खुशियों के लिए दिल से शुक्रिया कहना जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कभी माँ की छोटी सी चिंता, पापा का बिना कहे साथ देना और दोस्त का मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होना, इन चीजों की कीमत शायद हम रोज महसूस नहीं करते। तो आज एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज कीजिएगा। जिस इंसान ने आपकी जिंदगी में थोड़ी भी खुशियां जोड़ी है ना, उन्हें दिल से थैंक यू कहिएगा, क्योंकि जिंदगी में ना खुशियां सिर्फ बड़ी उपलब्धियों से नहीं मिलती, कभी कभी ना किसी के साथ और उसके लिए महसूस की गई कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड भी दिल को बहुत सुकून देता है। तो आज शिकायत थोड़ी कम रखिएगा और ग्रेटिट्यूड थोड़ा ज्यादा थैंक यू हर उस चीज के लिए कीजिएगा जो आपके पास है। और शायद बहुत लोग उस चीज के लिए उसे पाने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन ऑलरेडी वो आपके पास है। तो थैंक यू कहिए यूनिवर्स को, गॉड को, अपने पेरेंट्स को, अपने उस साथी को और कभी कभी उस इंसान को भी जिसको आप नहीं जानते हैं लेकिन वो भी आपकी मदद कर देते हैं कहीं ना कहीं अनजाने में ही, और बड़ा अच्छा लगता है। या फिर आपने भी कभी ऐसा किया हो, किसी इंसान को आप नहीं जानते हो लेकिन आपको लगता है, आपको लगा कि वो उसको आपकी जरूरत है, आपकी मदद की नीड है, लेकिन आप बिना कुछ बोले उनकी मदद कर देते हैं और वो खुशी शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती है। निस्वार्थ सेवा करना, किसी की हेल्प करना अलग ही सुकून देती है एवरीवन। और आपकी लाइफ में इतने स्पेशल मोमेंट होते हैं, इतना कुछ आपके पास है, हाँ, तो सबके लिए थैंक यू तो बनता है ना आज की सुबह। तो आज थैंक यू हर उस पर्सन को कहिएगा जो आपकी लाइफ में है, जो कहीं ना कहीं आपको खुशियां देते हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प करते हैं। या एक उस इंसान को जिसका आप सुबह उठते ही जैसे ही फोन चेक करते हैं आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाता है, तो थैंक यू बोलना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तो मैं भी आपको कहना चाहती हूँ एवरीवन, क्योंकि आपके बिना ये शो अधूरा है और जब यहाँ पर आपके मैसेजों की बौछार होती है ना, तो रियली बता रही हूँ एवरीवन, इतना अच्छा फील होता है ना, मैं कैसे बोलूं, शब्द कम पड़ जाते हैं आपकी तारीफ के लिए। आप सब इतने प्यारे हैं। दिल से धन्यवाद आप सभी का। और यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत संदेश भी आ गए हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मैम आप। बाबू अंसारी जी का मैसेज हमारे पास आया है, साथ में रिशाद अंसारी जी हैं, शारिक अली जी हैं और ये कहते हैं चाय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है। ओहो, लगता है सर आप चाय लवर हैं और ये एक ट्रैक सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सुनवाएंगे, बहुत ही प्यारा से गाना है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हाय स्वीट गर्ल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से हमें मैसेज पहुंचाती हैं सना तुर्क एंड नाजिया तुर्क और ये कहती हैं मैम आज करीना कपूर जी का बर्थडे है। एग्जैक्टली राइट, आज बेबू का बर्थडे है तो उनके ऊपर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। और ये गाना सुनना चाहती हैं, बहुत ही प्यारा सा, वो तसव्वुर का आलम, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है।
तो चलो कुछ गाने सुनते हैं खूबसूरत, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप भी मैसेज कीजिएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। अब बिना किसी देरी के मैसेज पहुँचा दीजिएगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आप ये नहीं कहोगे कि खुशी जी आपने भी नंबर नहीं बताया है ना, मैंने बार बार आपको नंबर बताया है। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ, अब ध्यान से नोट कर लीजिएगा। मैं स्लोली बताती हूँ नंबर 9837896896। अब तो डायल कर लिया है ना आपने। चलो अब जल्दी से मैसेज पहुंचाओ और ये सुनो कुछ खूबसूरत गाने ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी आपके लिए लेकर आई हूँ ढेर सारी खुशियाँ। और खुशी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि आपको बहुत सारी खुशियाँ दें, आपका हर एक दिन खूबसूरती के साथ खुशियों के साथ कम्प्लीट हो। और हमारे पास यहाँ पर अमेजिंग मैसेज भी आए हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ एवरीवन, दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम की लिए खेल जगत से एक शानदार खबर सामने आई है। एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने अपनी जगह पक्की कर ली है। शेफाली वर्मा के शानदार शतक और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने फाइनल का टिकट हासिल किया है। अब 22 सितंबर को भारतीय टीम स्वर्ण पदक के लिए श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पूरे देश की निगाहें अब इस मुकाबले पर हैं। उम्मीद है हमारे भारत की बेटियां एक बार फिर अपने शानदार खेल से देश का नाम रोशन करेंगी। टीम इंडिया को फाइनल के लिए ढेरों शुभकामनाएं। और अब हम बढ़ते हैं अपने मैसेजों की और हमारे पास यहाँ पर जो खूबसूरत संदेश आए हैं मैं उनको शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज पहुँचाते हैं हमें दुर्गेश सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, आपको भी जय श्री राम। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हाय दी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज अपना निखत फातिमा जी हमें पहुंचाती है आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी का, और ये कहते हैं, आरजी जी आपको हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब सर। अगला मैसेज हमें मिला है यहाँ पर रामपुर से शमा जी का, ये गुड मॉर्निंग विश करती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग शमा आपको भी। मैं ठीक हूँ, आप बताएगा, लॉन्ग टाइम की बात, आज आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। अगला मैसेज हमें मिला है यहाँ पर रानी नांगल से रिहाना जी का, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप पहुँचाते हो और हमारे हालचाल जब पूछते हैं ना, रियली बता रही हूँ, हम ना स्वस्थ हो ना तो भी स्वस्थ हो जाते हैं। थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। चलिए सुनते हैं एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं। और यहाँ पर कुछ और ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं, उनको भी हम क्विकली शामिल करते हैं। और हाँ, अपने मुरादाबाद शहर में क्या चल रहा है वो अपडेट सब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बस आप सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस मंडे मॉर्निंग ना एनर्जेटिक रहिए, ठीक है। और अपना ख्याल भी अच्छे से रखिएगा। ब्रेकफास्ट कर लिया है आपने, वेरी गुड, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा।

0: 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
0: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, तारीफ जितनी की जाए, जितनी कोई तारीफ करता है या फिर किसी की तारीफ हम करते हैं, उतना ही कम लगता है सामने वाले इंसान को। लगता है यार और तारीफ होनी चाहिए, है ना। अभी आपने ये प्यारा सा अमेजिंग सा ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी वीरे दी वेडिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आपकी दोस्त खुशी आपके साथ है।

और दोस्तों आज बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान जी का बर्थडे है। आज करीना कपूर जी 46 ईयर की हो गई हैं, 46वां जन्मदिन मना रही हैं करीना कपूर जी। कपूर खानदान की इस लाडली बेटी ने ना सिर्फ विरासत को आगे बढ़ाया बल्कि सिनेमा में अपनी एक बेहद खास और मजबूत पहचान बनाई। करीना कपूर जी का फिल्मी सफर और उनकी लाइफ जर्नी कुछ इस प्रकार है। शुरुआती जीवन और दिलचस्प नाम का किस्सा। करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 को रणधीर कपूर और बबीता जी के घर में हुआ था। शुरुआत में उनके दादा राज कपूर जी ने उनका नाम सिद्धि माँ रखा था, हालांकि बाद में उनकी मां ने प्रसिद्ध कविता अन्ना करीना से प्रेरित होकर उनका नाम करीना रखा। डेब्यू की कहानी रिफ्यूज करीना कपूर फिल्म, करीना कपूर जी की फर्स्ट फिल्म रही है रिफ्यूज, और भी उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, आपसे सब बताएंगे। धीरे धीरे थोड़ा इंतजार करो, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है एवरीवन। अब आप क्या चाहते हैं कि खुशी एक बार में सब कुछ बता दे? ना ना ना ना, थोड़ा इंतजार तो कराएगी आपको। चलिए अभी मैसेज आपके शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम आरजे खुशी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर, आप बताइएगा कैसे हैं। ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं अनामूल जी फ्रॉम कश्मीर से, और कहते हैं आपका शो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल सर, और आपकी वॉइस बहुत ही अच्छी है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए, एंड सेम टू यू, आपको भी ढेर सारी खुशियां मिले और आप भी स्वस्थ रहें। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, मोहन स्वरूप जी का मैसेज आया है बिलासपुर रामपुर से, गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग सर, और आपने तो इतने सारे फ्लावर्स मुझे आज की सुबह भेज दिए, लगता है कि मैं किसी बगीचे में आ गई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, जिला रामपुर खीटांडा से मोहम्मद कामिल जी, ग्राम खीटांडा से मोहम्मद कामिल जी का मैसेज आया है आज की सुबह, साथ में लाइबा काजमी जी भी हैं, और इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी आज की सुबह। कहते हैं कि हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है, हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है, हर फूल की खुशबू एक जादू जगाती है, नामों मानो या ना मानो पर ये सच है कि खुशी जी सुबह होते ही आपकी याद आ जाती है। ओ रियली? अच्छा जी, थैंक यू। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है पिंटू जी का, और ये मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गौरव जी का सूर्यनगर से, और ये गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। चलिए एवरीवन कुछ सुनते हैं अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं हम। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। हाँ, मुझे मैसेज भी पहुंचाइएगा, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9883789689 6, और लौट कर अभी आते हैं हम तो बताएंगे हम आपको अपने मुरादाबाद सिटी में क्या चल रहा है। मुरादाबाद शहर की अपडेट बहुत जरूरी है, लोकल फॉर वोकल।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, चाय का नाम आते ही ना चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, चाहे सुबह की चाय हो या दोपहर में काम के बाद चाय, या फिर काम के बीच थोड़ा सा ब्रेक हो, दोस्तों के साथ गपशप हो। हमारे यहाँ चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक पूरा मूड है। तो आज आपकी दोस्ती, आपकी जो सबसे अच्छी दोस्त है ना, आपकी जो सबसे अच्छे दोस्त है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। आपकी वो सबसे अच्छी कौन सी दोस्त है जिनके साथ आप अक्सर चाय पीते हैं? बताइए बताइए। आपकी वो स्पेशल कौन सी दोस्त है जिनके साथ आप ज्यादा चाय पीते हैं? कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहीं घूमने का मौका मिलता है, कहीं जाने का मौका मिलता है, या फिर आप उनके घर जाते हैं, चलो दोस्तों के घर भी जाते हैं, तो फिर सबसे पहले बोलते हैं, हाँ भाई गर्मा गर्म ना एक कप जल्दी से कड़क चाय बना के ले आ। अच्छा दोस्तों, आप मुझे बताएं कि आपको चाय बनानी आती है? अब आप सोच रहे होंगे कि खुशी जी आप ये कैसे सवाल कर रहे हो, चाय तो सबको बनानी आती है ना। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आपको चाय बनानी आती है तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय, या फिर एकदम कड़क चाय? हाँ हाँ बताओ बताओ, क्या आपको चाय बनानी आती है? और अगर आती है तो आपकी स्पेशलिटी क्या है, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय, या फिर एकदम कड़क वाली चाय? बताएं आपको कौन सी चाय पसंद है, फटाफट से मैसेज कीजिएगा, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। हम चाय पीने नहीं आएंगे, आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि खुशी जी कभी हमसे पूछे हमें चाय बनानी आती है और हम बताएं तो खुशी जी कभी बोलें कि हमें भी चाय आपके हाथों की पीनी है, तो इस बात से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। बताएगा आपको चाय बनानी आती है क्या? हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं अजीत कसाना जी का, माया देवी जी और ऋतिक, साथ में आदित्य कसाना जी है, नदावली जिला मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये भी गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी दी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये हमें मैसेज पहुंचाते हैं रिहान अली मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह, साथ में रही जूरा अंसारी जी हैं, हाउ आर यू खुशी जी, आई एम गुड सर। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं आज की सुबह, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी गुड मॉर्निंग, खुशी जी दुआ है कि आज का दिन भी आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए और आपका पूरा वीकेंड सुकून, मुस्कान और अच्छे लम्हों से भरा रहे। आपका शो सुनकर सुबह और भी अच्छी लगने लगती है। और हाँ, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मुमकिन हो तो आज मेरी पसंद का वो सॉन्ग प्लीज जरूर प्ले कर दीजिएगा। डेफिनेटली सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मैसेज पहुंचाया है आज की सुबह। अगला मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर दरक्षा फातिमा जी का, हाय दी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, हम बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा दोस्तों, बताइए ना, मैंने आपसे पूछा है आज की सुबह कि आपको चाय बनानी आती है, और अगर बनानी आती है तो क्या स्पेशलिटी है आपकी टी की, आप कैसे उसको बनाते हैं? जल्दी जल्दी से बताओ, इतना देखो गूगल पर बिल्कुल सर्च नहीं करना है आपको, आप जैसे चाय बनाते हैं आप मुझे वैसे ही बता सकते हैं, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से अपने मैसेज पहुंचाएगा, मैं नंबर आपको बता देती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अभी कुछ शानदार गाने एंजॉय कीजिएगा।

0: लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: Was just the warm up.
3: Discover what's possible when it stops just being a tool.
4: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आज ही खुशी आपके साथ है और ये प्यारे प्यारे गाने आपने सुने ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद पर। अभी ये वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:48। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी मुरादाबाद के मौसम के बारे में एंड आज का वेदर कैसे रहने वाला है। दोस्तों मुरादाबाद में इस वक्त मौसम सुहानवी धूप वाला है, तापमान करीब 30 डिग्री के आसपास है, दिन में पारा 33 से 34 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने बादल, बारिश और गरज चमक की संभावना भी जताई है, तो मौसम का मिजाज पलट सकता है, सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और मैंने आपसे पूछा था एवरीवन कि आपको चाय बनानी आती है, आज नेशनल टी डे है और इसी उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि क्वेश्चन अपने श्रोताओं से मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग से जवाब भी आए हैं और उनको हम बिना किसी देरी के जल्दी से शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, जय श्री राम खुशी मैम, आपको भी जय श्री राम। धर्मेंद्र कश्यप जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। कहते हैं मैम मुझे चाय तो नहीं आता, मगर मुझे नींबू पानी बनाना अच्छी तरीके से आता है। अच्छा जी, ओके। और सुबह उठकर ही मैं नींबू पानी पीता हूँ और मेरा दिन बन जाता है और आपका प्रोग्राम सुनते हैं तो मौज आ जाती है। अरे वाह क्या बात है, श्योर सो मैं जरूर ट्राई करती हूँ। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी जी, पलवनीस जी मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह और कहते हैं हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा, आपका तहे दिल से शुक्रिया, मोस्ट वेलकम सर। अगला मैसेज हमारे पास आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी का और साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। आदाब खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर, आपका शो मॉर्निंग का सुनते हैं, अच्छा लगता है, बेहद पसंद आता है। थैंक यू सर ने गाने की रिक्वेस्ट भी भेजी है मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, अस्सलाम वालेकुम खुशी जी, वालेकुम सलाम फिरोज शफी जी का मैसेज हमारे पास आया है और इन्होंने एक शायरी भी लिखी है, कहते हैं ना जाने क्या मुझसे जमाना चाहता है, ना जाने क्या मुझसे जमाना चाहता है, हर पल कोई दिल दुखाना चाहता है, ना जाने क्या झलकता है मेरे चेहरे से, हर शख्स मुझे ही आजमाना चाहता है। क्या बात है, बहुत खूब। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, नहीं आती है आप बना के बनना, अच्छा आप बनाकर बता दी ना, चाय 2 कप ही बहुत है, ज्यादा बनेगी तो अच्छी नहीं बनेगी। मोहन स्वरूप जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं बिलासपुर रामपुर से। थैंक यू, आपने अपना मैसेज पहुंचाया है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशबू हमें मैसेज पहुंचाती है विकास नगर से आज की सुबह, गुड मॉर्निंग विश करती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। एंड एवरीवन देखिए आज बेबू का बर्थडे है, करीना कपूर जी का बर्थडे है आज, तो मैंने ना एक बहुत ही सुपर उपर हिट फिल्म है उसी का मैंने एक डायलॉग यहाँ पर चुना है, आप मुझे बताइएगा उस फिल्म का नाम, ठीक है, ये डायलॉग पहचानिए, बताइएगा कौन सी फिल्म का ये डायलॉग है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के।
1: ऑलरेडी बहुत कमेंट्स आ चुके हैं, पिछले साल भी इसी फंक्शन पे बहुत तमाशा किया था तुमने, कृषि परफॉर्म कर रहा है, वेरी नाइस, इसमें क्या बड़ी बात है, देयर इज नो नीड टू गेट सो हाई।
2: ए तू चुप कर, बड़ी अंग्रेज मती फिरती है।
3: आई थिंक पूजा
2: हां प्लीज, मेरा बेटा स्टेज पर है, एक सीटी तो बजाऊंगी।
3: नहीं नहीं नहीं, सीटी नहीं, नो।
4: And our opening act is by class 4 Do Re Mi from the Sound of Music, headed by Krish Raichand.
2: God, who
3: is? I don't know her.
2: Yes.
3: Listen, watch this.
2: Krish, कितना स्वीट लग रहा है ना मेरा बेटा, बिल्कुल तुम पे गया
1: है। स्वीटू
3: स्वीटू
2: भाई गुरु मेरी बेटी की रक्षा करना।
3: ए, तुम्हारा बेटा परफॉर्म कर रहा है, सरहद पे नहीं जा रहा है।
1: ले
3: ले व्हाट ले?
5: दिस वन्स फॉर यू मॉम।
2: मेरा बेटा, मेरा बेटा,
3: मेरा।
2: ओके दीदी वार्निंग, बिहेव योरसेल्फ। ऑलरेडी बहुत कंप्लेंट्स आ चुके हैं। पिछले साल भी इसी फंक्शन पे बहुत तमाशा किया था तुमने। कृषि परफॉर्म कर रहा है, वेरी नाइस। इसमें क्या बड़ी बात है? There's no need to get so high.
0: हां जी एवरीवन, आप मुझे बताइएगा ये जो डायलॉग मैंने है कौन से फिल्म का है? आपको इस फिल्म का नाम बताना है और अपने नाम के साथ, अपने सिटी के नाम के साथ, जहां से भी आप बात करो हमें सुन रहे हैं राइट हियर अभी राइट नाउ, चाहे आप विलेज में हो या फिर आप सिटी में हो, उस जगह का नाम और अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा सही जवाब के साथ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे कृषि और सुनते हैं अभी कुछ अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं, करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और बाकी सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाँ जी दोस्तों, बहुत ज्यादा आपने झूम लिया है, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा। ये अमेजिंग ट्रैक आपने सुना ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, मैंने आज की मॉर्निंग ना एक अमेजिंग सा आपसे मैंने एक डायलॉग प्ले किया था, आपसे मैंने पूछा था, मालूम किया था कि आप मुझे बताइए कौन सी फिल्म का डायलॉग है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर आया, एक बार मैं फिर से सुनवा देती हूँ आपको। और ये जो डायलॉग है बहुत पॉपुलर भी है।
1: बहुत तमाशा किया था तुमने, कृषि परफॉर्म कर रहा है, वेरी नाइस, इसमें क्या बड़ी बात है? There's no need to get so high.
2: ए, तू चुप कर, बड़ी अंग्रेज मती फिरती है।
3: हाँ? I think पूजा
2: हाँ, प्लीज मेरा बेटा स्टेज पर है, एक सीटी तो बजाऊंगी।
3: नहीं नहीं नहीं, सीटी नहीं, नो।
4: And our opening act is by class 4, Do Re Mi from the Sound of Music, headed by Krish Raichand.
0: हाँ जी, तो मैंने यही पूछा था कि ये बताए गए डायलॉग जो मैंने प्ले किया है कौन सी फिल्म का है, और ये फिल्म बहुत ही पॉपुलर है। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें सही जवाब पहुँचा है आज की सुबह। तो हम बिना किसी देरी के अपने आज के लकी सुपरस्टार को आज की सुबह उनको विनर बनाते हैं। और कौन बने हैं, उनका क्या नाम है, वो हम आपको ऑनियर बता देते हैं। अब इंतजार नहीं करवा दें क्योंकि टाइमिंग भी ऑलरेडी कंप्लीट होने वाली है। और आज की सुबह हमारे शो की लकी सुपरस्टार बनते हैं फ्रोज सफी जी। तो आपके लिए एक बार जोरदार तालियां।

0: सुल्तान जी, कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक है। आज आप बनते हैं हमारे शो के लकी सुपरस्टार, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। खुशी जी, हम 4 बजे पीतल नगरी के काम पर जाते हैं तो कारखाने में हम अपने हाथ से चाय बनाकर पीते हैं। क्या बात है सर, आपके लिए जोरदार तालियां। आप सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठकर काम पर जाते हैं, खुद अपने हाथों से चाय बनाकर पीते हैं। सल्यूट करते हैं हम आपको। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। गुड मॉर्निंग खुशी जी, क्या हाल है आपके? आपका शो सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे कहा था कि प्लीज आप अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। आप इतना प्यारा मैसेज तो भेजते हैं लेकिन अपना नाम भी यहाँ पर मेंशन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे दीजिएगा जाने की इजाजत, मैं आपसे मुलाकात करूंगी सी यू सून 3 से 5। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खुशी आपसे कहती है अपनों के साथ रहिए एंड जहां भी आप हैं इस वक्त राइट नाउ। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि मुस्कुराना बहुत जरूरी है, मुस्कुराया कीजिए, आप खुश रहा कीजिए, लाइफ में जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। इसी सोच के साथ और इन्हीं बातों के साथ अब मुझे दीजिए जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: आज हम कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास अतिथि डॉक्टर ए के सिंह। ये जंबल फर्टिलाइजर्स में वरिष्ठ प्रबंधक है। नमस्कार सर।
2: हाँ नमस्कार, और स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत आभार दिव्या जी, और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको नमस्कार।
1: सर हमारे साथ आज शामिल है कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम का जो खास विषय है वो भी हम आपको बताते हैं। आज हम कार्यक्रम में जो खास बातें करने जा रहे हैं वो है खरीफ का समापन व रबी का आरंभ। स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो हम दो तरह के क्रॉप प्लांटेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक रबी क्रॉप और एक खरीफ क्रॉप। बच्चों को पढ़ाते समय तो हमने भी कई बार रट्टा लगाया कि खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है, किन तरह के फसलों को हम लगाते हैं, और ये हमसे ज्यादा हमारे जो किसान भाई है वो बेहतर जानते होंगे। और आने वाले समय में ऐसे जितने भी हमारे सहयोगी हैं जो अब खेती किसानी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे या खेती किसानी बेहतर करना चाहेंगे, उनके लिए भी कुछ अहम जानकारी हो सकती है। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे कार्यक्रम के से पहले कुछ अहम जानकारी के साथ। सर से बातचीत जब हो रही थी तो फिर सर ने हमें PMKSK योजना के बारे में बताया था, जो केंद्र सरकार और उर्वरक मंत्रालय की ओर से ये पॉलिसी चलाई जा रही है किसान भाई और किसान बहनों के बेहतर खेती किसानी प्रक्रिया के लिए। तो हम जानना चाहेंगे इस योजना के द्वारा किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
2: जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है, और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आप ऐसे समझे PMKSK तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, DAP है, MOP है, NPK है, और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं, और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं, वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे। वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें हैं या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो PMKSK है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है, और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाएं। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे। अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हर एक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है, और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है। ये सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको

0: तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हो। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: इसी के साथ हम कार्यक्रम में अब शामिल करना चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक खास मैसेज को, जो उन्होंने उर्वरक उपयोग सलाह के बारे में कुछ बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की है। चलिए उसे सुनते हैं और फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे हमारी आज के विषय पर चर्चा के साथ।
0: असल में जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा, उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है, उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च न हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है, देखी देखा हमको, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया है तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीद के उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें
1: जी
0: क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल,
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा ले तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दू, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती किसानी, और आज के कार्यक्रम का खास विषय है खरीफ का समापन और रबी का आरंभ। तो सर, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों के स्कूल बुक्स के बारे में चर्चा की थी हमने, कि किस तरीके से बच्चों को पहले रट्टा लगाया जाता था क्रॉप रोटेशन, क्रॉप प्लांटेशन के बारे में, खरीफ रबी रबी फसलों के बारे में। तो ये खरीफ

0: असर के समापन से हम क्या कहना चाह रहे हैं, समापन
1: बिल्कुल
0: होता क्या है?
1: बिल्कुल, जैसे अभी जो सीजन चल रहा है हमारा वो
0: जी
1: खरीफ का चल रहा है।
0: जी
1: खरीफ मतलब ये है कि जो फसलें हमने जून जुलाई में लगाई थी
0: हाँ
1: वो हमारे पकाव की तरफ आ रही है धीरे धीरे, और वो सितंबर का आखिर हम मान लें या अक्टूबर में मान लें या ज्यादा से ज्यादा नवंबर के पहले सप्ताह तक उनकी कटाई होती है।
0: जी
1: कटाई का मतलब ये है कि जो उनकी उपज है वो तैयार हो जाती है,
0: हाँ
1: अनाज पक जाता है, फिर हम उसकी कटाई करते हैं और फिर उसको अपने घर लाते हैं, फिर आगे उसके विक्रय का प्रबंध करते हैं या जो उपयोग के लिए उसको हम रखते हैं। अब उससे तात्पर्य यह है कि हमने 4.5 महीने बहुत मेहनत करी,
0: जी
1: सब कुछ किया, लेकिन इस वक्त पर जब हमें उपज लेके आनी है उस समय अगर हमारी सावधानी नहीं रही, उसका समापन अगर हमने अच्छे से नहीं किया, तो जो हमारा अहम उद्देश्य था वो हमारा, उससे हम कहीं ना कहीं चूक जाएंगे।
0: जी
1: तो समापन का अर्थ से मेरा यही है कि हम सारी क्रियाओं को सोच समझकर और एक अच्छी प्लानिंग के साथ करें। प्लानिंग से अर्थ मेरा ये है कि हम ये देखें कि भाई इस समय पर हमारी फसल तैयार होगी तो इसको काटने के लिए मुझे क्या क्या संसाधन चाहिए। क्या
0: जी
1: क्या संसाधन से अर्थ ये है कि कटाई की व्यवस्था करनी है, लेबर चाहिए या कंबाइन से कराना है, जो भी कुछ है। फिर जब वो कटाई होगी तो वो आगे का अरेंजमेंट है, वो सारी चीज। तो मतलब ये है कि फिर उसके विक्रय से संबंधित है कि अगर उसको बेचना है तो कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है। तो ये सारी तैयारियां अगर हम एडवांस में करते हैं, जैसे कि हमें होता है ना कि हमारा बच्चे ने अब 8वीं कर ली, अब इसकी हाई स्कूल में एडमिशन होना है, इसका 9th में एडमिशन होना है, गांव में स्कूल हमारा 8वीं तक है, तो हम तैयारी करते हैं कौन से स्कूल में इसको भेजना है,
0: जी
1: कौन सा पास है, अगर दूर है तो वो यहाँ से रोज जाएगा, जाएगा तो कैसे जाएगा, या साइकिल लेनी पड़ेगी या यहाँ से थोड़ी दूर पैदल जाएगा, वहां से उसको कोई सवारी मिल जाएगी, बस मिल जाएगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं। अगर वो साइकिल से जाता है तो साइकिल हमारे पास है या खरीदनी है, या अगर वो किसी और साधन से जाता है तो उसका किराया लगेगा, उसका कितना खर्चा होगा महीने का,
0: जी
1: सुबह जाएगा शाम तक रहेगा, क्या वो खाना लेके जाएगा, सुबह उसके लिए भोजन बना दिया जाएगा, इतने बजे लौट के आएगा। तो ये सारी व्यवस्था है, उसी स्कूल की यूनिफॉर्म अलग है, उसकी व्यवस्था करनी है। तो ये सब तैयारियां हम एडवांस में सोच के रखते हैं,
0: जी
1: और अगर वो हमें चीजें चाहिए तो कहाँ कहाँ से मिलेंगी, क्या रेट होगा उसका, है ना। ये जो जो तैयारियां हैं वो हर जीवन के हर जो मतलब पहलू के साथ है। तो एक जो समापन की तैयारी, समापन में ये है कि भाई अब जैसे ये 8वां कर लिया है तो अब ये 8वां इसका होने वाला है, कितने नंबर इसको चाहिए, कैसा क्या चाहिए,
0: जी
1: आगे के लिए इसने क्या सोचा है, तो ये समापन की होगी। तो उसके बाद हम आगे आगे
0: सर, जिस तरीके से हम रबी क्रॉप्स और खरीफ ये जो फसल है, इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हमें एक तो जिस तरीके के हम फसल उगाते हैं उसमें हमें फर्क देखने को मिलता है। उसके हिसाब से आप जिन तैयारियों के बारे में बात कर रहे हैं उन तैयारियों में भी फर्क होगा, तो क्या उस हिसाब से हम मिट्टी को तैयार करते हैं या फिर फसल के
1: जी
0: हिसाब से बीज लेकर आते हैं या फिर मौसम का उसमें कोई असर देखने को मिलता है?
1: हाँ, जैसे कि अभी जैसे खरीफ, तो खरीफ का तो समापन है। समापन से अर्थ ये है कि हमें उपज अपने घर लानी, तो इसमें तो कोई आगे के लिए हमें व्यवस्था नहीं करनी है, लेकिन जो अब तक हमने व्यवस्था करी थी उसका जो मतलब परिणाम है वो हमें लाना है।
0: जी
1: अब उसमें मेन चीज क्या है कि जैसे हमें कटाई करनी है तो कटाई के साधन हमारे पास है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कटाई शुरू करी बीच तक हमारे साधन रहे उसके बाद फिर लेबर नहीं मिली या कंबाइन की व्यवस्था नहीं हो पाई, मतलब एक साथ हमारे काम होते चले जाए
0: जी
1: और एक बार में वो चीजें फ्लोलेसली जो मतलब जो निवट जाए। उसके लिए आपको लेबर को आगे से बोलना है, उसके लिए इक्विपमेंट आपको चाहिए, या
0: जी
1: कंबाइन को कहना है तो कंबाइन वाले को तय करने के लिए, क्योंकि उसके पास सभी लोग आ रहे होंगे तो उसको तय करने के लिए कुछ एडवांस देना है, कितना देना है, क्या रेट जो करना, आपने अपनी तरफ से बोली डेट, वो कुछ और डेट आपको चाहता है देना, वो समायोजन करना पड़ेगा। फिर आप कटाई करके उपज लेके आ रहे हैं तो एक तरीका ये होता है कि वहां से आपने काटा और सीधा मंडी ले गए, तो
0: जी
1: साधारण है, आपने काटा ट्रॉली में डाला मंडी ले गए, मंडी में आपने उसको बेच दिया। मंडी में बेचना है तो उस समय पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर मौसम सही है, खुला है, कोई दिक्कत नहीं, आप बेच के आ सकते हैं, एक दिन रुक भी सकते हैं, लेकिन अगर मौसम में उतार चढ़ाव है तो जो आप ट्रॉलियों से उससे लेके जा रहे हैं उसको तिरपाल से ढक के ले जाना
0: जी
1: है।
0: हाँ कवर करके लेके
1: हाँ,
0: जाना।
1: आप जब मंडी में लेके जा रहे तो वहां कौन सी दुकान से आपका कांटेक्ट है, आपको रेट का पता करना पड़ेगा
0: जी
1: कि भाई क्या क्या रेट चल रहे हैं, कैसे है, तो ये सारी तैयारियां। और फिर पूछते रहिए कि जैसे अभी कुछ फसलें होती हैं वो थोड़ी एडवांस में आ जाती हैं, उसका इस रेट में बिका, उसका इस रेट में किया, अभी रेट क्या चल रहे हैं, मंडी भाव क्या है, तो ये सारी चीजें समापन से पहले आपकी अगर तैयार हुई तो आप बेहतर ढंग से चीजों को संभाल पाएंगे और ज्यादा फायदा ले पाएंगे। दूसरा, अगर आप घर लेके आ रहे हैं तो वहां आपकी भंडारण की व्यवस्था है, क्योंकि जो इस समय अनाज लेकर आ रहे हैं उसमें नमी ज्यादा होती है, तो पहले तो उसको सुखाना है, सुखा के फिर भंडारण करना है। अगर नमी वाला ही आपने ज्यादा स्टोर कर दिया कहीं पे तो उसमें फफूंद लग सकती है, वो खराब हो सकता है अनाज, तो सुखाना फिर भंडारण करना। भंडारण की भी जो जो जो स्थान है वो साफ सुथरा हो, उसमें नमी नहीं हो, जिससे कि अगर हम कुछ लंबे समय के उसके लिए स्टोर भी करें तो वहां पे कीड़े न लगे, इंसेक्ट न लगे, जो कि आपकी उपज को खराब कर सके। तो ये सारी तैयारियां जो है ये समापन की तैयारियां। अब समापन में आपने सपोज आपने जो मतलब जो विक्रय कर रहे हो, विक्रय के बाद कितना आपके पास पैसा आने वाला है उसकी भी आपको अरेंजमेंट करनी है कि भाई ये मेरे पास इतना आया, इसमें से इतना मैं अगली फसल के लिए रख रहा हूँ, इतना मेरे और कुछ खर्चे हैं उसके लिए रख रहा हूँ, बाकी है मैं बैंक में रख सकता हूँ जिसका मुझे कुछ ब्याज मिल सकता है, कुछ आप और कुछ कर सकते हैं, FD कर सकते हैं, कुछ आपने हो सकता है कि कुछ उधार लिया हो उसका आपको आपको पेमेंट करना है। तो ये समापन से अर्थ ये है कि जो अब तक हमने प्रयास किए, मेहनत की, उसका जो परिणाम आने वाला है उसका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। दूसरा, जब आपकी फसल की कटाई होती है तो फसल अवशेषों का सही प्रबंधन आपको करना है, हल से आपको खेत को तैयार कर देना है, तो ये सारी चीजें समापन से रिलेटेड है।
0: खरीफ फसल के समापन के समय आपने इतने जो तैयारियां है इसके बारे में बताया, तो ऐसे कौन से फसल है खरीफ सीजन में जो हम लगाते हैं और समापन के समय हमें अलग से उनके लिए स्पेसिफिकली कोई तैयारी करनी होगी?
1: अब जैसे कि अगर खरीफ में हम देखें तो धान है, मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, उड़द है, मूंग है, ये सारी फसलें हमारे करीब करीब क्षेत्र में होती है। हर एक की अलग अलग तैयारी होती है, जैसे कि अगर आपको धान काटना है उसका अलग तरह का उसका तरीका, उसका अलग तरह का बाजार है। मूंग काटनी है, उड़द काटनी है, उसका एक अलग तरीका है, उसको काटना है, उसका थ्रेसिंग करनी है तो हाथ से करी जाती है या उससे या बैल से करी जाती है, या कुछ ऐसे थ्रेसर आते हैं जो उसको दाना टूटता नहीं है। तो सबका, अब जैसे मूंगफली है, मूंगफली की खुदाई करनी है आपको, तो खोदना है, फिर उसको काटना है और फिर उसको सुखाना है, उसका जो आपने कितनी मात्रा में लगाई है, बेचने के लिए लगाई है या खाने के लिए लगाई है, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ी लगाई है तो हो सकता है कोई कोई आसपास का ही थोड़ा थोड़ा करके ले जाए, तो वो आप व्यवस्था कर सकते हैं। मक्का है, मक्का का भुट्टा होता है, भुट्टा काट के आपको अलग करना है, उसकी एक अलग तरह से तैयारी, उसके जो फसल अवशेष है वो चारे के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते होते हैं, और उसको उनको इकट्ठा भी किया जाता है, ठंड में चारे के रूप में काम आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन जो खेती करते हैं वो समझते हैं इसका इसका कैसे प्रबंधन करना है। लेकिन यही है कि मुख्य चीज जो है कि उससे जो आपको लाभ या आमदनी होनी चाहिए थी वो पूरी हो, उसका पूरा से।
0: खरीफ फसलों के बारे में आपने बहुत सी बातें हमें बताई, ये चलते चलते किस तरीके से खरीफ क्रॉप्स और जो हमारे खरीफ फसल है और रबी फसल जो है उनमें किस तरह के मुख्य आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिर इनके तैयारी में भी आपको।
1: जी, खरीफ फसल है वो आमतौर पर जून से लेकर या जुलाई का महीना ले लें उससे लेकर सितंबर या अक्टूबर के आखिर तक तैयार। रबी की जो फसलें हैं उनकी जो तैयारी है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर और फिर जो नवंबर तक उसकी बिजाई बिजाई के सारे काम हो जाते हैं। तो खरीफ हम ये कह दें कि जब जो समय होता है उस समय पर हम खरीफ करते हैं, और जब धीरे धीरे ठंड की ओर हम जा रहे होते हैं तो उसको हम रबी। हमें शुरुआत में ठंड उठनी शुरू होती है, बीच में काफी होती है, फिर आखिर पकार की
0: रबी फसलों की शुरुआत करके आरंभ होता है, तो उसका महत्व क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसका?
1: हाँ, रबी फसलों जब आरंभ हम कर रहे हैं क्या महत्व है उसका या उसका क्या अर्थ है, रबी फसलों की तैयारी क्यों करें?
0: रबी
1: तैयारी नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो उसका कोई पता हो जाएगा, खाद है, सारी चीजें समायोजित नहीं होंगी तो प्रॉपरली आपका आउटपुट नहीं दे पाएगी।
0: ये देखते हैं कि किस तरीके से जब हम खरीफ फसल लगा रहे हैं तो उसमें जिस तरीके की मिट्टी का हम उपयोग कर रहे हैं उसमें, और उसी खेत में जब हम रबी की फसलें लगा रहे हैं तो
1: जी
0: उस मिट्टी में कुछ फर्क हमको देखने को मिलता है।
1: हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जो जो खरीफ फसल आई है और जो जो खरीफ फसल थी उसमें उसमें से जो पोषण ले लिया है। रबी की फसल अगर आप उसमें लगा रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अब हमें क्या पोषण देना चाहिए।
0: जी, खरीफ फसलों के आरंभ की जब हम बातें करते हैं तो हम और किन किन तैयारियां या किन तरह के कार्यों पर हम
1: हाँ, रबी की तैयारियों के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहली चीज आ जाती है बीज।
0: जी
1: बीज में दो साधन है हमारे पास, एक तो हमारा अपना बीज जो हम ये कहें कि हम अपना बीज से ही फसल उगाएंगे, तो अगर वो बीज है तो बीज आपने संभाल के रखा होगा ऐसा लगता है, उसे आप लें और उसे धूप में सुखाएं अगर नमी वगैरह है, और उसका बीज उपचार जरूर करें खुद लगाएं, उससे बहुत सारे जो होने वाले रोग है उनको आप रोक सकते
0: जी
1: हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर बीज लिए या उनके अलावा कोई नया आप बीज जो कि अधिक उपज दे सकता है या ज्यादा अच्छा आया है तो उनके बारे में बाजार से जानकारी आप प्राप्त करें। और ऐसा नहीं है कि किसी एक ने कहा कि आप ये डाल लो ये बढ़िया, नहीं, एक दो जगह से और चेक करें। आजकल तो प्रचार प्रसार है, मोबाइल फोन पे भी सुविधाएं होती हैं, बहुत सी कंपनियां भी अपना प्रचार करती
0: जी
1: हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, तो आप उनकी बात भी सुनिए। और अगर वह बीज एकदम नया आया है तो ज्यादा प्रयोग ना करें, और अगर पहले से वो चल रहा है और उसके अच्छे परिणाम मिले तो कोई ना कोई आसपास में आपके उस बीज का प्रयोग किया होगा पिछले साल में, उसके अनुभव से आप जो जान सकते हैं कि वो कैसा रहा, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, दुकान पर पूछ सकते हैं, आपको रेट भी देखने पड़ेंगे, तो सारी चीजों का तालमेल करके आप बीज को खरीदने की व्यवस्था आप करें, चाहे वो गेहूं का बीज हो, चाहे वो सरसों का बीज हो, या जौ हो, कोई भी चीज हो, कोई भी जो रबी की फसल आप लेने जा सकते हैं, चना है, चना भी एक अच्छी फसल है रबी की, उसके बारे में तो बीज सही लें, रोग रहित बीज लें वो करें। दूसरा, जो उर्वरकों की मांग है उसमें पूरी फसल के लिए उर्वरकों की मांग है उसके लिए प्रयास न करें, जो शुरुआत में हमें चाहिए
0: जी
1: वो उर्वरकों का प्रबंध के लिए आप जो प्रयास करें, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, PMKSK है, सब जगह उर्वरक मिलते हैं, तो उसमें आप देख लें कि जो फसल लगाने जा रहे हैं उसमें क्या पोषण की हमें आवश्यकता है, उस पोषण के हिसाब से आप उर्वरक चुनें। आप ऐसा ना सोचेंगे मैं पहले ये डालता था तो ये मैंने चुन लिया, ऐसा नहीं है।
0: तो सही उर्वरक के लिए हम किसी सलाहकार से मिल सकते हैं?
1: सलाहकार से भी ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलो कि आपको गेहूं में आपको 1 एकड़ में 20 किलो फॉस्फोरस डालना
0: जी
1: है नहीं, तो करीबन जो आपको जो मतलब पोटास इस्तेमाल इतना ही करना है 20 किलो, और नाइट्रोजन आपको 20 किलो डालनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो क्या है कि आप जैसे सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं और पोटास मिला सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है DAP ले सकते हैं और उसमें पोटास मिला सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि एक ही खाद में तीनों पोषक तत्व मिल जाएंगे,
0: अच्छा
1: जैसे कि उसमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, फॉस्फोरस भी मिल जाएगी और पोटास भी मिल जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तीनों मिल रहे हैं वो ज्यादा अच्छा चीज है, क्योंकि उसके हर दाने में जो मतलब पोषण तत्व की समान मात्रा है, अलग अलग अगर खाद से आप उर्वरक से जो अगर जो उसको देते हैं तो कोई उर्वरक कहीं पड़ा कोई कहीं पड़ा तो एक जगह उसको पूरा नहीं मिलता है पौधे को, लेकिन अगर ये जो है NPK है इनमें पूरा एक जगह मिल जाता है, तो ये अच्छा परिणाम है। आप इस तरह से चुनाव कर सकते हो। फिर तो जो फसल लगाने जा रहे हैं वहां सिंचाई की क्या व्यवस्था है वो आप देख सकते हो, क्योंकि रबी फसलों में बारिश कम होती है, सिंचाई पर आधारित होना है, अगर पानी कम है तो उस हिसाब से फसल का चुनाव करें, पानी अगर पर्याप्त है तो उस हिसाब से फसल का चुनाव करें, तो ये कुछ रबी की तैयारियां हैं ये आपको करनी है, और अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको आप अच्छे से कर पाएंगे, और आपको कोई ये नहीं रहेगा कि यार ये मेरे से ठीक नहीं हुआ, मैं ऐसा कर सकता था, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। दूसरा एक चीज और देखिए कि मार्केट रेट देखिए कि पिछले साल इन ये जो फसलें मैं लेने जा रहा हूँ इनका रेट क्या रहा, उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि कौन सी फसल कितनी मात्रा में लगानी है। एक जैसी जब आप एक ही फसल लगा दिया उसके रेट गिर गए या उसमें सारी में कोई परेशानी आ गई तो सारा खत्म, तो आप थोड़ा थोड़ा लगाइए, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं तो किसी में कम किसी में ज्यादा ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपका एक जो एवरेज आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो आपको मिल जाता है, तो इस तरह से फसलों का चुनाव करें। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखें कि फसल चक्र जरूर अपना है, खेतों में अदल बदल के आप जो जो प्रयास करें उससे खेत की जो ताकत है वो पुष्ट होती है, और फसलों में रोग बीमारियां कम आती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं जो है अपनी ओर से कुछ बात रख रहा हूँ कि भाई रबी की जो फसल आप लगाना जा रहे हैं उसमें ये जरूर आप ध्यान रखें, और ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक सार्थक उपज आपको मिलेगी, सार्थक खेती आपके यहाँ हो सकेगी। तो ये कुछ बातें थी।
0: खरीफ फसलों और रबी फसलों के समापन और आरंभ के से जुड़े आपने बहुत सी जानकारी दी सर। इसी के साथ में कार्यक्रम के समापन से पहले कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कई बार हम जितनी जानकारी विशेषज्ञों से लेते हैं या फिर सलाहकारों से लेते हैं, उसे इम्प्लीमेंटेशन तक का जो प्रोसीजर होता है उसके बीच में बहुत सी रुकावट आ जाती है, जिस कारण से हम जो सलाह हम लेते हैं, हमें जितनी जानकारी होती है उसे हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते और उसका हमें सही
1: लाभ नहीं
0: लाभ
1: मिलता
0: नहीं मिल पाता है।
1: जी।
0: तो अगर हम ऐसी तैयारी नहीं करते तो खेतों में और हमारी फसलों में किस तरीके का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है?
1: हाँ, अगर आप तैयारी नहीं करते तो आपके लिए ये है कि जैसे अगर आप बीज देने जा रहे हैं और कोई बीज चाहिए था वो आपको नहीं मिला,
0: जी
1: है ना, या कोई दूसरा बीज लेके आना पड़ा, तो जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। खरीफ फसल का जो समापन है उसमें आप चाह रहे थे कि मैं बेच के आऊँ मंडी में, लेकिन रेट अच्छे नहीं चले और आपने अगर स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं करी तो ना आप जो मंडी ले पाए ना सही ढंग से उसका भंडारण कर पाए, तो नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको आप अगर करते रहेंगे और इनमें थोड़े थोड़े प्रयोग करते रहेंगे तो आपको जो नुकसान होने की संभावनाएं हैं या आपको लगे कि भाई मेरे को ये ठीक नहीं हुआ, वो थोड़ी कम हो जाएंगी। और धीरे धीरे अगर आप इनको अपनाते रहेंगे तो आपके पास एक अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे अगर सपोज भंडारण है, भंडारण का अगर आपने यहाँ पे कुछ व्यवस्था इस साल की है तो वो हमेशा के लिए होगी, वो ऐसा तो है नहीं इस साल खत्म हो जाएगा। सपोज कोई ज्यादा वैसा नहीं है, आपका आंगन है वहां उसको ऊंचा कर सकते हैं, टीन शेड लगा के जिससे कि बारिश वारिश उसमें ना आए, वहां स्टोर कर सकते हैं, उसकी पुताई कर सकते हैं अच्छे से जगह की, जिससे कि चूने से पुताई करते हैं ना, तो उससे क्या है कि बहुत सारे कीड़े वो आपस में अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा करके हम अपने संसाधनों को जो ठीक कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।
0: इसी के साथ हम आज की कड़ी को यहीं समाप्त करना चाहेंगे सर। आपके साथ जुड़कर आपसे खेती किसानी से जुड़े हुए इतनी बातें करना बहुत ही ज्ञानवर्धक था, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं वो भी इससे बहुत से फायदे उठा पाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाई इसका लाभ लें ऐसी हम आशा करते हैं। और ये जो वार्ताएं हैं हम इसीलिए करते हैं कि कोई ना कोई सार्थक परिणाम इसके हमारी
0: जी
1: खेती बाड़ी में आए।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी। आपकी बात हो रही थी दिव्या और चंबल फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर AK सिंह सर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के
1: आपका भी
0: लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी।
0: दिव्या को इजाजत।

0: EMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी। आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर आवाज, सभी लोग ध्यान दीजिए। आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे भाई, ये HPV क्या होता है और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सेहतिया सिंह जी, जरा इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइएगा ये क्या चल रहा है?
4: आरजे साहिबा, आज बड़ा अच्छा दिन है गांव के लिए और भी हम

0: हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण कैंप नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में तो विस्तार से जानने के लिए आपको पहले कहानी बताता हूँ। यहाँ एक गांव था, गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरीके से निकला भी नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम भी अलग। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, जो हम कह सकते हैं गुड़िया, गांव में गुड़िया कहा जाता। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शरारती। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी बहुत कुछ बन जाए बड़े होकर, जिससे उसकी जिंदगी और बेहतर हो जाए। एक दिन गांव में आशा दीदी आईं और उन्होंने बताया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, फिर उन्होंने अपने पति रामपाल से बात। रामपाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटियां तो बिल्कुल ठीक है ना, तो क्या जरूरत पड़ी है इस टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, यह टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो सकता है। रामपाल कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी जो सुनी सुनाई। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना, जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी की जिंदगी को बीमारियों से बचा सकता है तो हम पीछे क्यों रहे। अगले ही दिन सावित्री और रामपाल अपनी बेटी गुड़िया लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई हुई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां तो बिल्कुल हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और भी लोग इससे प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामपाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीने बाद एक बदलाव साफ दिखने लगा, ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी। लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे, और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ आया ये हमारी बेटियों की भविष्य की बात है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की ही नहीं है, ये हर परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
1: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लगता है, जरा खुलकर विस्तार में बताइए।
0: चलिए आपको अच्छे से ही बता देता हूँ। HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते हुए रोका न जाए तो महिलाओं के अंदर आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय में मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
1: मतलब ये सीधे सीधे जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
0: हाँ जी बिल्कुल, और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है आर्य साहिबा?
1: जी सेहतिया जी, अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
0: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
1: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
1: अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका तो होगा ना?
0: यही अच्छी खबर है, जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
1: सच में? कैसे?
0: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर आपको बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
1: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी अच्छे से समझ सकें।
0: चलो आप कहते हो तो समझा देता हूँ। ठीक, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
1: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
0: बिल्कुल सही कहा, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
1: ओह, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
0: हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं, यही बीमारी को जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए, कोई खास उम्र होती है?
0: हाँ, इसकी सबसे ज्यादा फायदा तो तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र का हो?
0: तो भी कोई चिंता की बात तो नहीं है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितनी जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
1: सिहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
0: यही तो सबसे अहम बात है, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
1: जरा विस्तार से बताइएगा।
0: जरूर, देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति की फर्ज है कि वह अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधाओं और सहयोग दे।
1: सही कहा आपने।
0: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा, आधी लड़ाई वह हारेगी। इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
0: बिल्कुल सही आरजे साहिबा, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन सिहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
0: देखिए आरजे साहिबा, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आप सुन रही है ना, ये सच नहीं है, बल्कि क्या है, अफवाहें।
1: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
0: बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको एक एक करके, चलिए साफ साफ करके बता देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगवाने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई तो यह है कि टीका लगवाने के बाद बस हल्का सा बुखार आता है या हाथ में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, क्योंकि मात्र एक से दो दिन में आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
1: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है,
0: यह भी पूरी तरीके से गलत। इस वैक्सीन में मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ भी नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
0: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं, बल्कि बीमारी होने से पहले लगवाना है, और तभी ये काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं ना, वैसे ये पहले सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे साहिबा, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सिहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
0: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने तो लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हटे जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसी कुछ रानी जैसी केस हो जाते हैं। उसी इलाके के पास एक गांव था, छोटा पुरवा, यही रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की उम्र की ही थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में बहुत अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन, अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा देना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था, उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज वहीं दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा, मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई, और एक दिन उसे बार बार कमजोरी, असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबसे इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया, उसने पूरे परिवार को हिला दिया, यह सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब यह काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, अपनी आंखों में पछतावा सिर्फ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमे से पूछा, वो अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज ही दिन देखना ना पड़ता। इलाज शुरू हुआ, लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर काटना, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता, दर्द, रानी की बीमारियों से सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झिंझोड़ दिया था। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा कभी मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में सिर्फ एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: इन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपनी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे ही दूसरों तक पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई फैलाएं।
1: तो दोस्तों आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाओ, बेटी का टीका परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाए। तो चलिए जानने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचाया जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: हेलो, दिस साइड आर्जेरीना फ्रॉम मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आज भी आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूं मैं, यानी कि HPV टीकाकरण लगवाना, यानी कि टीका लगवाना हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये आगे चलकर हमें किन किन बीमारियों से बचा सकता है। इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हुए हैं। तो मैम से मैं जानना चाहूंगी, आप ही अपने बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, हेलो रीना जी मैम, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी हूँ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिला महिला अस्पताल मुरादाबाद।
0: तो मैम, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि HPV टीकाकरण है वो लगवाना क्यों जरूरी है।
1: HPV टीकाकरण बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और जो प्राइवेट पार्ट है जननांग में कुछ वार्ड्स भी होते हैं, कैंसर के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, इन सबसे बचाव करता है। और इसका जो एफिकेसी है वो 90% तक है। अगर ये सही उम्र में लगवा लिए गए, सही डोज में, सही उम्र में लगवा लिए गए, तो आगे चल के इससे बहुत बचाव हो सकता है। और इंडिया के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु बहुत ज्यादा होती है, इसका बर्डन हमारे देश में बहुत ज्यादा है।
0: तो मैम, इसकी कोई एज लिमिट होती है?
1: वैक्सीनेशन के लिए 9 साल से 14 साल की उम्र की लड़कियां और लड़के,
0: मतलब लड़कों भी?
1: बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये सर्विक्स का ही कैंसर नहीं कॉज करता है, ये प्राइवेट पार्ट्स में वार्ड्स, जेनिटल वार्ड्स और ओरोफेरिंजियल कैंसर्स हैं, जैसे मुंह का, गले का, बहुत तरीके के और भी कैंसर्स हैं जो कॉज करता है, और वो लड़कियों में भी हो सकते हैं और लड़कों में भी हो सकते हैं। ये सब चीजें बहुत आगे चल के एज में पता चलती हैं, लेकिन उसके होने की शुरुआत पहले से ही हो जाती है, इसलिए 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच में ये लगवा लिया जाए। जब तक बच्चे स्कूल गोइंग एज ग्रुप में है, स्कूल वाले में है, उनकी शादियां नहीं हुई है, अभी कोई किसी तरीके के फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हुए हैं, उसी उम्र में ये लगवा लिए जाए तो आगे चल के एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी से बचाव कर।
0: मैम, क्या 14 साल के बाद भी हम लगवा सकते हैं?
1: 14 साल के बाद भी लगवाए जा सकते हैं। जितनी उम्र बढ़ जाती है उतना उसका एफिकेसी थोड़ा सा कम हो जाता है, जब फिजिकल कॉन्टेक्ट हो जाते हैं उसके बाद एफिकेसी थोड़ी कम होने लगती है, इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना जल्दी से जल्दी लगवा लें उतना ज्यादा बेटर इसका रहेगा इफेक्ट।
0: तो मैम, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि HPV टीका सही एज में लगवाना क्यों जरूरी है और इसका असर जो बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है उसका असर क्या होगा?
1: देखिए, वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, 9 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाती है, इसकी डोजेज होती है, कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, अभी भी आप देखिए गवर्नमेंट भी लगा रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी इसका अवेलेबल है, 4 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन हैं, 9 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन है जो उनसे बचाव करते हैं, जो ये सब बीमारियां कॉज करते हैं, अगर कुछ 2 डोज में लगवाई जाती है।
0: अच्छा, 2 डोज,
1: हाँ। और अभी जो गवर्नमेंट लगा रही है वो 14 साल की सभी बच्चियों को लगा रही है, वो 1 डोज भी इफेक्टिव है, ये देखा गया है रिसर्च में, वो सिंगल डोज भी इफेक्टिव है, तो वैक्सीनेशन सेफ है। थोड़ा बहुत इंजेक्शन से जो किसी को दर्द हो गया ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली वैक्सीनेशन से बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आप ये देखें कि आगे चल के कितनी बड़ी जानलेवा बीमारी से बच रहे हैं, अगर सही उम्र में लगवा लिया गया तो 90% चांस खत्म हो जाएगा वो बीमारी होने का।
0: मैम, बहुत से घरों में भ्रांतियां भी है कि हम ये टीका नहीं लगवाएंगे, कभी लगवाने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो जाएगा, तो मैम कुछ ऐसा भी है क्या?
1: भ्रांतियां होती हैं लोगों को, जब भी कोई नई चीज लगती है लोग घबराते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोविड आया था, उसके लिए भी बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया कि हमारे शरीर में कुछ असर ना हो जाए। तो देखिए, देश इतना आगे बढ़ गया है और विज्ञान जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो इतनी आगे बढ़ गई है, जितने भी वैक्सीन एडमिनिस्टर किए जाते हैं ये सब के ट्रायल्स होते हैं, बहुत फेजेस में ये वैक्सीन चेक की जाती है कि इनसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, फिर बहुत सारे 4-5 स्टेजेस, फेज 1-2 बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स होते हैं, वो जब सब फेजेस को वो वैक्सीन क्रॉस कर जाती है कि इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, तभी वो मार्केट में अवेलेबल होती है। और गवर्नमेंट, आप सोचिए, गवर्नमेंट अगर कोई चीज लगा रही है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना जांच पड़ताल के कोई चीज किसी को भी लगा दी जा रही है।
0: जी, बिल्कुल।
1: वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, इससे बिल्कुल मत डरिए। हाँ, कभी कभी कुछ ग्रुप्स में ये सोच होती है, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है, अभी नई चीजें उन लोगों को पता जानकारी का माध्यम नहीं है, तो अपने करीबी आप गवर्नमेंट सेटअप्स में प्राइवेट सेटअप्स में जहां भी जाना चाहें अपने करीबी डॉक्टर्स से मिलिए, उनसे बात करिए, पूछिए, ये बिल्कुल सेफ है और आपके बच्चों को आगे आने वाले बहुत बड़े काल से ये बचाएंगे। शरीर में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, किसी कोई सोचे कि हमारे कहीं ऐसा ना हो कि सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का जहाँ नाम आ जाता है लोग वैसे भी घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के इनके बच्चे ना हो सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है और आप ये समझे कि आप लोगों को बचाने के लिए लगाया जा रहा है।
0: मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या सिर्फ एक छोटा सा टीका आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से हमें बचा सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें स्ट्रेन्स हैं, सिर्फ कैंसर नहीं बाकी भी जितने सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, सर्वाइकल कई लोग असल में इससे भी, सर्वाइकल गले की हड्डी को भी कहते हैं ना, तो कई लोग उससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सर्विक्स जो है वो बच्चेदानी के मुंह को भी कहा जाता है।
0: ओके,
1: तो ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है।
0: ओके, मुझे भी आज पता चला है।
1: अच्छा, तो ये बच्चे ये वो गर्दन की हड्डी जो सर्वाइकल लोगों को गर्दन में दर्द हो जाता है ये वो नहीं है, ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। और बाकी ओरोफेरिंजियल कैंसर होते हैं जो मुंह में, तो क्योंकि एक ही कैंसर में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे लोगों को आगे चल के बहुत परेशानी होती है, इसलिए लगवाना चाहिए।
0: मैम गांव में यानी कि HPV टीके को लेकर अलग अलग भ्रांतियां होती है, जो जैसे कि मैंने आप सभी से पहले ही पूछा आपसे कि माता पिता चाहते कि ये टीके ना लगवाएं, कभी ऐसा ना हो कि आगे चल कर कोई प्रॉब्लम हो जाए।
1: इसके लिए जो ANM दीदी लोग हैं, आशा लोग हैं, बहुत सारे लोग वहाँ जाते भी हैं, उन लोगों से अगर किसी को भी कोई डाउट है तो जाए, उन लोगों से पूछे जब वो लोग घर में आते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन ले। अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है, आपके बच्चों को कोई बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगवाएंगे तो होगा ही होगा, लेकिन इसको प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब ये हो जाता है तब ये जिस स्टेज में पता चलता है, अगर ये हो गया किसी को तो ये जिस स्टेज में पता चलता है उस स्टेज में कैंसर बहुत आगे बढ़ चुका होता है। उस स्टेज में जब हमको पता चला तो कई बार तो सर्जरी संभव होती है, लेकिन उसके बाद भी रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, दवाइयां लगवाई जाती है, लेकिन कई बार ये इतनी आगे स्टेज में पहुंच चुका होता है, इसके सिम्टम्स बहुत देर से आते हैं।
0: ओके,
1: तो जब तक इंसान को पता चलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तब तक ये उसके शरीर में पूरा फैल चुका होता है। एक बार खून में आ गया या एक बार इसने आसपास के अंगों को उसमें ले लिया, जैसे हमारी आंतें हैं और यूरिनरी ब्लैडर है, आप बहुत सारी चीजें को, जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है वो अपने आसपास के सारे टिश्यूज को ले लेता है। एक स्टेज में कैंसर ऐसे भी स्टेज में आ सकता है कि जब आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आप सर्जरी करके उसको निकाल नहीं सकते, सिर्फ आपको पता है कि ये मरीज जो है अब ये जाने वाला है, सिर्फ आप उसका दर्द कम

0: करने के लिए उसको दवाई दे सकते हैं,
1: हाँ,
0: लेकिन आप उसके जीवन को रोक नहीं पाएंगे। तो जब तक आपको ये, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो हम क्यों लगवाएं,
1: कभी कभी ये भी लगता है उनको कि अभी तो यार बीमारी छोटा ही तो है, बाद में देखने,
0: हाँ, लेकिन जब बाद में देख लेंगे वाली चीज है, उस स्टेज पे बहुत ज्यादा ये कैंसर बढ़ चुके होते हैं, तब पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। और उसमें दर्द भी होता है जब ये बहुत बढ़ जाता है, बहुत तरीके के शरीर में चेंजेस आते हैं और परिवार का वो सदस्य फिर जीवित ही नहीं रह पाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप अभी इसकी जानकारी लें और सही समय पे टीकाकरण करवाएं, जिससे आपके बच्चे आगे के लिए सुरक्षित रहे।
1: मैम एक छोटा सा मैसेज जो देना चाहे,
0: छोटा मैसेज, ये स्कूल्स में भी लगवाई गई है, स्कूल्स में भी मुझे पता चलता है कई बार कि माँ बाप जो है वो बच्चों को डर के मारे नहीं भेज रहे हैं। गवर्नमेंट ने बीच में इनिशिएटिव लिया था स्कूल्स में भी लगाने का, तो कई माँ बाप डर के कारण बच्चों को नहीं भेज रहे थे, लेकिन आप लोग जाइए, सब जगह लगवाइए, गवर्नमेंट सेटअप्स में जाइए, 14 साल की बच्चियों को लग रहा है, सिंगल डोज में भी लग रहा है और भी इसके डोजेज हैं, आप लोग लगवाइए, पता करिए इस चीज के बारे में। बिना पता हुए अधूरी नॉलेज से अपने बच्चों का फ्यूचर खतरे में ना डालें, क्योंकि अभी बच्चे इस स्टेज में नहीं है, 9 से 14 साल के बच्चे बहुत ही कम उम्र के बच्चे ही हैं, उनको तो अभी दुनिया का पता नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती है नहीं पता है, लेकिन आप लोग को पता है, तो आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आने वाले इस खतरे से बचाएं, उनको बताएं, आपस में आप लोग डिस्कस करिए, कंफ्यूजन है तो लोगों से बात करिए, डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन सही तरीके से लीजिए, ये नहीं कि आपने जिससे पूछा है उसको भी नहीं पता है
1: जी।
0: अपने करीबी डॉक्टर्स के पास जाइए, आशा है, आंगनवाड़ी है, ENM है, वो लोग आपको सही सेंटर्स पे लेके जाएंगे, वहां से सही इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जो इग्नोरेंस है, लापरवाही है, वो आगे चल के आपके बच्चे की जान को बहुत खतरे में डाल सकती है। तो आपके पास मौका है कि आप उस चीज से अपने बच्चों को बचाएं, सरकार भी इस चीज में पूरा ध्यान दे रही है, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि उस देश के नागरिक सुरक्षित रहें।
1: जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बोला सिंगल डोज, ठीक है, तो डबल डोज अगर लगवाते हैं तो गैप कितना होना चाहिए?
0: डबल डोज के भी अलग वैक्सीन का अलग टाइमिंग है, वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अलग स्ट्रेन की है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे।
1: तो चलिए श्रोताओं,
0: अभी जो सरकार दे रही है वो सिंगल डोज में भी बहुत इफेक्टिव मानी गई है, इसीलिए वो सिंगल डोज में भी लाए गए, क्योंकि कई बार लोग सेकेंड डोज के लिए नहीं आ सकते हैं, तो आप लगवाइए इसको।
1: अच्छा लगा,
0: थैंक यू रीना जी।
1: और मैम की आवाज भैया जितनी अच्छी है ना, वो इतनी बहुत प्यारी
0: आवाज आपकी भी बहुत अच्छी है, और आपका रेडियो हम लोग सब सुनते हैं, और आपकी आवाज जब लोगों के पास, श्रोताओं के पास पहुंचेगी, तो मुझे लगता है अगर उनमें हम लोगों के कुछ बताने से या आप लोगों के कुछ इनिशिएटिव लेने से हमारे देश के लोगों में कुछ पॉजिटिव चीज आए, लोग अपना सेहत इंप्रूव कर पाए, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस आप लोगों के आगे के एंडेवर्स के लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो भाई गलत धारणाएं थी उनको आज क्लियर हो गई होंगी कि भैया HPV टीकाकरण है ना, वो लगवाना बहुत जरूरी है।
0: बाय मैम।
1: बाय बाय।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: Joker.
1: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
2: हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ आनंद। तुम बताओ, तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
1: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
2: हाँ, यही कहने वाली थी। हाँ,
1: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
2: बिल्कुल सही।
1: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
2: और स्टूडियो में ना तभी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
1: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें।

0: और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गाँव में फिर से वो गाँव हरा भरा लगने लगा, नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गाँव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल ताजे सब्जियां दालें सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी
0: जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगा।
1: हाँ, बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए।
0: अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था।
0: बिल्कुल,
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं।
0: Correct.
1: जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz से। तो श्रोताओं, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है,
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती थी वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कम हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे की ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपनी प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट, तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कंट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो

0: हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे, और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों, अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाए, हम चार बार नहाए। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए हैं, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: और ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ, ये
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते हैं तो, लेकिन हम धोने लग जाते, ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे, और वही कहते हैं ना जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी? अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे, क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना? और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल, है ना? ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना? इस चक्कर में ही पानी वेस्ट
1: होता है,
0: वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें, और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें, या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको
1: ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें, अभी हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सके। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

वेलकम बैक। एक बार फिर से यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी, साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी। कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है। पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला, लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम करें और पर्यावरण को साफ रखें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है। तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास

0: की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें, स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है। बाकी पोल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही हो रही है।
0: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों, आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए,
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास। अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ, फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोबिक किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7066002430।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और चल रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेती किसानी पर चर्चा और मैं हूं आपके साथ आपका आशीष। दोस्तों, धरती माँ की गोद में पसीना बहाकर जो अन्न उगाता है वही हमारे देश का असली हीरो है, हमारा किसान। हम बात करेंगे खेती से जुड़ी नई तकनीकों की, मौसम की, फसलों की देखभाल की, सरकारी योजनाओं की और उन छोटी छोटी बातों की जो खेती को आसान और फायदेमंद बना सकती है। दोस्तों, समय बदल रहा है और खेती का तरीका भी। पहले जहां सिर्फ परंपरागत खेती और फायदेमंद बना सकती है दोस्तों समय बदल रहा है और खेती का तरीका भी पहले जहां सिर्फ परंपरागत खेती होती थी तो वहीं अब किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती और मिट्टी परीक्षण जैसी चीजें किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। अगर किसान भाई समय समय पर मिट्टी की जांच करवाएं तो उन्हें ये पता चलता है कि खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। इससे खाद का सही इस्तेमाल होता है और खर्च भी कम आता है। और जैविक खेती, आज बाजार में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, यानी अच्छी सेहत के साथ अच्छी कमाई भी। जहां तक बात खेती में बीज और बुआई की है तो मुनाफे की फसल खुद उग जाएगी अगर आपका बीज सही तरीके से बोया गया है। कई बार जानकारी ना होने की वजह से किसान भाई उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते जो खासकर उनके लिए बनाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना है। अगर आपने अभी तक इन योजनाओं की जानकारी नहीं ली है तो अपने नजदीकी कृषि विभाग या जन सेवा केंद्र पर जरूर संपर्क करें। दोस्तों, जानकारी ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो श्रोताओं, बात खेती किसानी की हो रही है, हम आपको तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, तो क्यों ना वो भी बात सुन ली जाए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने देश के अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया था कि कैसे इस देश का अन्नदाता इन योजनाओं से आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं।
1: अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। 4,00,000 करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए दो योजनाएं, नई योजनाएं शुरू की है, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर।

0: स्वच्छता मिशन, इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये केसीसी की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले इन सबको खूब लाभ उठा रहा। केसीसी से इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की, आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं। हमारी सरकार ने खाद्य तेलों, पाम ऑयल से जुड़ा मिशन भी शुरू किया है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहाँ के किसानों की आय भी बढ़ाएगा।
1: तो सुना आपने देश के प्रधानमंत्री का क्या कहना है? श्रोताओं, खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है, ये हम सभी जानते हैं। कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा, लेकिन सही तैयारी से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बीज हमेशा प्रमाणित खरीदें। फसल में रोग दिखाई दे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें, और पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आजकल मौसम की जानकारी मोबाइल पर भी आसानी से मिल जाती है। और तो और, तकनीक का फायदा उठाइए और खेती को मजबूत बनाइए। दोस्तों, एक किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो पूरे देश की उम्मीद जगाता है, वो पूरे देश की उम्मीद उगाता है। इसीलिए कहता हूँ, अब समय है हमारे श्रोताओं की बात सुनने का। अब देखिए, बहुत सारे लोग हमें अलग अलग जगहों से प्रश्न करते हैं। रामपुर से स्वरूप जी कहते हैं, पानी की कमी की वजह से उसे प्रश्न करते हैं। रामपुर से स्वरूप जी कहते हैं, पानी की कमी की वजह से खेती मुश्किल हो रही है। जबकि हापुड़ से गीता देवी कहती हैं, महिलाएं भी अब खेती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ तक कि मुरादाबाद से किशन कहते हैं कि खेती तो बहुत अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों, खेती सिर्फ मेहनत नहीं, परिवार और समाज की ताकत भी है। आप हमें बता सकते हैं क्या आपके गांव में खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? किसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, फिर भी हर सुबह नई उम्मीद के साथ खेत में उतरता है, और यही हौसला भारत की असली ताकत है, क्योंकि अन्नदाता है। याद रखिए, मेहनत बेकार नहीं जाती दोस्तों। धरती माँ हर पसीने की कीमत जरूर चुकाती है। जब खेत हरे भरे होते हैं, तभी तो देश खुशहाल होता है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपके साथ आपका आरजे आशीष, और आप सुन रहे हैं खेती किसानी पर चर्चा। अपने खेतों से प्यार कीजिए, नई जानकारी अपनाइए और मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान। मिट्टी की खुशबू मेहनत की निशानी, देश की शान है अपनी किसानी। और इसी तरह की खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां पाने के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। और जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको अपने देश की खेती किसानी की परिपाटी और हरे भरे खेतों से जुड़े हुए इस गीत के साथ। नमस्कार।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिकाल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एफटीए 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
3: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
4: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
3: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
4: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
5: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों तेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्धनगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के

0: आज साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमा सानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस कीलापट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। भटिंडा के तलवंडी साबू में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
3: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है। हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ। प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
1: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
4: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
5: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
4: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
6: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
4: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही रामनगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक, पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं की 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07052।
2: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
3: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
2: UPI-TSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और मेरे साथ है आरजे खुशी। आप सभी को पता है कि देखिए हम जब भी आते हैं ना तो अकेले तो आते नहीं है, दोनों आ जाते हैं गपशप करने के लिए आप सभी के बीच। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम सुनते ही हमारी जो प्यारी महिलाएं हैं ना और गर्ल्स भी इनफैक्ट उनके अंदर ना पता नहीं कौन सी पावर आ जाती है, कौन सा सुपर मैन आ जाता है उसके अंदर कि एकदम भैया वो घर का पूरे मैनेजर बन जाती हैं और घंटों का काम कैसे आधे घंटे में वो मैनेज कर लेती है कुछ भी नहीं पता चलता है। मतलब एकदम वो सुपर से भी डुपर हो जाती है। जलीली ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, लेकिन किसका नाम लेने से पता चलता है कि वो जलीली घर का काम करने लग जाती है। इनफैक्ट पता चले कि उनके घर के कोई और आने वाले फिर तो और भी डबल वाली, मतलब उनके अंदर और भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी आ जाता है। मैं बात कर रही हूँ घर पर, मान लिया आप बैठे हैं और एकदम आपको कॉल आता है कि आज घर पर मेहमान आने वाले, फिर तो भैया जो काम चुटकियों में होता है ना वो खुद भी नहीं समझ पाते। घर पर इनफैक्ट सब्जी भी नहीं होती है, सामान भी नहीं होते ना, वो भी चुटकियों के अंदर हम दुकान से मंगवा लेते हैं और हर चीज मतलब किसी भी चीज की कमी ना रहे एकदम पूरा करने लग जाते हैं। तो खुशी तुम क्या कहना चाहोगी?
5: हाँ मैं कहना चाहती हूँ, देखो आपने इतनी खूबसूरत बात छेड़ी है ना आज, तो आज बात उस फोन कॉल की है जो सुनते ही ना घर का पूरा माहौल बदल देती है। हेलो, हम बस आधे घंटे में पहुँचने वाले हैं, और बस इतना सुना होता है और घर की महिलाओं का दिमाग तेजी से काम करना शुरू कर देता है। कौन सा कमरा साफ करना है, सोफे पर कपड़े क्यों पड़े हैं, टेबल पर इतनी सारी चीजें क्यों रखी हैं, और सबसे बड़ा सवाल चाय के साथ क्या बनेगा। अभी तक जो महिला आराम से बैठी थी वो अचानक पूरे घर की मैनेजर बन जाती हैं। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में कपड़े और दिमाग में मेहमानों का पूरा मेन्यू। आपके घर में भी मेहमान आने की खबर मिलते ही ऐसा ही माहौल बनता है क्या? हाँ बताओ बताओ। ओहो, हमारी जो महिलाएं हमें सुन रही है ना मुमिनिया, वो बड़ा स्माइल कर रही है कि हाँ हमारे साथ तो ऐसा होता है। और सबसे पहले कौन सा कमरा साफ करना है, मेहमान आने वाले हो तो घर की महिलाएं सबसे पहले कौन सा कमरा ठीक करती हैं? जाहिर है वही कमरा जहाँ मेहमान बैठने वाले हैं। बाकी कमरों का क्या, उनके दरवाजे बंद? क्योंकि मेहमानों को साफ सफाई का वही हिस्सा दिखना चाहिए जो उनकी नजरों के सामने है। कुशन सीधा, चादर ठीक, सेंटर टेबल खाली और टीवी के आसपास की सारी चीजें अपनी जगह। कई बार तो ऐसा लगता है कि घर की साफ सफाई नहीं हो रही, बस मेहमानों के लिए एक टेम्परेरी एग्जिबिशन तैयार हो रही है। आपके घर में मेहमान आने पर सबसे पहले कौन सी चीज चमकाई जाती है, बताओ रीना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
4: भाई देखिए हमारे घर में सबसे ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट सफाई तो रहती है, लेकिन बैठक को बहुत अच्छे से चकमका दिया जाता है।
5: ओहो, आपका जो गेस्ट रूम है वो चमचमाने लगता है।
4: और भी ज्यादा मेहमानों के आने की खबर मिलते ही दूसरा बड़ा सवाल होता है चाय के साथ क्या खिलाए। बिस्किट तो हो, नमकीन है, लेकिन मन कहता है कुछ अच्छा होना चाहिए। फिर किचन में काम शुरू हो जाता है, आलू कितने हैं, बेसन है या नहीं, ये सवाल पूछते हैं, ब्रेड बची है, और अगर समय कम हो तो दिमाग में झटपट बनने वाली चीज की पूरी लिस्ट घूमने लगती है। मजेदार बात ये है कि मेहमान कहेंगे अरे कुछ बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन घर की महिला फिर भी कहेगी ऐसे कैसे कुछ खाइए, आपके घर में मेहमान आए तो चाय के साथ सबसे पहले आप क्या बनाते हैं?
5: ये आप हमारी ऑडियंस से पूछना चाहती हैं?
4: हाँ, वही बता सकते हैं।
5: अच्छा, तो उसके लिए आप नंबर भी बताइए ना,
4: 9837896896 पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं।
5: और दोस्तों, जब घर में गेस्ट आते हैं ना, तो बच्चों का कमरा और अचानक सफाई, मेहमान आने वाले हों और घर में बच्चे हों, तो एक और मिशन शुरू होता है, बच्चों का कमरा साफ करना। बच्चे बोलेंगे, अभी तो ठीक है, माँ की नजर जाएगी तो खिलौने, किताबें, कपड़े और जूते हर जगह दिखाई देंगे। फिर शुरू होता है, ये यहाँ किसने रखा, और बच्चों का क्लासी जवाब, पता नहीं किसने रखा है। आखिर में माँ खुद ही सामान समेटने लगती है। लेकिन असली सवाल ये है कि बच्चे रोज थोड़ी थोड़ी सामान अपनी जगह पर रखें तो मेहमान आने पर इतनी परेशानी क्यों होगी? आपके घर में भी मेहमानों से पहले बच्चों की सफाई की क्लास लगती है क्या? वैसे मुझे ऐसा लगता है रीना, पता है आपको, जब हमारे घर में गेस्ट आते थे ना और हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तो मम्मा कहती थी घर पे मेहमान आ रहे हैं, शरारते बिल्कुल नहीं करनी है और चुपचाप एकदम अच्छे बच्चों की तरह शांत बैठ जाना है, ठीक है, बातें नहीं करनी है और एकदम शांत बैठना है। जैसे हम घर में क्या करते हैं, बहुत हलचल मचाते हैं, बहुत ज्यादा खेलते थे, तो जैसे मेहमान आते थे हम खुद शर्माने लगते थे और शर्म के मारे हम तो रूम में चले जाते थे, बाहर निकलते ही नहीं थे।
4: मैं सच में नहीं निकलती हूँ, अभी भी मेरी आदत है।
5: और फतेह रीना, लेकिन हाँ, जब मेहमानों को जाने के टाइम होता था तो सबसे पहले हम बाहर निकल कर आते थे, स्पेशली मैं, क्योंकि जब मेहमान जाते हैं तो पैसे देते हैं ना, स्पेशली लड़कियां, तो लड़कियों को पैसे मिलते हैं, तो मैं ना जब मेहमान जाया करते थे घर से बाहर, मतलब जाया करते थे, तब मैं बाहर आती थी और मेहमान कहते थे गुड़िया इधर आओ, फिर मैं जाती थी तो वो मेरे को पैसे दिया करते थे, तो मैं ना शर्माती नहीं थी, मैं ले लेती थी। मम्मी कहती थी थोड़ा तो शर्माया करो बच्चा,
4: पैसों के मामले में शर्माना क्यों, कुरकुरे खाने के काम जो आते हैं,
5: काम जो आते हैं, राइट।
4: और बात, अचानक आई सफाई की याद, घर की, कई घर में रोज की सफाई अपनी जगह चलती रहती है, लेकिन मेहमान आने की खबर मिलते ही सफाई का लेवल अचानक बढ़ जाता है। पंखे के ऊपर धूल है या नहीं, पर्दे ठीक है या नहीं, टेबल पर निशान तो नहीं, बाथरूम में सब कुछ साफ है या नहीं, एक एक चीज चेक होने लगती है। जो कोना पीछे कई दिनों से नजर नहीं आया, वही आज सबसे जरूरी लगने लगता है। और फिर घर की महिलाएं खुद से कहती है, मेहमान रोज तो नहीं आते, आज बस परफेक्ट होना चाहिए।
5: अब रीना, आपने मेहमानों की बातें भी की हैं और साफ सफाई की बात कर रहे थे आप, तो बिल्कुल जैसे ही मेहमान आते हैं तो घर में सबसे पहले ना साफ सफाई का ही ख्याल आता है जहन में। अब बात कर रहे थे कपड़े कहाँ से आ गए, भाई मेहमान आने वाले हों तो घर में एक ऐसी चीज जरूर मिलती है जो अचानक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, बिखरे हुए कपड़े, कुर्सी पर कपड़े, बिस्तर पर कपड़े, सोफे पर कपड़े, और कभी कभी तो कपड़े सूखने की जगह भी भर जाती है। एक एक करके सब उठाकर सही जगह रखने का काम शुरू, और इस दौरान घर की महिलाएं सोचती हैं, ये कपड़े यहाँ किसने छोड़े, जवाब किसी के पास नहीं होता। लेकिन मेहमानों के आने से पहले सब कुछ व्यवस्थित करना जरूरी हो जाता है, क्यों रीना?
4: और घर की खुशबू भी जरूरी है।
5: ओहो, खुशबू, हाँ,
4: मेहमान आने से पहले ही सिर्फ घर साफ सफाई ही काफी नहीं लगता, घर की खुशबू भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई रूम फ्रेशनर लगाता है, कोई अगरबत्ती, कोई किचन में अदरक वाली चाय बना रहा है, क्योंकि घर में प्रवेश करते ही एक अच्छी खुशबू पूरे माहौल को बदल देती है। लेकिन ज्यादा परफ्यूम भी नहीं, वरना मेहमान सोचेंगे कि घर की सफाई हुई है या परफ्यूम की दुकान खुल गई है। ये सोचते हैं, दिमाग में आता है। और किसी किसी को हार्ड परफ्यूम वाली जो फ्रेग्रेंस होती है वो शूट भी नहीं होती है, तो ये भी ध्यान रखना होता है। असल में साफ घर के साथ हल्की सी फ्रेश खुशबू घर को और भी वेलकमिंग बना देती है, और साथ ही साथ एक और टेंशन हो जाती है, मेहमानों के लिए खास बर्तन।
5: अरे हाँ यार, ये तो सही बोल रहे हो आप। कुछ घरों में मेहमान आने की खबर मिलते ही ना स्पेशल क्रॉकरी बाहर आ जाती है, वो कप जो रोज नहीं निकलते, वो प्लेटें जो सिर्फ खास मौके पर इस्तेमाल होती हैं, घर की महिलाएं बड़े ध्यान से सब निकालती हैं और सोचती हैं किस कप में चाय अच्छी लगेगी, कौन सी प्लेट में स्नैक्स अच्छे दिखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें मेहमानों का स्वागत खास बना देती हैं। लेकिन कई बार घर वाले पूछते हैं, रोज क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जवाब होता है, ये मेहमानों के लिए है। आपके घर में भी कोई ऐसा स्पेशल बर्तन है जो सिर्फ मेहमानों के आने पर ही निकलता है। वैसे हमारे घर में रीना बहुत प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल बाउल्स हैं, कांच की एंड प्लेटें,
4: सबके घर में होते हैं वो, जब मेहमान आते हैं तभी निकलते हैं, सिर्फ मेहमान नवाजी।
5: लेकिन बच्चे जो होते हैं ना घर में वो बहुत नटखट होते हैं, वो बोलते हैं कि मम्मा मुझे इसी प्लेट में खाना है, मुझे इसी बाउल में देना है।
4: दो चार दिन के लिए तो उनके दिमाग से निकलता ही नहीं, नहीं नहीं मैं भी तो बच्चा हूँ ना, मेरे लिए भी अलग से प्लेट होना चाहिए, नया प्लेट होना चाहिए।
5: बहुत, और बहुत से बच्चे बहुत जिद्दी भी होते हैं, वो मानते नहीं जब तक उनको नए बर्तन में खाना ना मिले।
4: लेकिन देखिए खाने के साथ साथ मुझे लगता है गाना सुनना भी बहुत जरूरी है।
5: गाना और खाना दोनों लाइफ में बहुत जरूरी है।
4: हाँ, तो हम यहाँ पर लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपको हमारी बातें सुनकर मजा तो आ रहा होगा, लेकिन देखिए आज आपके पास कॉल भी आ जाएगी किसी ना किसी का, भैया कि हम आ रहे हैं आपके घर, रेडी रहिएगा, कुछ अच्छा ताजा बना कर रखिएगा हमारे लिए। और आप बताइएगा जरूर कि आज आपके घर कॉल आया किसी मेहमान का कि हम आने वाले हैं। चलिए फिलहाल ये गाना परफेक्ट वाला सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: देखिए श्रोताओं, बहुत अच्छा आपने गाना एंजॉय किया है और मेहमान का पसंदीदा खाना उस टाइम ये बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है। जब वो मेहमान घर पर आते हैं तो जो उनसे ना पूछ भी लेते हैं, अच्छा क्या खाएंगे आज आप खाने में, बताइए आप जो बोलेंगे ना वही बनेगा घर पर। चाहे हम मम्मी को 10 दिन से बोले मम्मी आज पनीर बना लो, अरे कल तो बनाया था अभी 10 दिन बाद बनेगा, लेकिन जैसे मेहमान आते उन्होंने बोला कि बनेगा। हर परिवार में कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जिनकी पसंद घर की महिलाओं को याद रहती है। किसी को चाय कम चीनी वाली पसंद है, किसी को नमकीन ज्यादा, किसी को मिठाई पसंद है और कोई आते ही पूछता है आज क्या बना है भाभी जी ये सवाल आता है। ऐसे में मेहमानों की पसंद का ध्यान रखना भी प्यार दिखाने का एक अलग ही तरीका है। कई बार महिला को खुद याद नहीं रहता कि उसने कब क्या खाया, लेकिन मेहमान की पसंद जरूर याद रखती हैं। यही महिलाओं के अंदर की खासियत होती है कि वो हर किसी का ध्यान रखती हैं। अपनी ध्यान की तो छोड़ो, लेकिन मेहमानों का, घर वालों का ध्यान अच्छे से रख लेती है, अपना ही भले रखे ना रखे।
1: अब बात करते हैं हम मेहमान आते हैं तो बच्चों का मूड भी बदल जाता है रीना, पता है। खासकर अगर मेहमानों के साथ उनके हम उम्र बच्चे हों तो घर में अलग ही रौनक हो जाती है। पहले बच्चे थोड़ी शांत बैठते हैं, फिर धीरे धीरे खेल शुरू करते हैं और कुछ ही देर में पूरा घर प्लेग्राउंड बन जाता है। माँ एक तरफ चाय पानी संभाल रही होती है और दूसरी तरफ आवाज आती है बच्चों को जरा देखो। लेकिन सच कहें तो बच्चों की ये मस्ती मेहमानों की बातचीत में और इंटरेस्टिंग चीजें, मतलब इंटरेस्टिंग ये हो जाता है जब बच्चों को वो खेलता हुआ देखते हैं कि चलिए अच्छी बात है, बच्चे अपने लगे हुए हैं खेल में और हम भी अपनी बातों में लगे हुए हैं, है ना रीना।
0: और साथ ही साथ मेहमान बोले हम बस चाय पियेंगे, ये बहुत फेमस वाला डायलॉग है, हम बस चाय पी के चले जाएंगे। और घर की महिलाएं मन ही मन सोचती है अच्छा जी देखते हैं, क्योंकि भारतीय घरों में ना चाय अकेली थोड़ी आती है, उसके साथ कुछ नमकीन, कुछ बिस्किट, कुछ मिठाई और अगर मौका हो तो गर्मा गर्म स्नैक भी आ जाता है। मेहमान मना करते रहते हैं और घर की महिलाएं कहती रहती हैं थोड़ा सा और ले लीजिए। यही छोटी सी नोक झोंक में हमारे मेहमान नवाजी की अंदाज को खास बना देती है।
1: और घर में पता है सबसे पहले क्या आते हैं, गर्मा गर्म समोसे
0: हाँ हमारे घर में जब समोसे आते हैं ना तो मम्मी जैसे मेहमान के लिए टेबल उसमें बाउल में रखती है,
1: हाँ।
0: लेकिन मैं कहती हूँ कम से कम एक तो बचा लेना, अभी बचा लेना क्योंकि मैं अभी खाऊंगी
1: हाँ होता है ऐसा किचन में, मतलब जैसे ये सामान बाहर से लेकर आते हैं तो पहले हम क्या करते थे बच्चे, हम मम्मी को बोलते थे कि मम्मा हमारे लिए थोड़ा साइड में रख दो ना, हमें चुपके चुपके किचन में खाया करते थे और मेहमानों के लिए मम्मी लेकर जाती थी, तो वो टाइम भी बहुत ही खूबसूरत है यार।
0: टाइम नहीं मेरा तो अभी भी है, सच बताऊँ ये टाइम मेरा बदलने वाला नहीं है। हाँ मतलब अभी भी मैं घर पे रहती हूँ, जाती हूँ जब पता चलता है कि कोई आने वाला है तो उनके लिए कुछ चीजें बाहर से आती है तो उनके लिए तो प्लेट में रख दी जाती है, लेकिन मैं एक अलग से निकाल लेती हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे भी अभी मेहमान वाली फीलिंग चाहिए भैया।
1: अच्छा मतलब पहले तुम

0: लगाती हूँ तो मेहमान भूख लगाते हैं।
1: नहीं नहीं, उनके लिए प्लेट चली जाती, फिर मैं अंदर जाके अपने रूम में खा लेती हूँ।
0: अच्छा,
1: मतलब मुझे लगता है कि ये जो आदत है ना, कुछ आदतें मुझे बदलनी नहीं चाहिए, मैं ऐसी रखूंगी।
0: जो नहीं, एक ना कहते हैं दिल तो बच्चा है जी,
1: और क्या,
0: तो थोड़ा बच्चा बनाकर रखना चाहिए। हम कितने भी बड़े हो जाएं एंड मैच्योर हो जाएं, लेकिन वो नटखट सा छोटा सा बच्चा अपने दिल में हमेशा होना चाहिए।
1: ये तो मैं हमेशा अपने आप को चेंज करने वाली नहीं हूँ।
0: हाँ ठीक है, बहुत प्यारा सा है ये आपका नीचो। एंड अब हम बात कर लेते हैं, खुद तैयार होना भी जरूरी है ना। मेहमान आने वाले हो तो घर की साफ सफाई और खाने की तैयारी में महिला इतनी व्यस्त हो जाती है कि खुद तैयार होना भूल जाती है। आखिर में दरवाजे की घंटी बजती है और सोचती है, अरे मैं तो अभी तक ऐसी ही हूँ। फिर जल्दी से बाल ठीक, कपड़े ठीक और चेहरे पर स्माइल, क्योंकि मेहमानों का स्वागत करने वाली महिला खुद भी तो फ्रेश और खुश दिखनी चाहिए ना, ये भी जरूरी है। घर को सुंदर बनाने के चक्कर में ना खुद को इग्नोर करना सही नहीं है आपकी नजर। क्यों एवरीवन, अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आपने घर भी चमका दिया है, सब चीजें परफेक्ट हैं, नाश्ता भी बना दिया है, किचन भी चमाचम चमक रही है, लेकिन आप खुद भी तो चमकिए, तभी तो आप घर भी खुशहाल लगेगा जब आप खुद चमकेंगी। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी सज संवर के रहिए, काम के साथ साथ ना तैयार होती रहिए। एक काम किचन में चाय बना के आइए, फटाक से बाल बाल लीजिएगा, फिर किचन में जाइए, फिर तैयार होकर आ जाइए।
1: नहीं, मुझे लगता है कि एक बार रेडी हो जाओ फिर काम करो। भाग दौड़ में ना चाय भी गैस से निकल जाती है, साफ डबल काम बढ़ जाता है।
0: ये बड़ा इग्नोर होता है, पता है हम जब तक किचन में खड़े रहते हैं ना, तब तक तो लगता है कि अभी यार चाय बनी नहीं रही है, बॉयल ही नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम एक पलक झपकते हैं तुरंत गैस से बाहर चाय आ जाती है ना।
1: और मेहमानों के सामने बच्चों की शिकायतें, भैया ये तो भर के होती है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मेहमान आए नहीं कि कभी कभी बच्चों की शिकायतें शुरू हो जाती है, ये पढ़ाई नहीं करता, ये मेरी बात नहीं सुनता, इसने कमरा गंदा कर दिया है। लेकिन बच्चों को सबसे डर तब लगता है जब माँ मेहमानों के सामने उनकी पुरानी सारी बातें बताने लगे। मेहमान बेचारे चाय पीते हुए सुनते रहते हैं और बच्चा चुपचाप नीचे देखता रहता है। वैसे बच्चों की छोटी मोटी शरारतें घर की जिंदगी का हिस्सा है, हर बात मेहमानों के सामने बताना जरूरी भी नहीं है, है ना, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं फिर उस टाइम। और साथ ही साथ पड़ोस में मेहमान आए तो क्या होता है, कभी कभी पड़ोस के घर में मेहमान आते हैं और पूरा मोहल्ला समझ जाता है कि आज उनके घर कुछ स्पेशल बन रहा है। किचन की खुशबू आती है, घर के बाहर चप्पलों की लाइन दिखाई देती है और अंदर से बातचीत की आवाजें। हमारे मोहल्ले में पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं होते, एक दूसरे की सुख दुख में शामिल भी होते हैं। ऐसे में अगर अचानक नमक, चीनी या कोई सामान कम पड़ जाए तो पड़ोसी ही काम आते हैं। उनके मोहल्ले में भी ऐसा ही कोई घर आए जहाँ मेहमान आए तो आपको भी खुशबू से ही पता चल जाता है, भैया पक्का इनके घर तो आज कोई आया है।
0: अब मेहमानों के आने से पहले जितनी तैयारियां होती है ना, उनके जाने के बाद किचन में भी उतना ही काम बढ़ जाता है। कप प्लेट वापस रखने हैं, बचे हुए खाने को सही जगह रखना है, गैस साफ करनी है और किचन फिर से व्यवस्थित करना है। उस समय घर की महिलाएं सोचती हैं अब थोड़ी देर बैठूं, लेकिन तभी कोई आवाज लगा देता है, चाय मिलेगी, और फिर महिला बस मुस्कुराकर रह जाती है। असली सवाल यही है, मेहमानों के जाने के बाद क्या घर की महिला को भी आराम मिलना चाहिए?
1: चाहिए तो सही, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि पहली बात तो उनके दिमाग में भी खिचड़ियां पकती रहती है, यार पहले ये काम खत्म हो जाए उसके बाद ही मैं आराम से रिलैक्स करूंगी। और मुझे लगता है कि मेहमान आने की जितनी खुशी होती है ना, जाने में भैया जाते हैं ना, जब उतना ही काम इतना फैल जाता है कि उसके संभालने में, क्योंकि जो नई प्लेटें होती हैं फिर से जब उसको पैक करके रखते हैं तो अच्छे से वॉश करके सुखा के उसको धूप में थोड़ी देर रख के तब उसको पैक करके रखते हैं, ताकि वो उसमें कोई जंग वगैरह कुछ इस तरीके से ना लगे। तो काम तो पहले भी बढ़ता है और जाने के बाद भी बढ़ता ही बढ़ता है। बाहर जाके अगर 4-5 घंटे में रिलैक्स करने का मौका मिलता है, इतने फिर शाम के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। मेहमानों की मेहमान नवाजी सिर्फ खाना नहीं होती, उनके आराम का ध्यान रखना भी जरूरी है। पानी चाहिए या नहीं, बैठने में आराम है, या नहीं, बच्चों के लिए जगह है या नहीं, ये छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। खासकर अगर कोई बुजुर्ग मेहमान आए तो उनके लिए कुर्सी, पानी और आराम का ध्यान बहुत जरूरी है। अच्छी मेहमान नवाजी का मतलब बहुत सारा खाना नहीं होता, बल्कि सामने वाले को अपनापन महसूस कराना है। और आपके हिसाब से मेहमान नवाजी घर की सबसे खास बात क्या होती है? मुझे लगता है कि प्यार से आप उनके साथ हंस के बोलेंगे ना, उनके लिए वो बहुत मायने रखते हैं। और आपके चेहरे पर ना एक हल्के से मुस्कान होनी चाहिए, ताकि उनको भी देख कर ये ना लगे कि हमारे आने से ये परेशान है, कि इनके काम बढ़ गई है। उनके आगे हमेशा हैप्पी रहते हैं, ताकि उनको भी अच्छा लगे और अपनापन फील होए, और उनको ये भी ना लगे कि हम आ गए हैं तो यहाँ बोझ तो नहीं बन गए। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुशियां बांटते रहिए, और यूं ही हमारा एफएम मुरादाबाद सुनते रहिए। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहे, क्योंकि हम लेने वाले हैं यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और हम ब्यूटीफुल शो में आप सभी के साथ हाजिर हैं। और आज हमारा जो थीम है वो बहुत ही स्पेशल है। अब देखिए, मेहमानों की बात हमने की है, चर्चा की है, तो मेहमान और घर की असली तस्वीरें। कई बार हम सोचते हैं कि मेहमान आएंगे तो घर बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहिए, लेकिन सच ये है कि घर कोई होटल नहीं है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, कपड़े सूखते हैं, सामान इधर उधर होता है और जिंदगी चलती रहती है। इसीलिए मेहमानों के लिए घर को साफ रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना स्ट्रेस लेना भी जरूरी नहीं है कि घर की महिला खुद परेशान हो जाए। आखिर मेहमान घर की जिंदगी देखने आते हैं, किसी फाइव स्टार होटल में नहीं आए हैं, तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ओके एवरीवन,
1: मेहमानों की यादें। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो आते हैं तो सिर्फ घर नहीं यादें छोड़ जाते हैं। घंटों बैठकर बातें करना, पुरानी यादों पर हंसना, साथ खाना खाना और आते जाते कहना फिर जल्दी मिलेंगे, ऐसे रिश्तों में घर की साफ सफाई और खाने से ज्यादा जरूरी अपनापन होता है। कई बार साधारण चाय और घर का खाना भी बहुत खास लगने लगता है, क्योंकि साथ बैठने वाले लोग खास होते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे घरों में मेहमानों को सिर्फ मेहमान नहीं परिवार का हिस्सा माना जाता है, और उनके साथ बिताई हुई बातें हमें अक्सर उनके जाने के बाद भी बहुत याद आती हैं।
0: तो एवरीवन, आज की हमारी बात का आखिरी पड़ाव यही है, मेहमान आने वाले हैं। सुनकर अगर घर की महिला के चेहरे पर सबसे पहले टेंशन आ जाए तो थोड़ा रुकिए। घर साफ करना, कुछ अच्छा बनाना, सबकी पसंद का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन मेहमान हमारे घर की खुशी बांटने आते हैं, सिर्फ हमारी परीक्षा लेने नहीं। इसीलिए अगली बार मेहमान आने की खबर मिले तो काम के साथ एंजॉय, थोड़ा एंजॉय भी कर लीजिएगा। चाय बनाएं, बातें कीजिए, हंसिए और यादें बनाइए, क्योंकि आखिर में याद घर कितना चमक रहा था ये नहीं याद रहता। याद रहता है कि उस दिन सब साथ बैठकर कितना खुश थे, कितना हंस रहे थे, कितनी प्यारी प्यारी बातें की हैं। तो एवरीवन, अगर आपके घर नेक्स्ट टाइम गेस्ट आए तो उनका जब कॉल आए तो सुनकर ना मुस्कुराइए, और ज्यादा काम का लोड बिल्कुल भी मत लीजिए। देखिए, काम भी हो जाएगा जब आप खुश रहेंगे, और जब मन से कोई भी काम करते हैं ना तो वो काम अच्छा होता है, और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं, तो बस खुश रहिए और अपने मेहमानों को अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाइए और खुद भी खाइए। और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:09। श्रोताओं, आप भी इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कोई अपना फेवरेट गाना सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप जल्दी से हमें कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और करते हैं अपने शो की शुरुआत, बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: हाँ जी, जय श्री महाकाल। क्या नाम है आपका?
1: मैम आपका नेम है छोटा शिवा लोहट, एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा शिवा, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, और जब आपकी मधुर मधुर आवाज हफ्ते में एक बार सुनने को मिल जाती है तो और भी अच्छा लगता है मैम।
0: हम हफ्ते में एक बार नहीं आते हैं, हम मंडे टू सैटरडे फ्राइडे आते हैं। सॉरी, तो
1: नहीं मैम, पर हम आए तो फोन पे आपसे एक बार ही होती है।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: फिर उसके बाद ये है कि कार्यक्रम में आपको सुनते रहते हैं मैम, ऐसी बात नहीं है।
0: हाँ जी, थैंक यू सो मच शिवा। बताइएगा कैसा है आपकी तरफ का मौसम?
1: मैम बारिश हो रही है, काफी अच्छी बारिश हो रही है।
0: अच्छा, ये बारिश कब से स्टार्ट हुई है?
1: मैम मतलब 2 बजे के समथिंग से पानी गिरना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले धूप निकली थी।
0: अच्छा अच्छा, पहले मतलब धूप निकल रही थी और अभी बारिश हो रही है ना?
1: बारिश हो रही है जी, यस।
0: ओके शिवा, बताइएगा आप हमारे साथ जुड़े हैं आज, आप हमारे शो के फर्स्ट कॉलर बने हैं, क्या सुनना चाहते हैं आज, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम द ट्रेन मूवी का गाना रहेगा, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं।
0: अच्छा ठीक है शिवा, सुनवाते हैं ये ट्रैक आपको, एंजॉय कीजिएगा।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, शिवा की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, क्योंकि जी की वॉइस बहुत ही अमेजिंग गाना है। आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: गाना कोई और सुन लेता है, और जब हम कोई काम करते हैं और अचानक से अपना फेवरेट गाना प्ले हो जाए रेडियो पर, तो खुशी के ना ठिकाने नहीं रहते हैं। मतलब खुशी के मारे दिल झूम उठता है, और वो गाना हम चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में हो, घर पर हो या ट्रैवल कर रहे हो, तब ना वो गाना अपने आप जुबान पर हम लोगों की चढ़ जाता है और हम गुनगुनाने लगते हैं, है ना। तो अगर आपका भी कोई ऐसा गाना है आपका फेवरेट जो आप सुनना चाहते हैं राइट नाउ अभी, तो मुझे कॉल कर सकते हैं आप। मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। अभी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाय, गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम कनिका है।
0: कनिका, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद
0: से बात कर रही हूँ। बताइए कनिका, अभी कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं आप?
1: मैं 10th क्लास में।
0: 10th क्लास में, ओके। तो आज आपने कॉल किया है, बताइएगा क्या सुनना चाहते हो आप कनिका?
1: मैं कहीं बनकर हवा सॉन्ग सुनना चाहती हूँ।
0: कहीं बन की हवा, ओ वाओ, अमेजिंग ट्रैक। किन के लिए सुनना चाहते हो ये गाना? ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहते हो
1: जी?
0: मैंने कहा ये गाना किन के लिए सुनना चाहते हो आप? कोई आपके फ्रेंड है या फिर बस अपने लिए? आपको पसंद है?
1: पसंद है मुझे।
0: ओके, तो चलो आपकी पसंद पर सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय करो।
1: ओके,
0: या तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक कनिका की पसंद पर, और लौटकर हम वापस आते हैं। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइए, बिल्कुल भी मैं कहना चाहूंगी कि इस टाइम को, इस मोमेंट को मिस मत करो आप। हमारा नंबर मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, 9837896896। जल्दी कॉल लगाइएगा और अपने सफर को सुहाना बनाइए। फिलहाल ये गाना सुनिएगा, मैं वापस आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: हाय एवरीबॉडी, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है और अभी आपने एंजॉय किया ये अमेजिंग ट्रैक अश्विनी भारद्वाज और साथ में खुशबू शर्मा की वॉइस में ये अमेजिंग ट्रैक आपने सुना। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। वेरी गुड आफ्टरनून सर, क्या नाम है आपका?
1: मैम शेरपुर माफी से सालिम अंसारी बात कर रहे हैं।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: मैं हाँ हाल चाल एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास। आपका सब सुना बहुत अच्छा लग रहा है।
0: शुक्रिया आपका बहुत बहुत सर। बताइएगा आपके यहाँ का मौसम कैसा है अभी?
1: मैम बहुत तेज धूप निकल रही है, कड़ाकेदार
0: धूप निकल रही है।
1: पंखे की हवा में लेटा आराम से।
0: चलिए अच्छी बात है, आराम फरमाइए। बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी आज?
1: मैम हमारे यहाँ पर भतीजी की हमारे पैदाइश हुई थी, 3 दिन हुआ, तो हमें गाने सुनना है। हाँ मासूम सा चेहरा।
0: अरे वाह क्या बात है, आप चाचा बन गए हैं, मुबारक हो आपको। जी तो सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत। हाँ कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: उदित नारायण जी के बारे में गाना है, कितना मुझे प्यार लगे एक मासूम सा चेहरा।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ये ट्रैक आपको। आपने कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं अमेजिंग ट्रैक उदित जी की आवाज में। उदित नारायण जी की आवाज में कोई भी ट्रैक, एवरीवन कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो दिल को टच ना करे। उनका हर एक गाना बहुत खूबसूरत है, उनकी आवाज है दिल को सुकून दे जाती है। तो चलो सुनते हैं ये गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी कॉल लग जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ, आपकी खुशी

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और अभी आपने सुना ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना, एक मासूम सा चेहरा उदित नारायण जी की आवाज में। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: विजयपाल
0: जी, बताएगा आप कैसे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मुरादाबाद
0: से बात कर रहे हैं जी। बताएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: हमारी फरमाइश है जंगल लफ का गाना।
0: अच्छा ठीक है सर, सुनवाते हैं गीत आपको। आपने हमें कॉल किया उसके लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये गाना और हम लौट कर आते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए, हमें कॉल लगाइए एंड डेफिनेटली आपका कॉल लगेगा। जब आप हमें कॉल लगाने का प्रयास करेंगे तभी तो कॉल लगा पाओगे ना आप, और कोशिश भी ना करो ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए सुनते हैं शानदार से गाना, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ अनुराधा पौडवाल जी की।

हाई एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आप सभी का वंस अगेन वेलकम बैक. एफएम मुरादाबाद 89.6 पर सुन रहे हैं आप हेलो फरमाइश. मैं आपके साथ आपकी खुशी. और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी जंगल लव से. एंड इस खूबसूरत गीत को गाया था अनुराधा पौडवाल जी ने.

और अब आप सुनने वाले हैं एक प्यारा सा गाना खुशी की तरफ से, क्योंकि देखिए हम सबकी फरमाइशें पूरी करते हैं ना, और हमें भी तो ये मौका मिलना चाहिए ना। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनवाती हूँ मैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना, एंड उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा एवरीवन। हमारा मोबाइल नंबर है 9833789689 6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और सुनिएगा ये खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और अभी आपने सुना ये प्यारा सा गाना विद नारायण जी साथ में अलका यानिक जी की आवाज फ्रॉम द मूवी अंदाज मूवी से ये गाना अभी आपने सुना। आज कहना जरूरी है, हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि दोस्तों आप भी जल्दी से कॉल लगाइए। क्यों इतनी देर लगा रहे हो आप? नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार
0: जी। अपना शुभ नाम बताइएगा आप।
1: मेरा नाम प्रमोद मैम।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं एकता कॉलोनी से बात कर रहा हूँ।
0: एकता कॉलोनी से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा सर क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: फरमाइश का नाम, पिक्चर का नाम अल्लाह।
0: हाँ जी,
1: गाने के बोले पत्नी का लंबे बाल।
0: ओके, तो चलिए आप ये गाना एंजॉय कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है सर, हम सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। नमस्कार आपको भी। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये ट्रैक, और आप भी सुनना चाहते हैं कोई भी गाना अपने पसंद का तो फटाफट से कॉल लगाइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका।

0: दोस्तों अभी आपने सुना ये प्यारा से गाना उदित अनुराधा पौडवाल और साथ में कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में। साथियों समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:54 354 राइट नाउ टाइमिंग हो गई है। और अगर अभी तक आप सोच रहे हैं कॉल लगाने की, अभी अभी आपने रेडियो ऑन किया है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इस फोन इन कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, हमें कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुरादाबाद के बाहर से भी हमें सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत सिंपल से काम करना है। आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर FM मुरादाबाद 89.6 आपको सर्च करना है। वहाँ पर रेड कलर का लोगो नजर आएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन को और इजीली आप हमें सुन पाएंगे। तो चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अलीशा है।
0: मेरा नाम अलीशा है। अलीशा कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मैं मुरादाबाद से बात कर रही हूँ।
0: अरे वाह, आज तो बहुत हैप्पी है आप। बताइएगा ये हैप्पीनेस का रीजन क्या है?
1: हंसने का रीजन है, कुछ नहीं है, मेरी बेस्टी है मेरी लाइन पर, तो बस मैं उसी के ऊपर हंस रही थी।
0: अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। जब दोस्तों के साथ गपशप करते हैं ना, तो मुस्कुराहट ऑटोमेटिकली आ जाती है।
1: यस मैम, हाँ जी, होता है।
0: बताएगा आप अलीशा क्या सुनोगी आज?
1: मैं अपनी बेस्टी के लिए एक सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, तेरी यादों की चादर ओढ़े।
0: ओह ये बात है। क्या नाम है आपकी दोस्त का?
1: मेरी बेस्टी का नाम सानिया।
0: अच्छा तो चलिए गाना आपको सुनवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलीशा कॉल करने के लिए। मोस्ट वेलकम। तो चलिए अलीशा जी की पसंद पर सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक। लौट कर आती हूँ मैं वापस, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा और मुझे तो उम्मीद है आपका कॉल लग जाएगा। बस आप ऐसे ही कंटिन्यू ट्राई करते रहिएगा।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
2: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
3: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। यह मुरादाबाद शहर का पहला रेडियो स्टेशन और मैं आपको वक्त बता देती हूँ, समय हुआ है 4:06। खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी है एंड आप भी चाहते हैं कि आज मंडे की इवनिंग में आपका फेवरेट ट्रैक भी यहाँ पर प्ले हो, तो फिर देर किस बात की है, फटाफट से फोन उठाइए और हमारा मोबाइल नंबर डायल कीजिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, प्लीज फोन की थोड़ा सा करीब आ जाइएगा। जी, नाम अपना बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मेरा नाम अनिल कुमार है।
0: अनिल कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ग्राम बानकी वजीरा जिले मलावा से बात कर रहे हैं।
0: जी बताइएगा, क्या करते हैं आप? अच्छा, तो आज छुट्टी है?
1: नहीं, छुट्टी नहीं है।
0: तो आप वर्क पर ही हैं अभी? अपना अपने वर्क प्लेस पर ही हैं आप?
1: मैंने मैम गाना बोला था, कैसे मुझे गाना सुनना, कुली मूवी का।
0: हाँ जी, कुली मूवी का कौन से गाना आपको सुनना है?
1: मुझे पीने का तो नहीं।
0: अच्छा ठीक है, सुनवाते हैं गीत आपको। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका अनिल जी। तो एवरीवन, सुनते हैं अनिल जी की पसंद पर ये ट्रैक फ्रॉम द मूवी कुली और आप भी मुझे कॉल कीजिएगा। आपको भी आपकी पसंद का गाना सुनने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है, मिल रहा है, तो फिर देर किस बात की।

0: गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये गाना फ्रॉम द मूवी कुली से, एंड इस खूबसूरत गीत को गाया था अलका याग्निक जी ने और साथ में शबीर कुमार जी की आवाज। ये ट्रैक फिल्माया गया था ऋषि कपूर साहब जी पर। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कहां से कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार दीदी।
0: आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: हीराम हीरापुर जिला दिहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप।
1: बहुत अच्छे हैं दीदी, आप तो बढ़िया हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल, प्रभु राम जी की कृपा है, हम बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी।
1: जी दीदी, फिल्म का नाम है काश आप हमारे होते, टाइटल सॉन्ग सुनना है दीदी।
0: अच्छा, टाइटल ट्रैक आपको सुनना है। ठीक है, हम सुनवा देते हैं आपको सर। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको और हमारे हेलो फरमाइश एकता रेडियो ग्रुप के सभी साथियों को डेडिकेट
0: है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने सभी साथियों के साथ सुनिएगा आपने पसंद के ये गाना।
1: धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत, और ये अवसर आपको भी मिल रहा है तो आप भी बिना किसी देरी के हमें कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, 9838 3786। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी

0: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने सुना सोनू निगम जी की आवाज में, एंड टाइटल ट्रैक काश आप हमारे होते। और बिल्कुल जी, हम आपके ही हैं, आप भी हमारे हैं, और तभी तो ये रिश्ता है ना, बहुत ही खूबसूरत सा दिल से दिल का रिश्ता है आपका और हमारा। तो चलिए कार्यक्रम को अभी आगे यहाँ पर बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। आपको भी नमस्कार, क्या नाम है आपका डियर?
1: मैं ग्राम
0: बनौरे
1: जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सरे बात कर रही हूँ मैम।
0: तनुश्री बात कर रही है महाराष्ट्र से?
1: जी मैम।
0: बताइए तनु, कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, और आपसे बात कर कर तो और भी अच्छा लग रहा है कि आपकी तो फोन लगा तो बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात कर कर।
0: बहुत खुशी मिलती है ना जब अपना कॉल लग जाता है तो।
1: हाँ, खुशी तो मैम को पहले खुशी तो होती है कॉल लगने, और दूसरी खुशी होती है कि आप इस वक्त बात करती हैं, मुझे आपसे बात करना बहुत बढ़िया लगता है।
0: थैंक यू तनुश्री। तनुश्री बहुत अच्छा लगता है हमें भी जब हमारी प्यारी प्यारी सी लिसनर हमें कॉल करती हैं। और बताइएगा तनुश्री, मौसम कैसा है महाराष्ट्र का?
1: मैम अभी तो महाराष्ट्र मतलब हमारे इधर तो अभी तो गर्मी है, मतलब हमारे इधर तो अभी बाहर मतलब दूसरे जिले में पता नहीं, पर हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: अच्छा, बहुत ज्यादा धूप है।
1: हाँ
0: ओके okay. तो बताइएगा तनुश्री, आज आप हमारे साथ जुड़े हो, मतलब मंडी का इंतजार होता है बेसब्री से,

0: भूलते नहीं। कभी ऐसा हुआ है तनु, तनु कभी ऐसा हुआ है कि आप हेलो फरमाइश शो को सुनना मिस कर दिया हो आपने और फिर बाद में सोचा ओ हो आज तो मैंने मैम का शो मिस कर दिया है, मुझे सुनना चाहिए था।
1: बहुत खूब, मतलब जब मतलब एक हफ्ते का इंतजार होता है मुझे बहुत, मतलब ऐसा लगता है कब आएगा संडे, कब आएगा, मतलब मंडे कब आएगा, सॉरी इतना इंतजार में करती हूँ ना मैं, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती मैं का मंडे का इंतजार में कितना करती हूँ, क्योंकि आपसे बात करने में मतलब बहुत खुशी होती है ना, तो इसलिए मैं मतलब मंडे जब आते हैं तो मैं कॉल आपको करती हूँ।
0: थैंक यू तनुश्री इतना प्यार करने के लिए। और फाइनली आपका 1 वीक की बात कॉल लगा है, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हो आप?
1: अरे मैम गाना खास कर आपके लिए है, फिल्म का नाम है मुस्कान, उसमें गाना है जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती।
0: ये बात है, अब तो देखिए दिन भी गुजरेगा रात भी होगी क्योंकि अब आपसे हमारी बातचीत हो गई है।
1: जी मैम।
0: हाँ जी, तो तनुश्री किसी का नाम लेना चाहती हो आप?
1: जी मैम, पहले तो डेडिकेट आपको, पहले तो मैंने बताया आपके लिए गाना खास कर करे, फिर मेरे पापा है भगवान सिंह परमार जी है, अविनाश जी है, राकेश जी, शुमला से गंगाधर सावनकर जी, रमेश प्रजापति जी है, राम बाबू शर्मा जी और लाइव सुन रहे हो, और अनु पांडे जी और लाइव सुन रहे हो, सभी श्रोताओं के लिए मैम।
0: अरे वाह क्या बात है, आपकी दोस्तों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ
1: अरे फिर से मैम आदि नाम ले लिए है मैंने, आदि तो है और
0: अभी आधे नाम बाकी हाँ। है
1: जी मैम, आधे नाम फिर जब कॉल करूंगी तो आधे
0: हाँ,
1: नाम लूंगी।
0: हाँ, ये गुड आइडिया है आपका, नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट वीक कॉल करेंगे तब आधो का नाम ले लीजिएगा, ठीक है?
1: जी मैम।
0: जी चलिए तनुश्री, अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनवाते हैं गाना आपको, एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं तनुश्री के पसंद पर ये खूबसूरत ट्रैक फ्रॉम द मूवी मुस्कान से, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। और सच में दोस्तों जब किसी भी मतलब हम चीज़ किसी भी रिश्ते में हम होते हैं, एंड चाहे वो दोस्ती का हो, फैमिली का हो, फ्रेंड्स का, मतलब एनीवे कोई भी रिश्ता होता है ना, तो उस रिश्ते में जब हम कनेक्ट होते हैं और जब बात नहीं होती है तो ऐसा लगता है एक एक पल जैसे कितने, मतलब एक पल ऐसा लगता है एक घंटा गुजर गया है बात नहीं हुई है, और एक दिन पूरा ऐसा लगता है कि एक साल हो गया है ना, ये रिश्ता ना बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन हाँ, इस रिश्ते में ना एवरीवन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ईगो को थोड़ा साइड कीजिए, और कभी कोई अगर आपसे नाराज़ है तो उनको मना लीजिए, या फिर आप किसी से नाराज़ हैं, कोई आपको मनाने का प्रयास कर रहा है तो मान भी जाइए।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: कोई मिल गया,
3: कोई मिल गया,
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक भी पराग जी की आवाज में। बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला हिमाचल प्रदेश से।
0: जी बताइएगा राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, समय आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू। बताइएगा कैसा मौसम है कश्मीर का, शिमला का?
1: शिमला
0: का वेदर कैसा है बताइएगा?
1: अभी मौसम साफ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही
0: है। अरे वाह, ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं आप शिमला में बैठकर। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं?
1: आज मुझे गाना सुना है सनी मून का, और गाने के बोले कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, और डेडिकेशन जो है अविनाश है और तनुश्री है और तमाम सुनने वाले श्रोता है।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आपकी पसंद का। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सर ने तो कॉल किया हमें शिमला से, आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं बताइए हमें कॉल करके। इंतजार है हमें आपकी कॉल का। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। जल्दी से कॉल कीजिएगा और फिलहाल सुनिएगा एक खूबसूरत सा ट्रैक।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आपकी दोस्त आरजे खुशी आपके साथ है। और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक उदित नारायण जी की आवाज़ में। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी बताएगा आप कैसे हैं सब?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा। ड्यूटी से घर आया हूँ और आपका कार्यक्रम लाइव फोनिंग कार्यक्रम में जुड़ा हूँ रेडियो मुरादाबाद में। और सबसे पहले गीत मैं आपको अपने पसंद के गीत बताता हूँ। गीत का नाम है बाबे 405 मिनट और गीत को बोले दे जरा गायक किशोर कुमार, बहन कपूर, ये विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जी का फिल्म का गाना है। और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब पूर्व भारतीय अध्यक्षता से रेडियो मुरादाबाद में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवार जन के ऋषि कार्यों को, अफिशियलियों को, सभी मुखों से भाई बहन एक्स्ट्रा परिचालन को, जुड़े श्रोता को, पूर्व भारत राज्य श्रोता को और मुरादाबाद में जुड़े जितने भी श्रोता जुड़ते हैं उनको भी मैं डेडिकेट करूंगा। धन्यवाद।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। आपने हमें कॉल किया, आपका धन्यवाद।
1: जी मैडम,
0: तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक किशोर दास जी की आवाज में। और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे कल टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपना अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिएगा। और सुनिएगा ये शानदार से गाना।

0: वी हैव अराउंड 1150।
1: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
0: Which will make a big change in times to come.
2: दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि ये एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 साल तक का कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। भटिंडा के तलवंडी में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI ने आज नई दिल्ली में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में SECI की भूमिका हमेशा अग्रणी रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत के माध्यम से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। जापान में एशियाई खेलों में आज पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हराया। भारत के लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। उधर भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है राहत फतेह अली खान जी की आवाज़ में और नेहा कक्कर की आवाज़ में, कि मैं नाल खड़ा तेरे तो फिकर ना करिया कर। सच में जब कोई कहने वाला ये हो जाता है ना कि मैं तेरे साथ हूँ तो फिकर मत कर, तो आधी जो टेंशन होती है ना वो यूं ही ख़त्म हो जाती है और ज़िंदगी बड़ी सुहानी हो जाती है। तो कुछ गाने ना बहुत ही शानदार वाले होते हैं, और जैसी भैया शाम की शो की शुरुआत होती है, आरजुरी ना आप सभी के साथ कनेक्ट होती है चाय की चुस्कियों के साथ और इवनिंग का तड़के के साथ, तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि इवनिंग मस्ती शो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि समय की बात करूं तो 5:09 हो चुके हैं। तो आप ऑन द वे हैं, आप जो कहीं से भी आप हमारा रेडियो सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, शुक्रिया है कि आप रेडियो सुन रहे हैं। और अभी आप सोच रहे होंगे कि चलिए चाय पी लेते हैं, फिलहाल चाय के नाम से मुझे याद आया कि आज का टेम्परेचर भी तो 34 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आरजेडी ना आप सभी के साथ है तो 4 गिलास पानी पीना बनता है। अब पानी की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में पानी पीना ही बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, डिहाइड्रेट करता है आपको। और साथ ही साथ 2 घंटे हम आप सभी के साथ रहेंगे, करेंगे ढेर सारी बातें, देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड आज की तारीख 21 सितंबर और दिन भी सोमवार। कितना अच्छा दिन है ना सोमवार, यानी कि सोमवार की जब शुरुआत होती है एक नए सिरे से बोल सकते हैं हम, क्योंकि संडे को हम सभी रिलैक्स करते हैं, बहुतों का भैया काम करते करते थक जाते हैं और फिर सोचते हैं धत तेरी की बड़ी जल्दी मंडे आ गया यार। संडे खत्म नहीं होते इतने मंडे की टेंशन होने लग जाती है। फिलहाल करेंगे ढेर सारी बातें, बस आप अगर रेडियो सुन रहे हैं तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि रेडियो के जो वॉल्यूम है ना भैया उसको आप बढ़ा लीजिए, आपको सच बताओ बहुत मजा आने वाला है। चलिए फिलहाल एक और गाना सुनते हैं और इसी गाने के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने शो में धमाकेदार एंट्री के साथ, क्योंकि देखिए रेडियो के धुरंधर ना आपको बाहर दिखे ना दिखे लेकिन रेडियो के पर्दे आपको हमेशा सुनाई देंगे, यानी कि पर्दे के पीछे वो हमेशा सुनाई देते हैं और कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि पर्दे के आगे आ जाते हैं हम। चलिए फिलहाल ये गाना सुनते हैं।
1: प्रमोशन लेटर,
2: कंग्रेचुलेशंस, फिर मुझसे पूछने क्यों आई?
1: हेलो।

0: Buldum ben Lurk'u.
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

0: दिल या हमारा दिल है,
1: इसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है।
0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। विशाल मिश्रा श्रेया घोषाल जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना। और समय की बात करूं तो 5:20 हो चुके हैं और आप ऑन द वे हैं। तो एक बात तो मान लिया करिए जी, रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। सही बता रहे हैं हम, फायदे में रहेंगे आप, अदरवाइज भैया कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ जी, शाम का टाइम है, ऑफिस की छुट्टी हो चुकी है और अब हर किसी को घर पहुंचने की ऐसी जल्दबाजी है जैसे घर पर कोई लॉटरी बट रही हो, ऐसे जल्दबाजी करते हैं। मुरादाबाद की सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है। बुद्ध बाजार, रेलवे स्टेशन, दिल्ली रोड, काट रोड और रामपुर रोड की तरफ निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेकर चलेगा। धैर्य पेशेंस के साथ, इनफैक्ट मैं ये कहूँगी पेशेंस बहुत जरूरी है, जो कि आज के टाइम में किसी के अंदर नहीं होता है। और सबसे मजेदार बात यह है, जाम में खड़े होकर हर कोई यही सोचता है मेरा आने वाला है, बस थोड़ा सा आगे निकल जाए फिर तो आने वाला ही है, पहुंच जाएंगे हम थोड़ी देर में, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आने वाला भी अपने आगे वाले से यही उम्मीद लगाकर बैठा होता है कि अब थोड़ा सा साइड होंगे और मैं सुच निकल लूंगी पतली गली से, लेकिन इतने ही पीछे से हॉर्न की पी पी पी की आवाज आती है। ऐसा लगता है भैया सड़क पर ट्रैफिक जाम नहीं, बड़क शादियों का यानी कि ढोलक ढिंढोरे बज रहे हो। इस तरीके से आवाज आने लग जाती है हर किसी के कानों में। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, जल्दबाजी लेना, जल्दबाजी में बिल्कुल कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो उसको साइड में रख दीजिए और हॉर्न को थोड़ा कम बजाइए। घर देर से पहुंचना चलेगा, लेकिन सुरक्षित पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, जाम में फंसे हैं तो गुस्सा मत कीजिए, मुरादाबाद का ट्रैफिक है साहब, यहाँ कब ट्रैफिक आपको मिल जाए खुद भी नहीं पता चलेगा, इसीलिए साथ में मुस्कान लेकर चलिए, यानी कि चेहरे पर एक मुस्कान और थोड़ा सा पेशेंस तो आपको बनाकर निकलना ही पड़ता है। साथ ही साथ रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए, जितना भी गुस्सा है वो जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, बॉडी में ठंडक फील होती है, वैसे ही आपको ठंडक शीतलता फील होगी, शीतल हवाएं आपको आप तक आने लग जाएंगी। फिलहाल शीतल तक आप पहुंचेंगे या शीतल आप तक पहुंचेगी वो तो आप ही बता पाएंगे।

उसके लिए बस कुछ नहीं करना है जी, हमारे पास उड़ते उड़ते मैसेज करना है, नंबर है 9837896896, यानी कि नंबर बोलू आराम से तो 9837896896, ये हमारा रेडियो का नंबर है। और मैसेज की बात करूँ तो हाय आई एम सानू खान फ्रॉम मुरादाबाद, क्या हाल है आपके? आज जी एकदम बातों से पता लग रहा होगा कि मैं बहुत बिंदास हूँ, बहुत बेधड़क, एकदम फिंटास्टिक वाली। यार हरियाणा की छोरी हमेशा बिंदास होती है। चलिए फिलहाल उड़ते उड़ते गाना सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ। बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है, उड़ जा काले कावा तेरे, आगे मुझे नहीं आता जी। और गाना यानी कि मधुर आवाज की बात करूं तो अलका याग्निक जी और उदित नारायण जी की आवाज में ये जो आपने गाना सुना है ना। और फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहूंगी, उड़ते उड़ते हमारे रेडियो के साथ कनेक्ट हो जाया करिए। यूं ही नहीं कि शाम को परिंदों की तरह इधर उधर टहनियां ढूंढा करिए। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको शाम 5 बजते ही आरजेडी ना आप सभी के साथ इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट हो जाती हैं। तो आप सभी यही उम्मीद है कि उड़ते उड़ते कनेक्ट हो जाइए। नंबर है 9837896896। फिलहाल आपने आज नेशनल टी डे है भैया, तो आपने मैसेज करके बताना है कि जो चाय है, चाय की क्वालिटी है, यानी कि चाय कितने टाइप के होते हैं, चाय के टाइप्स आपने बताने आज कि चाय को आप कितने टाइप से आप बना सकते हो, कितने प्रकार से आप बना सकते हो। बहुत से चाय है भैया, तो आपने मैसेज करके बताना है। नंबर है 9837896896। चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
4: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
3: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
4: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हाय हाय, विशाल ददलानी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना आपने एंजॉय किया श्रोताओं। और आज का डे भी बहुत स्पेशल है, बहुत ही खास है, क्योंकि पहली बात तो रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है और समय की बात करूं तो 5:35 हो चुके हैं और आज की तारीख 21 सितंबर, और 21 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टी डे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आज टी डे मनाया जाता है, यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है। और सच बताइए, हमारे यहाँ चाय सिर्फ पिया नहीं जाता, चाय तो मूड ठीक करने का बहाना होता है। सुबह उठते ही चाय, ऑफिस में काम ज्यादा कर लिया तो चाय चाहिए, दोस्त मिलने आए तो चाय बनती है एक कप, और शाम को मौसम थोड़ा और सुहाना हो जाए तो भैया बस पूछो मत, अभी चाय बनाती हूँ। कुल्हड़ वाली चाय चाहिए आपको या फिर कप वाली चाय चाहिए या फिर गिलास वाली चाहिए, वो आप बता सकते हैं इलायची अदरक कड़क चाय जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा, वही रेडियो पर मिलेगा जी, आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सही बता रही मैं। और आज का हमारा देखिए आपसे सवाल भी बड़ा ही प्यारा है, आपके हिसाब से एक कप चाय में कितने प्रतिशत चाय होती है और कितने प्रतिशत प्यार होता है। और साथ ही साथ अगर आपको भैया बोल दिया जाए कि चाय पीना है, मतलब आपसे ये क्वेश्चन है, मतलब टोटल मिला के कि आप पूरे दिन में कितने कप चाय पी सकते हैं, उसका आपने महसूस करके बताना है। देखिए अगर आप महसूस करके नहीं बताएंगे ना तो कल से मैं सही बता रही हूँ, चाय बिल्कुल अगर आप पियेंगे लेकिन मज़ा नहीं आएगा आपको, इसीलिए चुपचाप महसूस कर दीजिएगा कि आप पूरे दिन में कितने कप चाय पी सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर मैसेज वॉइस जो भी करना चाहे वॉइस मैसेज आप कर सकते हैं कि आपको दिन में यानी कि कितने कप आप चाय पी सकते हैं। मैं बताती हूँ, और चाय को क्या नाम देंगे आप,

आपने बताना है जी भैया मैसेज करके कि चाय जो बनाती वो पसंद है या फिर पूरे दिन में आप कितने चाय पी सकते हैं। जल्दी मैसेज करिए, नंबर है 9837896896। चलिए फिलहाल एक चाय के लिए आपको गाना हम सुनवाते हैं, बहुत ही शानदार वाला।

0: My father was suffered from aplastic anemia.
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस क्यू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: जी गज वाली इवनिंग है, आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। और समय की बात करूं तो 5:45 हो चुके हैं। और साथ ही साथ भैया वेदर की बात कर लेते हैं, तो अपने मुरादाबाद की अगर वेदर की बात करूं तो 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि 21 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में यानी कि बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। और ये संभावना यानी कि 85% यूपी के कई राज्यों में, साथ ही साथ आंधी तूफान और हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार में भी बारिश बताई जा रही है। फिलहाल भैया बिहार की हालत तो स्थिति बहुत ही खराब है इस टाइम, क्योंकि वहां पर बाढ़ इतना ज़्यादा आ गया है ना कि बहुत से अपने घरों से बेघर हो गए हैं और समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार करा तो करा क्या जाए। ऊपर से फसलें कटाई मांग रही है और इस सिचुएशन में अगर इस टाइम बारिश आती है तो फसलों की तो ऐसी नुकसान होएगी होएगी, मतलब जो किसान दिन रात मेहनत करता है और फसलें यानी कि जो धान है, बहुतों खेतों में धान कट गए हैं, बहुत तो अभी पके नहीं हुए हैं, जो कहते हैं कि खाने वाले जो धान होते हैं, धान बहुत तरह के होते हैं भैया, उनके नाम अलग अलग होते हैं, 21, 22, 32 चावल के जो नाम होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अभी टाइम है और इस ऐसे हालत में अगर बारिश आ गई तो सोचिए फसलों का क्या होएगा, सारी फसलें खराब हो जाएंगी और ख़राब होने के बाद किसान की जो मेहनत है वो ख़राब हो जाती है। हम अक्सर यही कहते हैं कि नहीं यार मौसम सही हो रहा है, लेकिन हमसे पूछ के और किसान के दिल से पूछ कर देखिए क्या बीतती है उनके ऊपर। और साथ ही साथ आज बॉलीवुड एक्टर की बर्थडे भी है, जिसका मैं अभी गाना प्ले करूंगी, बस आप गैस करके बता दीजिएगा। जो मैं गाना प्ले कर रही हूँ ना, इस गाने में जो एक्टर है आज, इनका बर्थडे है, आखिरकार ये कौन सी एक्टर है वो आप बताइएगा। लेकिन साथ ही साथ मैसेज भी हैं, वो भी शामिल कर लेते हैं। ये मैसेज आता है हमारे पास मोहम्मद सफी जी कनेक्ट होते हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी। आज का इवनिंग मस्ती शो की शुरुआत के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ आपकी आवाज़ इवनिंग मस्ती में जुड़ना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी सादगी और प्रोफेशनली अंदाज को हमेशा पसंद करते हैं हम। ओके जी, उम्मीद है कि आप पंजाबी गानों के साथ साथ आज हरियाणवी गानों का भी तड़का लगा ही देंगे आज, तभी इवनिंग हमारी और भी मस्त हो जाएगी आपकी खूबसूरत आवाज के साथ। बिल्कुल जी, हम आपको डेफिनेटली कोशिश करेंगे हरियाणवी गाने भी सुनाने की। और साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूँ तो हेलो मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम पिंटू है और मैम चाय कई प्रकार की होती है, यानी कि एक ग्रीन टी, हर्बल टी, ब्लैक टी, मिल्क टी। ओके, और मैम मैं तो बस चाय है ना, बस दो टाइम ही पीता हूँ, घर पर होता हूँ तो या बाहर हूँ, एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम। ओके जी, अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ सरोज जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि मैं मुझे कड़क वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, इलायची अदरक, मतलब इलायची एक टाइम के लिए ठीक है, लेकिन अदरक ना होना तो चाय का मजा नहीं आता है। तो जब तक अदरक चाय में ना डल जाए मजा ही नहीं आता है। मैं चाय नहीं पी पाती, तो मुझे कड़क और अदरक वाली चाय बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, अगले मैसेज की बात करूं तो रितु जी हमारे साथ कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनका कहना कि अगर चाय की बात करी है आपने तो मैं अभी राइट नाउ चाय पी रही हूं, और मुझे अदरक वाली प्लस इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो मसाले वाली चाय मुझे बेहद पसंद है। बिल्कुल जी, अच्छी बात है। और चाय मतलब आपने बोला था कि कितने कप पी सकते हो आप चाय, इनका कहना है कि मुझे 10 बार भी मिल जाना तो भी कम पड़ जाती है। अरे अरे अरे, इनको बोलते हैं असली चाय लवर। भैया ये असली चाय लवर जो 10 बार पीने के बाद भी कहती है अगर ऊपर और मिल जाए बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे जरूर मैसेज करके बताइए चाय के ऊपर, क्योंकि आज है इंटरनेशनल यानी कि नेशनल टी डे, तो आप पूरे दिन में कितने कप चाय पी सकते हैं, कितना पेशेंस है आपके अंदर चाय पीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करके बताइएगा। नंबर है 9837896896। चलिए फिलहाल बताइए आज किस एक्टर का बर्थडे है।

हाँ जी, गुड वाली इवनिंग है जी। अर्जेंटीना के साथ आप कनेक्ट है। समय की बात करूँ तो 5:56 हो चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है 1 अक्टूबर से एलपीजी जो सिलेंडर आप यूज करते हैं जिस घर में, यानी कि जो नया नियम है वो फिर से शुरू होने वाला है। और मुझे एक बात समझ नहीं आता है ना कि जब भी देखा जाए 1 तारीख कब आती है, कब चली जाती है, कब ये साल खत्म हो जाएगा, कतई नहीं पता चला। यानी कि ये जो 2026 है ना, वो कैसे हाथों से रेत की तरफ फिसल गए भैया, बिल्कुल भी नहीं पता चला। मतलब मैं अभी तक ये सोच रही थी अभी तो दिवाली खत्म हुई थी, फिर से दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है। यानी कि अब भैया शॉपिंग थोड़ा जोरों शोरों से है, लेकिन फिलहाल हमारी जो प्यारी प्रिटी विमेन है वो करवा चौथ की तैयारियों में लगी हुई है इस टाइम। और ये जो त्यौहार होता है ना, हर कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि तैयारियाँ बहुत पहले से, और एक दिन में त्यौहार कैसे ख़त्म हो जाता है। वैसे ही 1 तारीख है कि कब आती है कब चली जाती है पता नहीं चलता है। और जब भी 1 तारीख आती है हर किसी के दिलों की जो धड़कन है ना, धक धक, यानी कि 440 वोल्ट का झटका जरूर देकर जाती है। कुछ चीज़ें महंगी होती है तो कुछ चीज़ें थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन कभी सस्ती नहीं होती, कभी वो इतनी महंगी हो जाती है कि हाथ से संभले नहीं संभलती है। फिलहाल मैं कहती हूँ क्या संभल सकती है जी, अभी बताती हूँ मैं आपको। गाना बहुत ही शानदार है, इस गाने को एंजॉय करिए, लौट कर आते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषधि सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50

0: लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने आज नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में निगम की भूमिका सदैव अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने 3 पदक जीते। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं इसी प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
4: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
3: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
4: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में, राणा जी की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। और समय की बात करूँ तो 6:21 हो चुके हैं। और श्रोता और साथ ही साथ देखिए, मैच देखने के दीवाने हम सभी होते हैं, चाहे विमेन के हो चाहे मेन क्रिकेटर टीम का हो, हर कोई मैच देखने के बड़े धुरंधर और बहुत ही दीवाने होते हैं, सब समय निकाल लेते ही हैं मैच देखने के लिए। तो साथ ही साथ यानी कि वनडे सीजन के लिए भारतीय टीम का ऐलान, यानी कि ODI सीजन यानी कि तीसरे मैच मुकाबले के लिए अब इंडिया टीम है वो रेडी हो गई है, जो कि इसकी शुरुआत यानी कि 27 सितंबर से शुरू होने वाला है। तीसरे मुकाबले के लिए जो हमारी टीम इंडिया है वो भैया कलेक्ट हो गई है, यानी कि कौन कौन सी टीम है जो इस ODI मैच में खेलने वाले हैं वो सब एक साथ अब डिसाइड हो गया है। और साथ ही साथ ये 27 सितंबर से मैच शुरू होने वाला है ODI का। तो यानी कि अब हम बात कर लेते हैं, देखिए कड़क सवाल तो आप सभी के साथ लेकर आएंगे ही, लेकिन कुछ मैसेज हैं। रीना जी, वैसे तो हम चाय पीते नहीं हैं, लेकिन गुड़ वाली चाय, इलायची वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। ये कनेक्ट होते हैं विक्की सागर जी, गुड इवनिंग पहुंचाते, वेरी गुड इवनिंग जी। और ये सर्दियों में खासकर चाय पीते हैं, गुड़ और इलायची वाली। फिलहाल मेरे पास ये कॉफ़ी भेज रहे हैं, अब बताइए, मुझे कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं व्हाट्सएप से निकाल के पी नहीं सकती हूँ। बस सर, ये गलत काम किया आपने। अगले मैसेज की बात करूँ तो हमारे साथ कनेक्ट होती है बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, एंड ये बोलती है प्यारी प्यारी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। विवेक जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, इवनिंग पहुंचाते, वेरी इवनिंग जी। सुहानी जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, गुड इवनिंग के साथ। और साथ ही साथ इनका कहना है कि मैम चाय लवर में बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन ठंड में मेरी चाय की जो लिमिट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि दिन में जब थोड़ा सा भी ठंड के टाइम अगर मुझे मतलब खाना कम लेकिन चाय ज़्यादा पीती हूँ, लेकिन इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए जी, गलत बात है। और चाय भाई कुछ भी हो जाए, जो चाय लवर होते हैं ना, कुछ भी कर लो वो नहीं छोड़ने वाले भैया, वो तो कहते भाई कुछ भी हो जाए हम तो चाय पियेंगे ही पियेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो भैया।

तो अब देखिए जो जो चाय लवर है क्या ही कह सकते हैं, फिलहाल एक गाना प्ले करते हैं। ठीक है जी, बने रही आरजे रीना के साथ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
0: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
1: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आज रीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 6:33 हो चुके हैं और इसी बीच आज रीना आप सभी के लिए लेकर आ गई है कड़क म्यूजिक, जिसको आपने सुनना है और आसानी से आप इस गाने को समझ भी लेंगे, क्योंकि ये भैया आज उनका मैं गाने प्ले कर रही हूँ जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे। बट गाने का नाम आपने बताना है, महसूस करके कि आखिर का जो म्यूजिक प्ले करूंगी गाने का राइट नेम क्या है। चलिए ध्यान से सुनिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हाँ जी, मैं क्या कितने ध्यान है जी, जल्दी जल्दी बताइए। व्हाट्सएप मैसेज करना है आपने, वॉइस मैसेज भेजना है कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है गाने का क्या नाम है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896 पर आप आसानी से मैसेज कर सकते हैं। वंस अगेन एक बार और रिपीट करते हैं कि आखिरकार ये जो म्यूजिक है भैया राइट नेम क्या है गाने का। हाँ जी, जल्दी सोचिए और मैसेज करिए। और फिलहाल के लिए एक धमाकेदार और गाना।

हाय हाय क्या हां जी ऑन द वे है तो मैं कहती हूँ रेडियो को

0: वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, तभी आनंद आने वाला है आप सभी को। और आज साथ ही साथ आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:44 हो चुके हैं भैया। समय पूरी अपनी कगार पर है, लेकिन आपने लेट नहीं होना है। आप जहाँ भी जा रहे हैं समय पर निकलिए। समय की अगर आप इज्जत करते तो समय दुगना आपकी इज्जत करता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि फेस्टिवल भैया अब शुरू हो चुके हैं, यानी कि छठ पूजा दिवाली की बात करूं तो अभी से ही जो ट्रेन की बुकिंग है भैया फुल ऑफ ऑन। और इसी चलते ये बताया जा रहा है कि देखिए हर छठ पूजा में बिहार से यहाँ कमाने के लिए आते हैं वो अपने घर जाते हैं, यानी कि शहर की जो गलियाँ हैं वो सुनी हो जाती है और गांव की जो रौनक है वो और भी खूबसूरत हो जाता है त्यौहार के समय, फेस्टिवल के समय, क्योंकि हर कोई अपने घर जाता है। और इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी उनके लिए, ताकि किसी भी प्रॉब्लम का उन्हें फेस ना करना पड़े और आसानी से अपने घर पहुंच सके। साथ ही साथ उनकी जो टिकट्स बुकिंग का टाइमिंग है, कब से जो न्यू जो और ट्रेनें स्पेशल चलाई जाएंगी, यानी कि कब से शुरू होने वाली है टिकट्स बुक करने के लिए, जैसे ही थोड़ा सी भनक मिलता है मैं आप सभी तक पहुंचा दूंगी। फिलहाल यानी कि उत्तराखंड का दूसरा यात्रा शुरू हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपको। और जो आज मैंने आप सभी से कड़क म्यूज़िक पूछा है ना, बस उसका भी तो आंसर आपने पहुँचाना है हमारे पास। तो चलिए, तो आज हमारा जो कड़क म्यूजिक है वो आपने सुनना है। और क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना है जी, आराम से मैसेज करना है और क्या ही करना है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस गाने को एंजॉय करिएगा, सुनिएगा कि आखिर का म्यूजिक कौन सा है। चलिए फिलहाल प्ले करते हैं हम। हाँ जी, मैं कितने ध्यान है जी, जल्दी जल्दी सुनिए और मैसेज करिए। हमारा नंबर है व्हाट्सएप, यानी कि 9837896896। वन सेकेंड, एक बार और रिपीट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए भैया, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा उम्मीद है कि आप इस गाने को आसानी से पहचान गए हैं और मैसेज करने की देरी है। चलिए जी, सोचिए और मैसेज करिए आप।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM। सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
3: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
2: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त। मोहरा मूवी से आप ये गाना एंजॉय कर रहे हैं भैया उदित नारायण जी की आवाज। और समय की बात करूं तो 6:53 हो चुके हैं और साथ ही साथ देखिए अगर उत्तराखंड के चार धाम यात्रा आप करना चाहते हैं तो दूसरा चरण यानी कि शुरू हो चुका है 15 सितंबर से। जी आप बिल्कुल जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फैमिली वालों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, केदारनाथ के आप दर्शन कर सकते हैं और इसके लिए बस अपने फैमिली वालों के साथ जाइए और एंजॉय करके आइए। और साथ ही साथ आज का भैया जो कड़क सवाल मैंने कड़क म्यूजिक आप सभी से पूछा है ना, अब उसकी बारी है, अब सभी के मैसेज शामिल करने की बारी है, लेकिन उससे पहले एक बार और मौका मिलेगा आपको सोचने के लिए और मैसेज करने के लिए। तो चलिए पहले गाना सुनिए आप। हाँ जी यही वो गाना है जिसको आपने पहचानना है कि आखिरकार जो मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ गाने का क्या नाम है, क्योंकि आज इनका हैप्पी वाला बर्थडे भी है तो आप पहचान गए होंगे कि जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है गाने का क्या नाम है। चलिए वंस अगेन एक बार और रिपीट। हाँ जी सोचते रहिए और मैसेज करते रहिए, नंबर है 9837896896।

हम नहीं गए, हम भी यही है, हमारा दिल भी यही है। और आप सब भी रेडियो के साथ कनेक्ट हैं। समय की बात करूं तो 6:57 हो चुके हैं, 6:57 और चलिए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आज का कड़क म्यूजिक बहुत ही शानदार। अब देखना ये भैया कि किनका हमारे पास राइट मैसेज आता है। बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, ललिता कश्यप जी का कहना है कि राइट आंसर होता है कब से मेरे पीछे पड़ा है, कतई गलत है। अगले मैसेज की बात सागर जी का कहना है भैया दंगबंग गाना है ये, लेकिन आप गाने को पहचान नहीं पाए जी। इसकी बात करूं तो मेरे फोटो को सीने से यार, यानी कि मोहम्मद सफीर जी आज राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप बनते हैं आज इवनिंग मस्ती शो के विनर। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली जी, मेराज अंसारी, रीना जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आप जानकारी के साथ साथ बहुत अच्छे गाने भी प्ले करती हैं जो कि बेहद पसंद आता है, और आज धमाकेदार प्ले कर रही हैं आप गाने। ओके।

का भी राइट आंसर आता है गिन्ने, ये मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं। अब कोई फायदा नहीं है जी राइट आंसर पहुंचाने का, क्योंकि अब तो गाना ही मैंने प्ले कर दिया है। और इसी के साथ साथ अगले मैसेज की बात करूं तो रूपाली जी कनेक्ट होती हैं मुरादाबाद से, और ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो दीपक जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि मैम मैं चाय के बारे में मैंने पूछा था तो इनको इलायची वाली चाय बेहद पसंद है, और ये दिन में कम से कम 3 बार चाय पीते हैं, एक सुबह, दोपहर, शाम को। सीमा जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से राइट आंसर के साथ, और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत।

गुड इवनिंग मैम, जरीफ बाबूजी कनेक्ट होते हैं MBD से। चलिए इसी के साथ बाय, अपना ध्यान रखिए, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह करेंगे ढेर सारी।

0: 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भेरुंदा तहसील के गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1,00,000 रूपये और बहरा खेड़ी गांव के दूसरे गोदाम से 60,000 रूपये की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज

0: भारत ने तीन पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इससे पहले कल एला विनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए, जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। वहीं कबड्डी में पुरुष टीम ने जापान को और महिला टीम ने बांग्लादेश को पराजित किया। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Hey, you're a tune into FM Muradabad, 89.6 FM.
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से
1: नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था।
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेंटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़ या चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत मेरठ विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना आई है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नांगटाई। नांगटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे को और स्टार्टअप को और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें हर चीज सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंट सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज है, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती है उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नान कटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैश्य स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ पे, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहां पर जाके बोली एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नांगटाई से खानी है या

0: महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग।
1: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
0: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं मेरठ की विरासत है।
0: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
1: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: नमस्ते आदाब, वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम विशेष बातचीत में। दोस्तों, इस दिन को मनाने की खास वजह लोगों के बीच ब्रेन ट्यूमर को लेकर जागरूकता फैलाना है, जिससे कि लोगों को इस बीमारी की पहचान हो सके और समय रहते वो अपना इलाज करा सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिवस की मनाने की शुरुआत जो है वो साल 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा की गई थी, और आज के इस स्पेशल डे पर आगे की बातचीत हम जारी करेंगे ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनीत अग्रवाल जी के साथ, जो कि एक न्यूरो सर्जन है। एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में आपका वेलकम है सर।
3: नमस्कार
2: जी। नमस्ते सर, क्योंकि मैंने आपका नाम पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं को एक बार अपने बारे में जानकारी दें।
3: मैं डॉक्टर मोनीत अग्रवाल, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और इस समय बीएमसी हॉस्पिटल मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। मेरी ट्रेनिंग जापान से हुई है और उसके बाद मैंने मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, मेदांता गुड़गांव में, मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज में, फिर मुरादाबाद में साई हॉस्पिटल में रहा हूँ और अब मैं बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरी रुचि अगर ऑपरेशन में देखा जाए, ब्रेन में देखा जाए, तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी या फिर स्पाइन सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी, एनोरिज्म सर्जरी, इनमें है। और अमूमन देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर्स अब दिनों रात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
2: जी जी, तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर क्या है?
3: ट्यूमर, जब भी हम ट्यूमर की बात करते हैं, इसका मतलब है अनियंत्रित ग्रोथ होना, वही ट्यूमर होता है। ऐसे ही ब्रेन में है, जब ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो अनियंत्रित कंट्रोल्ड होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्योंकि ब्रेन हमारा स्कल में, मतलब हड्डी के अंदर बंद है, एक बंद डिब्बे में है, तो जब उसमें चीज बढ़ती है तो प्रेशर डालती है, जिसके वजह से हमारे कुछ कार्य कम होने शुरू हो जाते हैं हमारे, और हमारी याददाश्त कंट्रोल होना, सब चीजें बहुत कम हो जाती हैं। तो एक प्रेशर इफेक्ट होता है और ब्रेन का हर हिस्सा एक काम करता है अपना, अगर उसने उस काम को छोड़ दिया तो फिर हमें वो चीज सामने दिखाई देती है जो उसे सिम्टम्स की तरह हमें सामने आता है। तो इसीलिए ब्रेन ट्यूमर अपरामयक बहुत घातक है, क्योंकि वो तेजी से बढ़ता है और हमें मानसिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाता है।
2: ओके, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर होने की कोई निर्धारित उम्र है या किसी भी उम्र में हो जाता है?
3: ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, ये किसी उम्र में हो जाता है, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक समय पाया जाता है। हर उम्र में इसके अलग अलग टाइप्स हैं जो चीज पाई जाती है। बच्चों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बड़ों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं।
2: अच्छा सर, इसका कोई विशेष कारण?
3: अमूमन तो इसको जीन्स में बदलाव या म्यूटेशन ही देखा गया है, मोस्ट कॉमन कारण वही है। लेकिन अब हम कुछ टाइम से देखते हैं कि रेडिएशंस, ये एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी मरीज के बहुत ज्यादा सीटी स्कैन हो, एक्सरेज हो, या वो रेडिएशंस के आसपास रहता हो, जैसे आजकल मोबाइल यूज करना, ये अपने आप में देखा गया है कि एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है ब्रेन ट्यूमर होने का। ये पाया गया है कि जहाँ टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल के, वहाँ के आसपास के लोगों में इसकी संख्या बड़ी है। कुछ सालों में इस चीज को पाया गया है, तो मुझे लगता है कि रेडिएशन से बच के रहना बहुत जरूरी है और व्यायाम करना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी रोकथाम कर सकें।
2: जी, तो आज जैसा कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, और इस पर हम आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ब्रेन ट्यूमर कितने प्रतिशत लोगों में पाई जाती है?
3: अगर हम पूरे विश्व की, वर्ल्ड की बात करें, तो अमूमन ये देखा गया है कि ये अमूमन 1 लाख में से 11 लोग जो हैं वो इस बीमारी से प्रभावित हैं, जो अपने में बहुत बड़ी संख्या है। और इंडिया में इसे पाया गया है कि करीब अमूमन 28,000 लोग इस बीमारी से हर वर्ष ग्रसित होते हैं और जिनमें 24,000 लोगों की डेथ होती है। ब्रेन ट्यूमर सबसे खतरनाक ट्यूमर में से है। आप सोचें कि पूरा हमारा शरीर जो है वो, हमारा हर चीज जो है हमारे ब्रेन से काम करती है, अगर वहीं का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, तेजी से ग्रो कर रहा है, तो खतरनाक है। इवन अब इसे कई जगह तो स्किन के ट्यूमर से भी ऊपर पाया गया है। इंडिया में सबसे कॉमन जो हम मानते हैं माउथ का कैंसर मानते हैं, अब उसके बाद इसका नंबर आना शुरू हो गया है।
2: तो संख्या बहुत बड़ी है जैसा कि आप बता रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें, बस ऐसी हमारी कोशिश है और आप लोगों की कोशिशें तो लगातार जारी हैं। अगला सवाल ये है कि महिला या पुरुष कौन सी कैटेगरी में ब्रेन ट्यूमर ज्यादातर शिकायतें पाई जाती हैं?
3: इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि चीज महिला में या पुरुष में ज्यादा पाई जाती है। अमूमन बर्दल हाँ, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स चेंज हो जाते हैं, जैसे मेनिन्जियोमास टाइप ट्यूमर है जो कि फीमेल्स में या महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, और ग्लायोमास है जो पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये ट्यूमर है ये महिलाओं में ज्यादा रहेगा या पुरुषों में ज्यादा रहेगा या बच्चों में ज्यादा रहेगा, ये अलग अलग है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज।
2: अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी कि ब्रेन ट्यूमर के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, तो कुछ नाम बता दीजिए।
3: जैसे मैंने बताया मेनिन्जियोमास हैं, ग्लायोमास हैं, न्यूरोमास हैं, शोनोमास हैं, मेटास्टेसिस हैं, इस तरह से अत्यंत मेनिन्जियोमास हैं, मेनिन्जियोब्लास्टोमास हैं, रिनोफेरिंजियोमास हैं, इस तरह के कई ट्यूमर्स हैं। शायद इसका हमारे श्रोताओं को इतना ज्ञान की जरूरत नहीं होगी लेकिन उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज बढ़ती जा रही है और जिसका रोकथाम हो या जैसी पता चले उसका तुरंत इलाज हो।
2: जी, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही पता चले इसका तुरंत इलाज हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, लोग पहचाने कैसे?
3: देखिए, इसके लक्षण बहुत आम लक्षणों में से है। आपको सरदर्द होता है, रोज होता है लोगों को सरदर्द, तो इसका एक बहुत बड़ा लक्षण सरदर्द है। उल्टी आना है, घबराहट होना है, चक्कर आना है, और याददाश्त कम होना है, हाथ पैरों का कम मूवमेंट होना है, कम दिखाई देना है, बोलने में दिक्कत आना है, मूड का टेढ़ा होना है, इस तरह कई लक्षण हैं जो हम ब्रेन ट्यूमर में भी देखते हैं, और ये हमें कई और बीमारियों में दिखते हैं। ये एक डॉक्टर ही आपको, एक न्यूरोसर्जन ही आपको अच्छी तरह बता पाएगा कि ये चीज किस सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हैं, ये ब्रेन ट्यूमर कैटेगरी में बैठते हैं या नहीं बैठते। पर जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखाई दे, आपको मेनली उल्टियाँ, अगर सर में दर्द उल्टियाँ बहुत हो रही हैं, तो आप तुरंत किसी न्यूरोसर्जन को दिखाएं, क्योंकि एक चांस है कि ब्रेन ट्यूमर ना हो।
2: जी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और लक्षण तो आपने बताए, हम उम्मीद करते हैं श्रोताओं को समझ में आई होगी, और अगली बार से अगर ऐसे लक्षण उनको दिखाई देंगे तो जरूर वो जाँच कराएंगे जाके हॉस्पिटल में। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जैसा कि बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
3: देखिए, ब्रेन ट्यूमर से बचना, क्योंकि ये मेनली जीन्स म्यूटेशन की वजह से ज्यादा होता है, तो इसलिए बचना तो मैं कहूंगा कि इतना नहीं है, क्योंकि ये तो जेनेटिक ही होना है चीज। लेकिन अभी भी मोबाइल का यूज कम करें, पहली चीज, रेडिएशन से दूर रहें, फिर अल्कोहल का या स्मोकिंग का सेवन कम करें, क्योंकि अगर कुछ होता भी है तो हमारी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो उसे फाइट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप रहती है, जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप कम हो जाती है तो ये सब चीजें बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, और कोशिश करें कि मोबाइल का यूज कम करें और रेडिएशन से थोड़ा दूर रहें, सही नींद लें और व्यायाम करते रहें, वो बहुत जरूरी है इसके अंदर।
2: क्या बात है, तो उम्मीद है दोस्त इस चीज का पालन जरूर करेंगे जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। अगला सवाल ये बता दीजिए, इस बीमारी का उपचार क्या है?
3: देखिए, सबसे पहला तो हमें इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जो पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो न्यूरोसर्जन कर सकता है आपका, उसके बाद सीटी स्कैन जो सबसे पहले डायग्नोसिस होती है, फिर एमआरआई जो हमें और अच्छी तरह बता पाती है, फिर एंजियोग्राफी है, पेट सीटी स्कैन है, कई तरह के और हमें जांचें हैं जो हम करके पता लगाएं कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कितना नुकसान पहुंचा रखा है, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब इनका पता चलेगा तभी इसका प्रॉब्लम इलाज कर पाएंगे। अब हम इलाज की बात करते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा इलाज, सबसे अच्छा इलाज तो सर्जरी ही है, पर अब कुछ नई पद्धति भी आई है, जैसे हम गामा नाइफ कर सकते हैं, मतलब हम रेडिएशन को, किरणों को एक तीव्र गति से एक पॉइंट पर भेजें, तो उस एरिया को वहाँ पे छोटा कर सकता है, जला जा सकता है, सो उसे हम रोकथाम कर सकते हैं। इसी में आगे डेवलप हुआ है साइबर नाइफ जो कर सकते हैं, जो कि ज्यादा एडवांस है गामा नाइफ से भी। नाइफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे कट कर रहे हैं उसको, इसीलिए हम उसे नाइफ वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। और अगर हम ये करते हैं तो हम उस ट्यूमर की रोकथाम कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं उसकी। अब रोबोटिक सर्जरी का भी इसके अंदर धीरे धीरे रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
2: जी जी जी, तो बहुत सारे आपने उपचार बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं अभी, तो यही जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर को लेके वहाँ पे पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं?
3: वहाँ बहुत उत्तम फैसिलिटीज हैं, हम काफी ब्रेन ट्यूमर्स ऑपरेट करते हैं, हमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक हॉस्पिटल में चाहिए होती हैं, एक एडवांस सेंटर में चाहिए होती हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, और पेशेंट्स के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं हमारे। और इस चीज है कि जो भी फैसिलिटीज आपको चाहिए वो सारी हैं, आईसीयू, ओटी, ट्रेन्ड स्टाफ, सब कुछ वहाँ पे मौजूद है, सब इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, तो वहाँ आपको किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: सर, इस बीमारी को लेके एक छोटा सा मैसेज जो हमारे पब्लिक को देना चाहते हैं आप?
3: मैं अपनी जनता को कहना चाहूँगा कि जब भी उनको सर में दर्द हो, उल्टी लगे, या उनमें जरा भी घबराहट हो और उनको लगे कि कुछ अमूमन अलग चीज हो रही है, उनसे जो रूटीन करते हैं उससे कुछ अलग हो रहा है, वह हाथ पर काम कम कर रहे हैं या आंखों से दिखना कुछ कम हुआ है, तो तुरंत उसको कभी भी देर ना करें, उसे फर्स्ट वार्निंग साइन समझें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अमूमन कहते हैं कि एक सर में दर्द हुआ, हमने गोली खा ली, दर्द की गोली खा ली, दर्द निवारक दवा ले ली, दर्द ठीक हो गया, उल्टी गोली खा ली, ठीक हो गया वो चीज, पर अंदर अंदर वो पनप रहा होता है। और आप समझिए, बहुत खतरनाक बीमारी है, जब 28,000 लोग साल के इसे ग्रसित होते हैं और 24,000 मर जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है, और इसे जितनी जल्दी रोकेंगे उतनी जल्दी फायदा होगा मरीज को, सर्जन को भी ऑपरेशन करने में आसानी है और ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लेट करेंगे तो ऑपरेट के बाद ही ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है इसका। और ऐसी बीमारी और कई ट्यूमर्स तो जो बेनाइन होते हैं, अगर हमने निकाल दिया पूरा तो आपकी लाइफ नॉर्मल है, तो जितनी जल्दी उसे करेंगे उतना अच्छा है। तो मेरा मानना है कि जरा भी आपको सिम्टम लगे या एक साइन दिखे, आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, जिससे कि आपकी जिंदगी बचाई जा सके।
2: ये थे हमारे साथ बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनित अग्रवाल जी। बहुत ही कीमती वक्त निकाला इन्होंने हमारे पब्लिक को, ये एक छोटा मैसेज दिया जिससे लोग जागरूक हो सके और समय रहते अपना इलाज करा सके। एफएम मुरादाबाद की टीम आपका दिल से अभिवादन करती है, साथ ही आप हमारी जनता के लिए इतनी निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।
3: धन्यवाद।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: आज डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
4: भाई, RBI कहता है BSBD अकाउंट, मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। दिल्ली उच्च न्यायालय में 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन कार्यक्रम में सम्मानित करेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज द्विवेदी ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के चेयरमैन पद की शपथ ली और दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता, अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को न्यायाधीश तथा संजय शर्मा, भरत पाराशर, आदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अपर न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली की जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। शपथ ग्रहण समारोह उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के बाद 19 सितम्बर को इन 7 की नियुक्ति की घोषणा की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज द्विवेदी ने आज नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC के चेयरमैन पद की शपथ ली। परिषद की बैठक के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री और परिषद की बैठक के पीठासीन अधिकारी प्रवेश साहिब सिंह ने शपथ दिलाई। नगरपालिका ने कहा कि ये अवसर NDMC के नेतृत्व में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इसमें कुशल नागरिक सेवाओं, नागरिक केंद्रित प्रशासन और नई दिल्ली के विकास पर निरंतर जोर दिया जाएगा। दिल्ली भाजपा ने आज एक प्रदेश संयोजक और 3 प्रदेश सह संयोजक के नामों की घोषणा की है। पार्टी के अनुसार महेंद्र नागपाल राजधानी में पार्टी के संयोजक होंगे। इसके साथ ही मीरा अग्रवाल, कैलाश सांकला और रोशन कंसल को प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज जनता दर्शन में लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि संवाद के दौरान उन्होंने नागरिकों की बात को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि जनता की सेवा और उनकी समस्याओं का समाधान ही सरकार का संकल्प है। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत इस बुधवार राजधानी के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन नामक कार्यक्रम में सम्मानित करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बच्चों और महिलाओं और परिवारों तक सरकार की सेवाएं पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
6: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
7: विच विल मेक अ बिग चेंज इन टाइम्स टू कम।
5: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
6: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
7: विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली वासी इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण solar.dilli.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं। रिपोर्ट।
8: पोर्टल पर सोलर के लिए आवेदन आज से शुरू हो गया है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उपभोक्ता पोर्टल पर अपना CA नंबर दर्ज कर आवश्यक जानकारी भरेंगे, अपनी सहमति देंगे और इसके बाद संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि उपभोक्ता आसानी से पंजीकरण कर सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें 3 किलोवाट तक का सोलर रूफटॉप सरकार बिना किसी लागत के लगा कर देगी। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट से अधिक के सोलर रूफटॉप पर केंद्र सरकार 78,000 रुपए और दिल्ली सरकार 78,000 रुपए की सहायता देगी।
9: दिल्ली के उपभोक्ता 400 यूनिट के ऊपर की कैटेगरी में आते हैं और 3 किलोवाट से ऊपर का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार पूरी सहायता देगी, जिसमें 78,000 जो रुपीस है वो केंद्र सरकार सब्सिडी देती है और हमने भी केंद्र सरकार जितना पैसा दे रही है उतना दिल्ली राज्य की ओर से भी 78,000 हम देंगे।
8: दिल्ली सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक दिल्ली के 230,000 घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्लीवासी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे एक और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर परिवारों को बिजली के खर्च में बचत करने का अवसर मिलेगा। रिशु जायसवाल के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
5: दिल्ली परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान श्री सिंह ने कहा कि बस डिपो और चार्जिंग ढांचा विकसित किया जा रहा है ताकि नई इलेक्ट्रिक बसों को बिना किसी देरी के सुचारू रूप से राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतारा जा सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य साफ सुथरी और ग्रीन क्लीन दिल्ली का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजधानी में 40 बस डिपो से लगभग 5,088 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इसके अलावा 3 और नए बस डिपो में इलेक्ट्रिसिटी चार्जर लगाने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार राजधानी के दौराला और झुलझुली में भी 2 नए बस डिपो बना रही है, जिनकी क्षमता 250 और 500 बसों की है। इससे दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को राहत मिलेगी और वे दिल्ली की मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने रेलवे स्टेशनों, कार्यस्थलों और रेलवे आवासीय कॉलोनियों में जलापूर्ति प्रणालियों के व्यापक उन्नयन के लिए एक विशेष अभियान प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत जल भंडारण और फिल्ट्रेशन टैंकों की व्यापक सफाई तथा अवसंरचना उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश श्रमण त्रिपाठी ने कहा कि सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA नई दिल्ली में गुरुवार से शनिवार तक नदी उत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगी। इस वर्ष का उत्सव यमुना नदी पर केंद्रित है। इसमें यमुना को न केवल जीवन देने वाली नदी के रूप में बल्कि यादों, संस्कृति, इतिहास और कल्पना की एक जीवंत धारा के रूप में भी देखा जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की। भटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
10: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं, हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, जब जुल्म किसी का चलता है ये जुल्म का सूरज लाग चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम MCD ने आज एक विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत सभी 12 जोन में 44 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जिन इलाकों में आज इस अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई उसमें गांधीनगर, मंडावली, फजलपुर, न्यू अशोकनगर, ईस्ट विनोद नगर, नारायणा, न्यू मोतीनगर, इंद्रपुरी और शालीमार बाग जैसे इलाके शामिल हैं। निगम ने कहा कि अनधिकृत निर्माण और भवन मानदंडों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है।
11: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 3 साल के तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
5: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई EPFO वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप पर 9289094044 पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले हिमांशु ढिल्लो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले रुद्रांश बालासाहेब पाटिल को भी बधाई दी है। श्री मोदी ने पूरी प्रतियोगिता के दौरान उनके फोकस और अनुशासन की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एशियन गेम्स 2026 में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश बालासाहेब पाटिल और पार्थ राकेश माने और हिमांशु ढिल्लो को बधाई दी है। उन्होंने भविष्य में इन खिलाड़ियों के लिए और भी जीत की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री ने सुचिका तारियाल को महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर भी बधाई दी है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि MMA में ये भारत के लिए पहला एशियन गेम्स पदक है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय में 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन कार्यक्रम में सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनीष द्विवेदी ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद की शपथ ली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
13: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
14: अरे वही अपना 60 रुपया।
13: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
14: तो देख, दो तरीके हैं। पहला आधी दाढ़ी करा ले।
13: और दूसरा?
14: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
13: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
14: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
15: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
16: हर लेन देन अब
17: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पर।

0: गुड इवनिंग एवरीवन, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, एक ऐसी चीज जो बहुत अहम लाइफ में, अगर वो ना हो तो लाइफ अधूरी लगती है। जी हाँ, पैसा आते ही कहाँ चला जा रहा है। और देखिए, अब पैसों की बात हुई है, शाम का समय भी है, मुझे पता है आप ऑफिस से घर जा रहे हैं और आज की बात ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, तो मैंने कहा क्यों ना आज इसी पर चर्चा की जाए। दोस्तों, जिसके बिना ना जिंदगी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो है पैसा। अब कमाई हर किसी की अलग अलग होती है, जरूरतें अलग अलग हैं और खर्च भी अलग अलग हैं, लेकिन एक बात शायद सबके साथ एक कॉमन है, पैसा हाथ में आते ही कुछ ना कुछ खर्च होने लगता है। कभी घर का सामान, कभी बाहर का खाना, कभी शॉपिंग और कभी कोई अचानक आई जरूरत। और फिर महीने की आखिर में हम सोचते हैं कि आखिर पैसे गए कहाँ। तो आज की शाम इसी इंटरेस्टिंग बात के साथ हम आपके साथ कनेक्ट हैं और मेरे साथ में यहाँ पर रीना भी है। हाय रीना, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। कैसे आने बता दो मुझे।
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन तुम ये बताओ, अभी तो तुम गई थी स्टूडियो से, फिर आ गई हो, क्या बात
0: अरे
1: है?
0: क्या करूँ मैं, मेरा मन नहीं लगता ना हमारे श्रोताओं के बिना।
1: अच्छा, देखो मैं तो यही हूँ, लेकिन ये दोबारा आ गई है तो हम चलिए बहुत अच्छी बातें भी करेंगे, यानी कि पैसा आते ही कहाँ चला जाता है। महीने की सैलरी आने का इंतजार शायद हर नौकरी करने वाला करता है। सैलरी आते ही मन में कई सारे प्लान्स बनने लगते हैं, ये खरीदना है, वहां जाना है, घर के लिए ये सामान लेना है और थोड़ा पैसा बचाना भी है। लेकिन जैसे जैसे महीने का दिन गुजरते हैं, सैलरी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर महीने के आखिरी दिनों में हम अपने खर्चे का हिसाब लगाने लगते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? सैलरी आते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? घर का खर्चा निकालते हैं, शॉपिंग करते हैं या धीरे कुछ पैसा सेविंग में डाल देते हैं? आज इस खास मुद्दे पर हम बात करेंगे मैं और जी, तो बस बने रहिए आरजे रीना के साथ।
0: अच्छा रीना, मैं देखो आप हमारे श्रोताओं को बता रहे हो कि सबसे पहले पैसे आते हैं तो आप क्या करते हो, शॉपिंग करते हो, घर का सामान लाते हो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप क्या करती हो जब आपको सैलरी मिलती है सबसे पहले, बताओ बताओ, इतना मत मुस्कुराओ।
1: रूम रेंट।
0: हाय, ये तो मेरे साथ भी है यार, कॉमन है।
1: अक्सर जो घर से बाहर रहता है ना, उसके जहन में एक ही बात आती है, सबसे पहले रूम रेंट देना है,
0: लाइट
1: बिजली बिल देना है,
0: और बाकी शॉपिंग एंड घर के खर्चे वो तो दूर है, लेकिन ये दो चीज बहुत अहम होती है।
1: शॉपिंग तो मैं इतनी नहीं करती हूँ, लेकिन जो घर के सामान खत्म हुए होते हैं वो लेकर जरूर आते हैं।
0: हाँ, और पता है अब आपको जरूरत और शौक ये भी लाइफ में बहुत
1: इम्पोर्टेंट है।
0: हाँ, मोस्ट है। अब एक जरूरी सवाल, हम जो सामान खरीदते हैं उनमें से कितनी चीजें वास्तव में हमारी जरूरत होती है और कितनी सिर्फ हमारी शौक। मान लीजिए आपका फोन बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन बाजार में नया मॉडल आया, अब मन करता है कि पुराना फोन छोड़कर नया ले लेते हैं। इस तरह कपड़े, जूते या फिर घर का सामान भी हम कई बार जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, आखिर अपनी कमाई से अपनी पसंद पूरी करना भी जरूरी है, लेकिन अगर हर चाहत को जरूरत बना लिया जाए तो सेविंग मुश्किल हो जाती है। आपकी ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं? हाँ, बताइएगा जरूर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896 और अभी सुनते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर करते हैं आपसे ढेर सारी बातें।

0: रीना तुम्हें पता है आजकल ना शॉपिंग के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोबाइल उठाओ, एप्लीकेशन खोलो और कुछ ही में शॉपिंग शुरू। सबसे मजेदार बात तो तब होती है जब सामने लिखा आता है सेल डिस्काउंट लिमिटेड ऑफर। हमें लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन कई बार हम वो सामान भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। डिलीवरी आने के बाद सामान देखकर खुशी तो होती है, लेकिन महीने का बजट देखकर थोड़ा अफसोस भी होता है। बताइए, ऑनलाइन शॉपिंग ने आपकी सेविंग बढ़ाई है या फिर खर्च किया है? हाँ हाँ, बताओ बताओ। देखो, ऑनलाइन शॉपिंग बात अगर आई है ना, तो रीना का मुझे बहुत बार कॉल आता है। स्टूडियो में होती हूँ और ये कभी कभी बिजी होती है, तो मुझे बोलती है कि खुशी मेरा ना पार्सल आया है, प्लीज आप ले लेना बाहर से। भैया, लड़की इतने ऑनलाइन शॉपिंग करती है ना कि मैं इसके ऑर्डर ले लेके थक जाती हूँ। कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं ही रख लेती हूँ, पर अफसोस वो मेरी काम का नहीं है, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट यूज करती है ना वो मैं नहीं करती हूँ, और जो मैं करती हूँ वो ये यूज नहीं करती है।
1: ये होता है हर किसी का, बहुत ही रेयर होता है कि एक साथ अगर मैच हो जाए, अदरवाइज हर किसी का प्रोडक्ट अलग होता है। और बात की जाए चाय और छोटे छोटे खर्चे, देखो पैसे ज्यादा ना, मुझे नहीं लगता है कि हम बड़े सामान खरीदते उसमें खर्चे होते हैं, ये छोटी चीजों में ही बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं,
0: पता ही नहीं चलता यार।
1: हाँ, उसमें नहीं पता चलता है। एक तो आप हिसाब भी नहीं लगा पाते हो, 10 रुपए के 20 रुपए के, यार उसमें हिसाब लगाएगा तो कोई लगाएगा कैसे? मान लो दुकान से हमने 2000 का सामान लिया, तो वो तो हमें याद
0: पता
1: रहता है,
0: पता रहता है
1: कि हमने 2000 का सामान लिया है। लेकिन ये छोटे मोटे खर्चे इतना कौन याद रखेगा? लेकिन ये छोटे मोटे खर्चे ना बड़े खर्चे से ज्यादा खर्चे होते हैं। तो हम बात करेंगे, अक्सर बड़े खर्चे का हिसाब रखते हैं लेकिन छोटे छोटे खर्चों का नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह की चाय, शाम का स्नैक, बाहर का खाना, छोटी शॉपिंग या रास्ते में कुछ खरीद लेना हर बार छोटी लगती है, लेकिन अगर महीने भर के इन छोटे खर्चों को जोड़े तो शायद हमें पता चले कि काफी पैसा इन पर चला गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि छोटी खुशियां छोड़ देना चाहिए, बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपने खर्च का अंदाजा होना चाहिए। आज शाम एक काम कर लीजिए, सोचिए पिछले कुछ दिनों में आपने सबसे ज्यादा पैसा किस छोटे खर्चे पर लगाया है। अगर ये आपने हिसाब लगाना शुरू कर दिया तो आपको ये छोटे छोटे खर्चे ना बड़े खर्चों से ज्यादा लगेंगे। अब बात आती है घर घर की।
0: घर चलाना अपने आप में ना किसी मतलब मैनेजमेंट से कम नहीं है। महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और उसके साथ शुरू होता है पूरा हिसाब, राशन, बिजली, पानी, बच्चों की पढ़ाई, ट्रैवल, घर का सामान और बाकी जरूरतें। कई बार बजट बनाकर चलने के बावजूद अचानक कोई ऐसा खर्च आ जाता है जिसकी प्लानिंग नहीं होती है, ऐसे में सेविंग पीछे रह जाती है। इसीलिए घर का बजट बनाना सिर्फ खर्च कम करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि पैसा कहाँ और कितना जा रहा है, आपके घर में बजट कौन बनाता है और आप सबसे ज्यादा खर्च किस चीज पर करते हैं।
1: छोटे छोटे सामान लाने में मुझे याद है,
0: सब्जियां शॉपिंग करने में मैं बहुत पैसा खर्च करती हूँ। जब मैं सब्जी खरीदने जाती हूँ ना, तो मैं बता नहीं सकती एवरीवन आपको,
1: मतलब मैं बताती हूँ इसकी रियलिटी क्या है।
0: अगर मैं 200-300 भी लेकर जाऊंगी ना, तो उसमें से सिर्फ
1: इसकी आदत क्या है, ये एक बार सामान नहीं लेती है, कभी भी नहीं लेती है, छोटे छोटे सामान लेती रहती है। एक बार नहीं कि एक बार हम बजट पूरा कर लेते हैं, नहीं मैं तो आज अगर खाऊंगी तो आज ही लेकर आऊंगी।
0: हाँ, मैं ये करती हूँ यार, पर ये चीजें मुझे अभी अपनी ठीक करनी है।
1: हाँ, ये ठीक करनी भी चाहिए, क्योंकि देखो एक बार अगर हम सामान खरीद लेते हैं ना, तो हमारा मान लो महीने भर चल जाता है। लेकिन हम नहीं खरीदते तो महीने से डबल पैसे खर्च हो जाते हैं
0: और फिर ना उसे ना हमारा बजट भी नहीं बन पाता है। हमारी चीजें हमें नहीं पता कितना खर्च हो रहा है। अगर हम, आपने जैसे कहा कि एक बार अगर हम इकट्ठा सामान लेकर आ जाते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि अच्छा इतना महीने का हमारा राशन चल रहा है।
1: और तुम्हें पता भी चलता है कि इस महीने हमने 5000 खर्च करे हैं, तो अगले महीने भी हमें 5000, मतलब हर महीने 5000 खर्च होंगे हमारे सामान।
0: हाँ बिल्कुल,
1: एक वो हिसाब बन जाता है। लेकिन जब आप छोटे छोटे सामान लाते हो तो आप मैनेज नहीं कर पाते हो।
0: हाँ, तो अब एवरीवन, रीना कुल मिलाकर ये कहना चाहती है आपसे कि अगर आप भी छोटा छोटा सामान लेकर आते हैं ना, तो आप ऐसा ना करें, एक लिस्ट बना लीजिए जो आपको लगता है कि ये मेरी डेली बेस की काम आने वाली चीजें हैं, तो उसको आप इकट्ठा लेकर आ जाएं, राइट?
1: हाँ, और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है भैया, जो लड़के हैं, जो हमारे फादर साहब है, वो भी तो ऐसे ही करते हैं ना।
0: हाँ,
1: वो बार बार सामान नहीं लाते, गुस्सा करने लग जाते, बोलो अरे पापा ये भूल गई थी, तो पहले याद नहीं रखा जाना था तुम्हें क्या लाना है क्या नहीं लाना है, अब मैं नहीं लेके आऊंगा, जाओ तुम लेके आओ।
0: बताना चाहूंगी जैसे आजकल यू नो बॉय की बात अगर आपने की है, तो बाहर हॉस्टल में स्टडी की वजह से रहते हैं है ना, एंड कुछ जॉब की वजह से रहते हैं,
1: तो और बहुतों के पास जिम्मेदारियां रहती है,
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एग्जैक्टली, तो सारी चीजें होती है। और
1: एक बात तो है, बड़े बुजुर्ग जो है वो कभी भी हिसाब में कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने पास डायरी रखते हैं, वो चाहे 10 रुपए का भी सामान लेकर आते हैं ना तो अपने डायरी में नोट करते हैं,
0: और ये सबसे अच्छी बात है।
1: हाँ, तो उनको पता चलता है कि अच्छा इस बार महीने का खर्चा इतना हुआ है, अगली बार शायद इससे ज्यादा हो सकता है।
0: हाँ,
1: देखिए हम ये नहीं कहते कि छोटी छोटी जरूरतें पूरा ना करें, लेकिन उनको आप
0: अपने बजट के अनुसार करें।
1: हाँ बिल्कुल, ज्यादा खर्चे ना करें।
0: अभी क्या कई बार ऐसा भी होता है रीना कि जैसे हम शॉप मार्केट गए शॉपिंग करने के लिए या कुछ भी लेने के लिए, हम खरीदने के लिए गए तो हमें कुछ चीज पसंद आ गई, जबकि वो हमें पता है कि हमारे काम की नहीं आने वाली है, फिर भी हम खरीद लेते हैं कि चलो कम पैसों में मिल रही है ले लेते हैं,
1: और वो पछतावा होता है,
0: और फिर बाद में पछताते हैं कि यार हमने क्यों खरीद लिया।
1: ये रियलिटी है। तो चलिए फिलहाल हम बात करेंगे हम पहली कमाई, आज हर किसी को अपनी पहली कमाई याद आने वाली है।
0: बिल्कुल,
1: तो हम बात करेंगे पहली कमाई के बारे में।
0: जब आपकी आपको फर्स्ट सैलरी मिली थी तो आपने उस फर्स्ट सैलरी में से क्या किया था?
1: हाँ,
0: याद है आपको? हम याद दिलाने के लिए आए हैं।
1: पहली कमाई की खुशी शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत फाइनेंशियल मेमोरीज में से एक होती है। रकम छोटा हो या बड़ी, जब पहली बार अपने मेहनत के पैसे हाथ में आते हैं तो गर्व महसूस होता है।
0: हाँ।
1: किसी ने पहली सैलरी से माता पिता के लिए कुछ खरीदा, किसी ने दोस्तों को पार्टी दी, और किसी ने पैसे संभाल कर रखा। आपकी पहली कमाई से जुड़ी कोई भी यादें जरूरी होगी। आज शाम पुराने दिनों को याद करते हुए हमें बताइए आपकी पहली कमाई कितनी थी और आपने उस पैसे का सबसे इस्तेमाल किस चीज के लिए किया।
0: तो यही हम आपसे शुरुआत कर लेते हैं, अपने श्रोताओं से पूछ रहे हैं, तुम भी बताओ भाई तुमने अपनी फर्स्ट सैलरी में से क्या किया था। मैं अगर मेरी फर्स्ट सैलरी की बात करूँ तो पहले मैं यू नो ऑनलाइन वर्क किया करती थी, तो वहाँ पर मेरे को फर्स्ट सैलरी मिली और वो फर्स्ट सैलरी थी मेरी 58,000 मेरी सैलरी थी, और जो कि मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे बिलीव नहीं होता है अभी भी कि मेरी सैलरी इतनी थी। और

0: तो मतलब हाँ, कुछ काम था तो मैंने बोला कि चलो मैं लेके चलती, तो मैं लेके गई थी अपनी मम्मी को साला सर बालाजी घूमने।
1: वो मेमोरेबल टाइम देखो अभी भी हमें याद आ रहा है तो कितना हैप्पी हो रहे हैं। और सोचो रीना जो हमारी ऑडियंस है उनको भी अपनी फर्स्ट सैलरी याद आ गई है कि हमने अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या किया था, तो वो भी बड़ा खुश हो रहे हैं कि देखिए आपकी बातों से हमारी भी यादें पुरानी ताजा हो गई है। दोस्तों यही तो होता है रेडियो का प्यार जो दिल से दिल पहुंच ही जाता है।
0: और उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कंजूसी नहीं करनी है, मैसेज करके बताना है आपने पहली सैलरी आपने कहाँ खर्च किया था। हमारा नंबर है 9837896896 पर मैसेज करके बताना है, दिल पर हाथ रख के मैसेज करिएगा।
1: पर वो गाना मुझे याद आ रहा है
0: क्या,
1: हाथ रख दे
0: दिल पे जरा।
1: चलो दिल पे हाथ रखते हैं,
0: चलो ये गाना
1: अरे यार,
0: कर
1: तुम्हारा
0: देते
1: दिल तो
0: हैं।
1: बड़ी तेज से जोरों से धड़क रहा है भैया, हटा लेते हैं हाथ।
0: नहीं ये वो पता क्या बोले, लगे 440 वोल्ट
1: छूने
0: छूने से
1: से तेरे।
0: तेरे।
1: अरे वाह।
0: तो गाइज आप बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन से गाने सुनना है।
1: हाँ
0: बाकी हम यहाँ पर म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

तो ये शानदार से गाना हमने अभी आपको सुनवाया और हमने भी इंजॉय किया, आपने भी इंजॉय किया। देखिए शाम को शानदार बनाना खुशी और रीना का काम है, वो हम ही रहे हैं अपनी पूरी अपना पूरा 100% शिद्दत से दे रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात तो उसको मिलाने में लग जाती है। और अब हम बात करने वाले हैं रीना इमरजेंसी सेविंग की। दोस्तों बचत सिर्फ भविष्य के सपनों के लिए नहीं होती है बल्कि अचानक आने वाली जरूरतों के लिए भी बहुत काम आती है जिंदगी में। जिंदगी में ना कई बार

0: दोस्तों ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो हमने सोची भी नहीं होती हैं। पता नहीं चलता घर में अचानक कोई जरूरी सामान लेना पड़ जाए, यात्रा करनी पड़ जाए या कोई ऐसा खर्च आ जाए जिसकी हमने प्लानिंग नहीं की होती है। और अगर थोड़ी सेविंग अलग रखी हो तो ऐसे समय में परेशानी कम हो सकती है। इसीलिए सेविंग का एक हिस्सा इमरजेंसी के लिए रखना समझदारी हो सकता है। आपके हिसाब से हर महीने थोड़ी इमरजेंसी सेविंग रखना कितना जरूरी है? क्यों रीना, अभी देखो भगवान ना करे कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई हमारी हेल्थ इश्यू हो जाए, अगर हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हम राइट टाइम पे अपना इलाज ट्रीटमेंट करवा पाएंगे।
1: बिल्कुल, ये तो सही है। देखिए, हम अगर हम 10 रुपए भी कमा रहे हैं तो 5 रुपए सेविंग करिए, 5 रुपए खर्च करिए।
0: हाँ
1: कहने का मतलब है 10,000 भी अगर आप कमाते हैं तो 5,000 खर्च करिए, 5,000 अपने अकाउंट में रखिए, सेविंग रखिए उसको। सेविंग रखना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्या पता कब किस चीज के लिए आपको जरूरत पड़ जाए। और दूसरों से लेने से बजाय है कि जो आपके पास सेविंग है आप उसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं श्रोताओं, दिखावे के खर्चे। आजकल ये बहुत ट्रेंड पर है, दिखावे के खर्चे बहुत ज्यादा चालू हो गए भैया। दिखावे के खर्चे इतने होते हैं ना कि अगर इतने 2,500 का सामान लिया है तो मैं इसे दुगना सामान लेने वाली हूँ। कई बार खर्च हमारी जरूरत से नहीं बल्कि दूसरों को देख कर तय होता है। किसी के पास नया फोन आया है तो हमें भी चाहिए, कोई महंगे कपड़े पहन रहा है तो हमारा भी मन करता है, किसी ने नया बाइक लिया तो हमें भी लगता है कि नया बाइक ले ले। मतलब हर चीज है ना, हम दूसरों को देख कर ले लेते हैं जो हमारे अनयूज के लिए होते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर इंसान की इनकम, जरूरत और प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग तय करना सही नहीं है, इसीलिए अपनी कमाई के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना जरूरी है। क्या आपने कभी सिर्फ किसी को देखकर कोई चीज खरीदी है? खुशी, मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, तुमने गलती की हो कि नहीं यार इसने ये ड्रेस लिया है, या कोई भी सामान हो तो तुम्हारे मन में आया है?
0: नहीं, मैंने किसी को देखकर तो शॉपिंग नहीं की है कि उसने ये खरीदा तो मैं भी ये खरीदूंगी। पर हाँ, एक बार ही ऐसा हुआ था, राखी फेस्टिवल था, आई रिमेम्बर। तो मैं और मेरी बहन मार्केट गई शॉपिंग करने के लिए। नॉर्मल सामान हम खरीदने के लिए गए थे, पर हमें एक ड्रेस इतनी पसंद आ गई कि हमने उसको ले लिया,
1: अच्छा
0: दोनों ने कि चलो दोनों ले लेते हैं, और ड्रेस ले लिया। लेकिन बाद में हमने सोचा कि यार अभी तो हमें इस हैवी ड्रेस की नीड ही नहीं थी, क्योंकि कोई फंक्शन भी नहीं था, और आपको पता है कि हैवी ड्रेस ऐसे पहन भी नहीं सकते हैं, कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है तभी हम पहनते हैं। तब मैंने मुझे वहां पर बहुत अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
1: मैं बचपन में ये चीजें करती थी। हाँ, जब देखती थी ना, अच्छा आज स्कूल में ये ड्रेस पहन के, तो मैं भी घर जाके जिद करती थी
0: मम्मी मुझे ये वाला ड्रेस चाहिए।
1: लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और खुद के पैरों पर मैं खड़ी हुई हूँ, तो अब मुझे रियलाइज होता है कि उस टाइम की लाइफ और इस टाइम की लाइफ, अब मैं मतलब जो चीज मुझे जरूरत नहीं होती है मैं नहीं खरीदती, चाहे कुछ भी हो जाए।
0: रीना, कहते हैं ना कि शौक तो पापा के पैसों से ही पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरत ही पूरी हो पाती है।
1: सही बात है। चलिए आगे भी हम बात करेंगे। अब
0: दोस्तों के साथ शाम बिताने का मजा ही अलग है, चाय हो, खाना हो, मूवी हो या फिर कहीं घूमने का प्लान। दोस्तों के साथ समय जल्दी गुजर जाता है, क्यों रीना?
1: ये तो बिल्कुल सही कहा
0: हाँ,
1: तुमने।
0: लेकिन कई बार इस मस्ती में ना बजट भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है। दोस्त कहते हैं चल ना आज खर्च कर देते हैं, और हम भी सोचते हैं कि एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा। फर्क तो तब पता चलता है जब महीने का लास्ट डे आता है और जब हम बजट का हिसाब लगाते हैं। इसीलिए दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी फाइनेंशियल लिमिट को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी कहीं, अब नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हैं ना, तो हम मना नहीं कर रहे हैं जाइए, लेकिन अपने बजट के अनुसार खर्च कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों के साथ फ्लो फ्लो में कि यार चल मैं तुझे उस रेस्टोरेंट में खाना खिला, चल मैं वहां तुझे लेकर चल, उस चक्कर में फिर हमारा जो बजट है ना वो गड़बड़ा जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखो, बाकी लाइफ को एंजॉय करो यार, और क्या है जिंदगी में। लेकिन पैसा पैसा पैसा भी सेव करके रखना बहुत जरूरी है।
1: तो अब तुमने पैसों की बात करी ही है तो मैं पूछना चाहती हूँ, पैसे बचाना क्यों मुश्किल है? कई लोग कहते हैं हम पैसा बचाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हम बचत को महीने के अंत में बची हुई रकम मान लेते हैं। पहले सारे खर्च होते हैं, फिर अगर कुछ बचा तो सेविंग। लेकिन अगर हम शुरुआत में ही अपनी इनकम का एक हिस्सा अलग रखने की कोशिश करें तो सेविंग की आदत बनना आसान हो सकता है। जरूरी नहीं है कि रकम बहुत बड़ी हो, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन लगातार ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आपके लिए सेविंग में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कम इनकम, ज्यादा खर्च या प्लानिंग की कमी? अक्सर ये सारा चीज आपने देखना होता है, तभी आप पैसे बचा पाएंगे, अदरवाइज पैसे बचाना बहुत मुश्किल होता है।
0: रीना, मुझे बचत से याद आया कि बचपन में ना हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते थे कि पैसों को कैसे सेव करके रखना है, पैसों को कैसे जोड़कर आपको रखना है, बचत करनी है। छोटे थे ना बचपन में, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें मिट्टी की गुल्लक ला कर दी थी, मेरे भाई को भी और मुझे भी। तो हम जब स्कूल जाया करते थे तो एवरी डे पापा जी हमें 10 रुपए दिया करते थे, बड़े भैया को भी और मेरे को भी। तो मैं स्कूल लेकर जाया करती थी और 5 रुपए मैं अपने गुल्लक में जमा किया करती थी। तो और ऐसे करते करते काफी समय हो गया एंड मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए और वहीं पर भैया की गुल्लक में बस 3-4 सिक्के ही। तो उस समय पे फिर मम्मा ने कहा कि अच्छा बच्चों, आज देखते हैं तुम्हारे गुल्लक में कितने पैसे हैं, देखते हैं तुमने कितने पैसे जोड़े हैं। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं अपने गुल्लक लेकर आती हूँ उठाकर। तो मैं तो खुशी खुशी अपने गुल्लक लेकर आई, इतनी भारी। मम्मी कहती है अरे कब से पैसा जोड़ रही हो तुम। मैंने कहा मम्मी एक बार गुल्लक को जरा तोड़ो तो सही। और जब गुल्लक तोड़ी तो इतने सारे पैसे निकले, और मेरे बड़े ब्रदर के गुल्लक से सिर्फ कितने पैसे निकले थे आई रिमेम्बर, सिर्फ 200, और मेरी गुल्लक से निकले थे 1000। वो मैंने जोड़े थे पैसे और मेरे पापा मेरी मम्मा बहुत खुश हुए कि चलो हमारी बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया है, पैसा जोड़ना सीख गई है। हाँ। लेकिन अब बड़े हो गए तो खर्च थोड़े ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हाँ
1: खर्चे ज्यादा करते, लेकिन गुल्लक अब देखने को बहुत कम मिलती है।
0: कम मिलती है हाँ।
1: अब हर कोई बैंक में सेविंग कर रहा है,
0: अब न्यू स्टाइल की गुल्लक आ गई है। और हाँ, हमने बच्चों की बात की है ना रीना, तो बच्चों की पैसों की वैल्यू ना, अगर बच्चे को हर जरूरत की चीजें तुरंत मिल रही है तो उसे पैसों की मेहनत समझना मुश्किल हो सकता है, मतलब उसको पैसों की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर उसे छोटी रकम संभालने, जरूरत और इच्छा का फर्क समझाना और थोड़ा पैसा बचाना सिखाया जाए, तो धीरे धीरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप हो सकता है। बच्चों को बचत सिखाने का मतलब उनकी हर इच्छा रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करना सिखाना है। आपके घर में बच्चों को पैसों में बचाने की आदत आपने सिखाई है या नहीं? क्यों, बताओ बताओ। हाँ, तुम्हारे घर में भी तो वो छोटी गुड़िया है, बताओ उसको सिखाया है आपने या नहीं सिखाया है?
1: पैसे भैया कलेक्ट कर रखे उस लड़की ने।
0: अच्छा जी। अगर कोई रिलेशन वाले आते हैं, जैसे मेहमान आते हैं, तो वो भी पैसे देकर जाते हैं, है ना? और छोटे बच्चों को तो बहुत ज्यादा देते हैं।
1: मैं बोलती हूँ ना मेरे पास 100 रुपए, तो कहती हूँ 100 रुपए, मेरे पास 3000 है।
0: अरे बाप रे, क्या बात है यार।
1: वो बहुत सेविंग करती है, अभी छोटी है। बहुत से बच्चे बाहर के खाने के जिद
0: हाँ, करते बहुत। दोस्तों, हम बस यही कहना चाहते हैं कि छोटे बच्चों को भी सिखाइए कि पैसे देखिए बहुत मेहनत से कमाया जाता है। और बच्चों को ना हर चीज, जैसे अगर आपने भी कहा रही ना कि क्या होता है, कई बार बच्चे एक दूसरे को देख कर जिद करने लगते हैं कि मुझे भी यही चाहिए। हाँ, सेम चाहिए।
1: अगर तुम भी कुछ दोगे ना खाने के लिए तो बोलेगी मैं नहीं लूंगी।
0: हाँ, तो मैं बोल रही हूँ वही कि बच्चे जैसे जिद करते हैं चीजों के लिए, वो चीजें तुरंत ना दें, क्योंकि उससे क्या होगा ना, फिर बच्चे को समझ में, वो बड़ा होगा तो उसकी आदत भी वही बन जाएगी। पैसा हो या ना हो, लेकिन उसको वो चीज चाहिए तो चाहिए। तो आप ऐसा मतलब ठीक है, जो जरूरत की चीजें हैं वो दिलाइए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर चीज बच्चा जिद कर रहा है तो उस पर थोड़ी सी आपको रोक लगानी चाहिए।
1: ये तो सही करा है तुमने। और अब हम बात करेंगे पैसे और रिश्ते।
0: ये तो सबसे जरूरी है, बहुत मोस्ट टॉपिक आपने लिया है यार, पैसे और रिश्ते।
1: पैसा सिर्फ हमारी जरूरतें से जुड़ी नहीं है, कई बार रिश्तों में भी इसकी भूमिका बहुत होती है। परिवार में खर्च को लेकर डिस्कशन हो सकता है, दोस्तों के बीच उधार का मामला आ सकता है, या किसी की मदद करते समय हमें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखनी पड़ सकती है। किसी की मदद करना अच्छी बात, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर जाकर खर्च करना बाद में परेशानी बन सकता है। इसीलिए पैसे के मामले में साफ बातचीत और समझदारी जरूरी है। आपके हिसाब से रिश्तों में पैसे को लेकर सबसे जरूरी चीज क्या है? भरोसा या अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों चीज बहुत जरूरी है, भरोसा भी और समझदारी भी। अगर भरोसा भी है और समझदारी भी है तो मान लीजिए आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। कुछ रिश्ते होते हैं जो पैसों पे ही चलते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हमें पैसे से कोई लेना देना नहीं है, बस साथ रहो यही हमारे लिए सब कुछ है। और वहाँ पर फिर हम बचत और सपने भी देखने लग जाते हैं, है ना? हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है। किसी को अपना घर चाहिए, किसी को घूमने जाना है, किसी को नई चीज खरीदनी है, और कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा जमा करना चाहता है। लेकिन सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते हैं, उनके लिए प्लानिंग भी करनी पड़ती है। सेविंग इसकी प्लानिंग का एक हिस्सा हो सकता है। अगर हम अपने किसी बड़े सपने को छोटे फाइनेंशियल गोल्स में, दिशा साफ हो सकती है। आपका वो कौन सा सपना है जिसके लिए आप सेविंग करना चाहते हैं?
0: वो तो हमारी ऑडियंस बताएगी, अब सब चीजें हम ही थोड़ी ना बताएंगे। भाई आप भी कुछ बताओ, ऐसे बैठे बैठे बस मुस्कुरा रहे हो आप। हाँ, चाहे आप कार में हो या फिर घर में हो, तो हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आप भी तो हमें बताइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो चलिए दोस्तों, बातें तो हम करते ही रहेंगे कंटिन्यू, लेकिन एक ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें।
2: क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
4: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
3: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
5: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
6: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
5: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
7: अरे थम थम थम रुक।

ಇನ್ನಾಯ ಇದು ಯ ಕಚತುರ ನಾರ.

0: गोला चतुर गोला चतुर एक पैर है ना, या गोला बोलना या चतुर बोलना गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
5: लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
6: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
7: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
6: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
8: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
6: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुँच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
9: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: क्या क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
11: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

नमस्कार मुरादाबाद, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? और सोमवार, कुछ लोगों का ना मंडे अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। और हाँ, जो लोग संडे में भी सारा काम अपना पेंडिंग वाला पूरा करते हैं ना, उनके लिए भी वो वर्किंग डे ही होता है। तो वो भाई साहब संडे संडे नहीं होता है। कोई बात नहीं, जो आपका संडे अभी तक दिल से गया नहीं है और अभी भी दिल में ही है कि काश थोड़ा और एक आराम वाला दिन मिल जाता, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आराम अब दिलवाते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग। और हाँ, आज का जो हमारा मिशन है ना, बिल्कुल साफ है साफ, मंडे की ना सारी सुस्ती भगानी होगी और चेहरे पे मुस्कान लानी होगी। मंडे को दुश्मनी नहीं, बस उसकी टाइमिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है। दुश्मनी नहीं करनी हमें किसी से। शायरी एक प्यारी सी आप लोगों के लिए। सोमवार आया तो चेहरे पे शिकन क्यों है, हफ्ते की शुरुआत है फिर इतनी टेंशन क्यों है। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए जनाब, क्योंकि ज़िंदगी छोटी है और मंडे तो हर हफ्ते आएगा। मुझे पता है अच्छी नहीं लग रही होगी, मगर क्या करें, जब मंडे को ऐसे ही पूरे दिन भगाना होता है तो करना पड़ता है सब कुछ। तो आप कॉल करें, कुछ नहीं करना, 9837896896 पे अपनी बात बताइए कि क्या मंडे में क्या क्या कर दिया आपने और कौन सी ऐसी दिल की बात है जो शेयर करना चाहेंगे, या कोई ऐसा गाना। साहब मैं तो अब आज पूरा दिन मेरा ऐसा हो गया अखिल भाई कि मुझे ये गाना सुना दो, थोड़ा सा दिल का चैन मिल जाए। तो ज़रूर वो भी पूरा होगा 9837896896। तब तक आते हैं हम एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। खूब सारी बातें होंगी दिल की और आपके अरमानों की।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। अभी कर रहे होंगे अगर आप ट्रेवल, तो ज़रूर हमें अपडेट दें कि कांट रोड या फिर अगर आप हो दिल्ली रोड या फिर रामपुर रोड पे कहीं कहीं ट्रैफिक है या नहीं। अगर है तो ज़रूर हमें अपडेट दें, हम भी उसका अपडेट दे के आगे के सतर्क कर देंगे। तो साहब मंडे को ना होता क्या है, दो चीज़ें जो है ना सबसे ज़्यादा डराती हैं, पहला ऑफिस का काम, दूसरा बॉस का मैसेज, गुड मॉर्निंग लेट्स कनेक्ट। भाई साहब गुड मॉर्निंग सुनते ही समझ आ जाता है कि आज कुछ भी गुड नहीं होने वाला है। तो मंडे की थोड़ी थकान दूर हो जाए और दिल में थोड़ी सी मोहब्बत उतर आए, तो चलिए प्यारी सी रोमांटिक शायरी से करते हैं शुरुआत। तेरी मुस्कान का असर कुछ ऐसा होता है, दिल को हर बार तेरा इंतज़ार होता है, तू सामने हो या दूर कहीं हर पल बस तेरा ही ख्याल होता है। तो साहब थोड़ा सा तो शायराना होना बनता है, और हमारे साथ कॉलर हमारे जुड़े हैं अभी, तो चलिए उनसे ही बात करते हैं, क्या कर रहे हैं वो। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: ठीक है साहब, आपके कृपा है साहब।
0: सर और बताइए क्या कर रहे हैं इस समय उस्मान जी?
1: आपका प्रोग्राम सुन रहे थे बेटा, अभी इंतजार कर रहे थे।
0: धन्यवाद धन्यवाद, आप बहुत ही बेताबी से जो इंतजार करते हैं, दिल से इंतजार करते हैं, अच्छा लगता है।
1: बहुत बढ़िया करके प्रस्तुत करते हैं, सबको श्रोता को बहुत अच्छा लगता
0: है। तो जो हमारे साथ श्रोता नए जुड़े हैं, जो अभी अभी गाड़ी में जिनका एफएम लगा है और वो सोच रहे हैं कि भाई अपना मुरादाबाद का एफएम है, अपनी मुरादाबाद की बातें हो रही हैं, तो उनके लिए अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताएं।
1: मेरा नाम मोहम्मद उस्मान और शाह गुप्ता ताजीबुल्ला की जारत के पीछे नदी पे थे।
0: मुझे पता है, जब तक वो नदी सूखेगी नहीं ना तब तक आप उस नदी का नाम लेते रहोगे साहब। तो कौन सा नंबर आप कौन सा नंबर मिलाते हैं आज? हम जरा उस्मान जी आपका थोड़ा सा वो टेस्ट लेंगे, कौन सा नंबर मिलाते हैं आप?
1: आपका
0: हाँ
1: 98 37 8 और 9 6 8 9 6।
0: क्या बात है क्या बात है, बिल्कुल बड़े एकदम ऐसा रट रखा है कि अगर बाइक हो आपके पास तो नंबर प्लेट में भी यही लिखवा दोगे 8 9 6।
1: याद हो गया साहब आपका।
0: उस्मान जी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा हो और कुर्ता आपने उल्टा पहन लिया हो और जब पूरा कार्यक्रम निपट गया तब याद आया कि यार मैंने तो कपड़ा ही उल्टा पहन लिया था?
1: हाँ भाजी तब ऐसा भी हो गया था साहब, जल्दी जल्दी में अगर कहीं जाना है या प्रोग्राम में तो उल्टा भी पहन लेते।
0: तो ये जब कोई याद दिलाता है तब याद आता होगा कि अरे यार ये आप भाई साहब क्या उस्मान जी क्या उल्टा कुर्ता पहन के घूम रहे हो?
1: भाई साहब ऐसा हो जाता
0: था, या कोई प्यार में नहीं बोलता होगा चलो जी उस्मान जी कभी कभी जो है ऐसी नटखट कर देते हैं हरकत। तो आज कोई शायरी सुनाएंगे उस्मान जी श्रोताओं को हमारे?
1: सर
0: मैं अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि उस्मान जी हमारे एक एक्टिव लिसनर हैं जो हमें कॉल करते रहते हैं। कहते हैं ना कि भाई जैसी शो चालू होता है और इनका मन जो है ललचाए नहीं रहता बिना बात करे, तो ये बहुत ही अच्छी शायरी भी सुनाते हैं, जरूर आप भी इनकी एक शायरी सुने।
1: ऐसी गाना होता है वो भी हम सुनते हैं दिन में,
0: बहुत ही बढ़िया।
1: 9 बजे चालू होता है फरमाइशी गाना, बड़ा टॉप के लगते हैं दोनों।
0: तो सुनाइए आज कौन सी शायरी सुनाएंगे आप?
1: खिड़की से बाहर ये मंजर बदल रहा है और चुप चुप चुपचाप चांद रातों में पिघल रहा है।
0: क्या बात,
1: तेरी का जादू अभी तलक है, एक लम्हा तेरी यादों से फिसल रहा है।
0: बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, सब कुछ फिसल रहा है इस समय, मौसम ऐसा चल रहा है कहीं कोई फिसल रहा है कहीं कोई फिसल रहा है। आप ज्यादा मत फिसलिएगा उस्मान जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: और आपकी टीम को सबको मुबारकबाद हो।
0: धन्यवाद जी धन्यवाद,
1: बहुत प्यारा है, अच्छी तरीके से प्रस्तुत करते हैं।
0: धन्यवाद उस्मान जी, तो कोई एक गाना भी बताइए कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: ये क्रांति पिक्चर का सुनना है,
0: बहुत ही बढ़िया।
1: लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
0: मुझे उम्मीद थी पूरा यही गाना आपके पास से निकल के आएगा।
1: बस आपकी मेहरबानी है सर।
0: चलिए ध्यान रखिए, मौसम इस समय थोड़ा सा बदल रहा है, करवट ले रहा है, मगर अपना अपने अपने चाहने वालों को, अपने अड़ोस पड़ोस का, अपने परिवार वालों को जरूर ध्यान रखिए। धन्यवाद उस्मान जी। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे उस्मान जी, जो शायरी तो सुनाते ही हैं दिल से, और जो गाना भी ये बताते हैं वो भी इनकी फरमाइश बहुत ही पूरे दिल से निकली हुई होती है। ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, लता मंगेशकर जी और नितिन मुकेश जी की आवाज़ में ये गाना है। और आपको तो पता ही है क्या लीजेंड एक्टर थे मनोज कुमार, जिनके ऊपर ये फिल्माया गया, हेमा मालिनी साहब, तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। जो उन गानों में से है कि अगर ये कभी भी आपके कानों में पड़े तो आप भी थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, तो क्यों नहीं इसे गुनगुनाते हैं। और मिलते हैं इस गाने के बाद 9837896896। ये तो बता ही दिया था उस्मान जी ने नंबर अपने तरीके से, आप भी याद कर लीजिए और कह दीजिए कोई दिल की बात।

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 9.6 मेगाहर्ट्ज पे, जहाँ हो रही हैं दिल से दिल की बातें, आपका ही अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो साहब, अगर आपके पास एक पावर आ जाए और उस पावर में ऐसा हो कि भाई साहब मंडे को आपको किसी और दिन से रिप्लेस करना हो, तो आप वो दिन कौन सा रिप्लेस करेंगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको मंडे को एक दिन के लिए गायब करने की पावर मिल जाए, तो मंडे की जगह कौन सा दिन रखेंगे? पहला फ्राइडे, दूसरा सैटरडे, तीसरा संडे, या चौथा हर दिन ही संडे? कोई भी हो जवाब तो जरूर हमें मैसेज करके बताएं 9837896896 पर। पूरे दिन बात हो रही है और मंडे की शाम भी है, तो भाई साहब जब दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम होती है ना, चाय हाथ में होती है और थोड़ी राहत मिलती है, तब लगता है चलो भाई मंडे भी निकल गया। वैसे आपकी मंडे इवनिंग कैसे होती है तो जरूर हमें बताएं। या तो कोई जिम चला जाता है या फिर कोई दोस्तों के साथ बैठता है। हाँ हाँ साहब, तीन चार दोस्त जब मिलते हैं ना, तो सब अपने ना पूरा का पूरा दिन का जो एक दूसरे का वाक्य होता है सब गायब हो जाता है, अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं भाई साहब, भूल जाते हैं कि आज मंडे था। फिर तो ना कोई मंडे होता है ना कोई ट्यूसडे। अगर चार दोस्त साथ में हैं तो सारे डे दोस्त डे हो जाते हैं। तो एक शायरी, थोड़ा रुकना भी जरूरी है जिंदगी में, हर वक्त भागना जरूरी नहीं, कुछ पल अपने लिए भी निकालो, हर खुशी के पीछे भागना जरूरी नहीं। तो आज रात कम से कम 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखिएगा, देखिएगा कि क्या सोचा है, क्या हुआ है आपके साथ। तो चलिए सुनते हैं बढ़िया सा और लाजवाब गाना, जो फरमाइश है। हमारे पास मैसेज आए हुए हैं, कह रहे हैं हेलो सर, फरजाना रामपुर से गाना सुना देना, तुमको देखा तो ख्याल आया। तो ज़रूर आपकी भी फरमाइश पूरी की जाएगी। अगर आपकी भी कोई ऐसा मैसेज है या किसी को विश करना चाह रहे हैं, किसी को दिल की बात कहना चाह रहे हैं, तो कॉल नहीं तो मैसेज ही सही 9837896896 पे, करेंगे बात खूब सारी आपके साथ।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

सलाम इश्क। हाँ जी सलाम इश्क, आपका एक बार फिर से स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहाँ खूब सारी बातें हो रही हैं आपकी हमारी दिल की।

बिल्कुल सही सही सुना आपने, शाम ढली तो याद रखना कोई आपको याद करता है। शाम ढले तो याद रखना कोई आपको याद करता है, दूर होके भी कोई दिल से आपसे बात करता है। बहुत कहते ना, जब दिल से जुड़ाव होता है तो कभी कभी बिना फोन करे भी और बिना जताए भी आप दूसरे के दिल की बात समझ लेते हैं, चाहे वो अपने ही देश में किसी कोने में हो या फिर परदेश में बैठा हो। दोस्त होते हैं, चले जाते हैं अपना देश छोड़ के, दूसरे देश में काम करते हैं और आपसे संपर्क करते हैं, चाहे जापान हो, अमेरिका हो या कनाडा हो, तो उनसे भी बातें तो होती रहती हैं, कहीं ना कहीं दिल की बातें उनसे भी चलती रहती हैं। तो अभी हमने एक सवाल पूछा था, अगर आपके पास वो पावर हो, अगर आप मंडे को बदलना चाहें तो कौन सा दिन होगा जिसे आप मंडे से रिप्लेस करना चाहेंगे। तो हमारे पास मैसेज आया है रोहित जी का, रामपुर से। कह रहे हैं, सर मैं मंडे की जगह फ्राइडे करना चाहूँगा, कि वो मंडे को बदल के फ्राइडे कर दे। तो भैया बहुत सही है, आपने अपने हिसाब से ये जवाब तो दे दिया है रोहित जी फ्राइडे का, मगर हमें ज़रूर बताइएगा कि फ्राइडे नाइट आप करते क्या क्या है, ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना। हमारे पास शोभना जी का भी मैसेज आया है, वो कह रही है कि सर मंडे को मंडे ही रहने दीजिएगा, मैं कोई और दिन इसमें एडजस्ट नहीं करना चाहूंगी। क्या बात है शोभना जी, बिल्कुल डेडिकेटेड है। अब आपको पता है व्यापारी आदमी है भैया, काम जो है मंडे से ही आना चालू होता है, तो क्यों हम मंडे को किसी और से बदले, जब काम आएगा तभी तो कुछ और चीजें चलेंगी। तो अभी हमारे पास लिसनर का एक मैसेज आया है, चलने का समय हो गया है, 9:45 हो गए हैं, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और 10 जैसी बचते हैं ना भाई साहब, भागने का लगता है कि जल्दी जल्दी पहुंचो भाई साहब। तो पहले मैसेज पढ़ते हैं हम, हमारे पास जो हमारे लिसनर का आया है। अखिल सर क्या हाल है आपके? हाल थोड़े से आज नाजुक हैं, क्योंकि जुकाम जो है ना ये आने के बाद जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज फिर एक बार आपके दिल से दिल के शो में आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और बताइए कैसा चल रहा है आपका संडे? उम्मीद है आज का दिन भी आपका बहुत अच्छे से गुजरा होगा, और आपने अपने संडे को खूब एंजॉय किया होगा। संडे को संडा निकल जाए तो क्या होता है साहब? शो बहुत अच्छा लग रहा है और आज भी एक से एक बढ़कर आप शानदार गाने सुना रहे हैं। इसी के साथ मेरी एक छोटी सी फरमाइश है, अगर मुमकिन हो तो इसे भी अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी जगह ज़रूर दें। तो ज़रूर अगर कहीं से भी कहते ना, अगर लगेगा तो ज़रूर उसे हम फरमाइश को पूरी करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि फरमाइश ही तो है जो दिल से आपकी निकली हुई है, वो पूरी करना हमारा क्या है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े, हमारा वही तो मज़ा है, वही काम है। पहले भी आप मेरी फरमाइश को अपने शो में जगह देते रहे, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। उम्मीद

है आज भी मेरी छोटी सी फरमाइश को अपने शो में जगह देंगे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। तो ज़रूर आपकी इस फरमाइश को हम पूरी करेंगे। और आप अपना ध्यान रखें, इटली में रहें तो बहुत ही, अभी वही बात चल रही थी कि जब दोस्त लोग बाहर होते हैं, देश विदेश में होते हैं, तो वो भी अपने दिल की बातें किसी ना किसी रूप में कैसे भी ना कैसे पहुँचाते हैं। तो उसमें से एक आप भी एग्जाम्पल है कि भाई इटली में रह के भी हमारे FM से अपने कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे अपने दिल की बात अपनी साझा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और खूब सारी करेंगे फिर दिल से दिल की बातें, क्योंकि 10 बजने वाले हैं और उससे पहले हमें खूब सारी करनी है मुलाकातें।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है जीते?
0: अरे हो रहना किसी के

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
3: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
2: UPI TSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।